0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ये जो मन है ना, ये भगवान ने इसकी रचना की है। इंद्रियाणाम मनश्शास्मी, कह रहे इंद्रियों में मैं मन हूं, और त्रिगुण माया का इसमें भरा हुआ पूरा पॉइजन जहर है। आप देखो, मन छोड़ के गंदी बात में जाएगा, नहीं जाएगा। ये नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाओ तो लगेगा, और वो भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं। आराप से इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई। अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुख करो, भगवदाकार करो, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। वो अद्भुत आनंद अंदर ही मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे। और उसी आनंद की खोज, देखो जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग लें, इस वस्तु को भोग लें, अमुक, देखो सब अपने घर के जैसे बैठे हैं, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई, मतलब हमारी खोज अधूरी रही। वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है, वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। आप देखना, जो मन हमें सोचवा के पागल बनाता है, और जब हम उस पे जाते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। तब लगता है कि वो यहां नहीं, शायद यहां हो, यहां नहीं, शायद यहां हो, ऐसे भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो दो चार कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर हम पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती। और यहां तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है, फिर भी नहीं सोच पाता कि चलो अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो राधा राधा जप कर अपना काम बना ले। लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का अब की उपाय कर लूं, इतना जीवन दे गया। ये क्या है? ये मन का केवल खेल है, वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें ये हो कि चलो मन सुखी रहेगा तो भी नहीं, आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाएगा, और उसका परिणाम यह आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, मतलब किसी भी तरह से ये चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है, और ये बहुत उत्तम है। ये अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है, ये भगवान से मिला सकता है, ये सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका ये बंद कर दे, वही बात हो जाए। देखो, विरक्त मार्ग एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्मपूर्वक विषय सेवन की मर्यादा है ना, तो आप धर्मपूर्वक देख लो। अगर आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में सुख नहीं मिला, तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं, तो आपको सीमित हो जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम धर्म विरुद्ध बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा पाप बनता जाता है, हम क्लेशित होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हम निकल चले गंदी बातों से, हम निकल चले इस माया के फसाव से, नहीं तो धोखा ही धोखा, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है, भोगते भोगते हर इंद्रियां सब नष्ट होती जा रही, फिर भी भोग इच्छा, ये है क्या, समझो ना, पूरा जीवन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। गौर से देखो, पूरा जीवन नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा, पर एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला, पर एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फंसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी नहीं कहता कि एक बार भगवान से मिलू क्या, कभी उसका मन नहीं होता, इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसको भगवान में लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है धीरे धीरे। ये भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार, तो भोग के लिए देखो, भगवान को मना लोगे ना तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी, चक जो चाहोगे सब हो जाएगा, जो चाहेंगे भगवान दे दे। बहुत मन बेवकूफ बनाता है, इसलिए हमें लगता है मन की बेवकूफी से बचना चाहिए। एक आया था भगतला, उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 100,000 सुंदरियां स्त्रियां चाहिए। गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है यार, जिनके एक है ना तो वो कभी कभी एकांत में ऐसे बैठ के बैठते हैं। तो इसीलिए मल की कही में मत रखो, ये बहुत बड़ा भूत है, ये परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा, इसे सतमार्ग में लाओ, भगवत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की। इसकी केवल चाल है, ये नहीं, ये नहीं, ये वो है कहीं नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये हमारे को भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो, हम मना नहीं करते, एक उसे सीमा में रख के भोगो, धर्म में। तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी, धर्म पूर्वक विषय भोगने से घृणा हो जाती है कि यार, और जो ये व्यसन करके और फिर इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती और बुढ़ापे तक पापाचरण, फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को समझा लो, मन को समझ। यही पांच भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में मनुष्य फंसा है और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो, अभी तक फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक क्या है अपने पास, कोई अनुभव है क्या? बस एक ही है कि एक बार और चांस मिल जाए, बस किसी भी विषय का, मतलब किसी भी विषय का मन में हर बार ये था कि अब की बार, लेकिन कभी अब की बार पूरी ही नहीं हुआ। तो इसको रोकना जरूरी है कि भजन साधन, धर्म पूर्वक विषय सेवन और समाज की सेवा, ये कभी एक बार ऐसा करके देखना, कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो और उसको कभी अपने घर लाना, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और भोजन पवाना, फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा तो तुम्हें जो सुख होगा वो जिंदगी में किसी भी भोग में नहीं मिला होगा। आप लिख लेना हमारी बात। कभी कोई बीमारी से तड़प रहा हो, किसी के सेवा का वहां कोई अवसर नहीं है और आप सेवा का अवसर देकर उसे आप स्वस्थ करो, आप अस्पताल ले जाओ, फिर जो आपको सुख मिलेगा हम आपको कैसे बताएं, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई असहाय, और जब आप उसकी सहायता करते हो तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद, वो सुख जो मिलता है, जैसे हम आपको एक दिन करके देखना, तुम अपना भोजन बढ़िया जो है कोई ऐसे भूखे को खवा देना जो भूखा बैठा हो और ऐसे जल्दी जल्दी, और आप देखो उसको पाते हुए, और उस दिन आप वो भोजन ना पाओ, उसे पवा दो, तो आपको जो सुख मिलेगा वो 56 प्रकार के भोग पाने में भी कभी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख परहित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से जो हृदय शीतल होता है वो कभी किसी से नहीं होता। इसलिए मानव जीवन के लिए मन को थोड़ा विरुद्ध जो चलने वाला है उसके विरुद्ध आप बनो, उसे सतमार्ग में लगाओ। अब देखो आजकल ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि अपने पूज्य माता पिता को ही बच्चे दुख दे रहे, नंदा थप्पड़ मारना, क्या यार आज के जवान अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े होते तो मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं करते, नहीं ना, धर्म से जुड़े होते, अध्यात्म से जुड़े होते, ऐसे माता पिता तो भगवान होते हैं। उनके आंखें नहीं, उनको नहलाओ धुलाओ, किसी मंदिर जाने की और जरूरत नहीं, उनको भोग लगा, उनको पवा, उनका जो आशीर्वाद है लोक परलोक तुम्हारा सब बना देगा। लेकिन जब अध्यात्म से नहीं जुड़े तो लगता है कौन इनको, ये क्या है, ये है मन का वो पापी मन, देखो कैसे पाप कराता है, कैसे निगेटिव चलाता है कि अब ऐसे पुत्रों की क्या दुर्गति होगी। तो कभी अगर ऐसा अवसर किसी को मिले कि कोई फुटपाथ में ऐसे तड़प रहा हो तो आपको जरूर लगेगा कि काहे को बोझा ले, लेकिन आप उसका अगर बोझा ले लिए तो भगवान तुम्हारा बोझा ले लेंगे, जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसे दीन दुखी आशीर्वाद देते ला, उसे भगवान का आशीर्वाद समझना, और जब माता पिता अंदर से साफ देते ना कि भोगोगे तो फिर भगवान भी नहीं टाल पाते, फिर भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म से चलो, किसी का अपराध मत करो, गंदी बातों में मन को न जाने दो, खूब नाम जप करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ लो। मनुष्य जीवन एक दिव्य जीवन है, इसका एक दिव्यता का लाभ है। यार देखो, अगर हम ना चाहे तो पूरी बाजार से निकल जाए, कोई सामान दुकान की आके हमारी लिपट थोड़ी जाती है, हम जहां खड़े होंगे जहां खरीदेंगे वही जो वस्तु हमें मिलेगी। तो अगर हम निश्चय कर लिया कि मुझे मांस नहीं खाना, मुझे शराब नहीं पीना, मुझे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं करनी, तो मुझे कौन गिरा देगा? आप सोचो, हमारे निश्चय में कमजोरी, तभी हम डरते हैं कि कहीं गिर ना जाए, ऐसे कैसे? हाँ, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिससे अहंकार का नाश किया जाता है। जैसे आवाज आता है ना कि हम जितेंद्री, हम ऐसे, भगवान को अहंकार पसंद नहीं तो छोड़ देते हैं, देखो जितेंद्रियता करके, तब जब रोता है कि प्रभु मैं तो नीच किसी काबिल नहीं, तब भगवान फिर उठा लेते हैं। नाम जप करो तब मजबूत ब्रेक लग जाएगी, कोई कैसे गिरा सकता है, कैसे गिरा सकता है, नहीं गिरा सकता, बात मान ली बस हो गया, हो गया। बात मानने से होता है। देखो हमारी बात ना मानो, कंठी बनवा लो, तिलक लगा लो, सब कर लो, कल्याण नहीं होगा। हमारी बात मान लो, कल्याण हो जाए। बात मानने का चेला होता है, ये कोई संसारिक थोड़ी कि भैया जैसे संसारिक संबंध होते ऐसे गुरु शिष्य का संबंध आज्ञा पालन से होता है। गलत नहीं करूंगा, जैसा कहोगे वैसा चलूंगा, अब आपने कह दिया अब ये नाम जप करूंगा, बस हो गई बात। बात ये है कि हमको अब महत्व कर लेना है। अरे बोले ऐसे कह दिया था सिया राम राम राम जपो, तो गुरु मंत्र तो मिला नहीं। तो कभी गुरु मंत्र मिल भी जाएगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको संत वचन गुरु के वचन पर विश्वास ही नहीं हुआ। गुरु के वचन प्रतीति न जे ही, फिर स्वप्न में भी लाभ नहीं मिल। मान लिया हो गया हमारा सब कुछ, अब हम राम राम जप करेंगे, अच्छे आचरण से चलेंगे, तो यही नाम आपको बल दे देगा। जो आप कहते हो ना कि ऐसा बल कैसे आए, इसी नाम से आता है बल। माया पर जीतने का जो बल है वो भगवान की कृपा से उनके नाम बल से आता है। देखो नाम में इतनी सामर्थ्य, भगवान को अधीन कर लिया, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर इराके, फिर और क्या, काम क्रोध को जीत लो तो कौन बड़ी बात। भगवान अजित जीत गए, भगवान कह रहे प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मनमोरा, तुम संतात उरिन मैं नाही। नाम जप करते हुए समाज सेवा, भगवत सेवा, माता पिता की सेवा, बस इससे बढ़िया साधना क्या है। अब बढ़िया गंगा जी से कपड़ा धो के लाए और फिर नाली में डुबो दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा नहीं। मानो दे थोड़ा विवेक है, धर्म से विषय सेवन करो, पापाचरण करोगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे, नरक है। कर्मों की बड़ी गति है, इसलिए नाम जप कर लो और ये जीवन सार्थक। अच्छा नाम जपने में सबसे बढ़िया बात ये कि इसमें बैठने की बात नहीं करे कि आप पद्मासन लगा के बैठो, क्योंकि दिन भर काम करो, राम राम राम राम, आनंदर से राम राम चल रहा, फावड़ा चल रहा, राधा राधा राधा राधा, हर काम होता रहेगा। जब युद्ध हो सकता है, मामनिस्मर युद्ध थे, तो युद्ध से खतरनाक कोई काम तो है नहीं। दूसरे की गर्दन काट ली, अपनी गर्दन बचानी युद्ध में, और भगवान अर्जुन को कह रहे मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, तो इसका मतलब भगवत नाम जप करते हुए सब काम हो सकता है। ठीक है, तुम नाम जप करो और अच्छे बनो, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त किया जाए, भगवान की स्मृति में डूबा जाए। अगर आपने भगवत प्राप्ति का कार्य इस जन्म में पूरा नहीं किया तो पहला दंड आपको मिलेगा बिना किसी कर्म के, इस बात का कि आपने भगवत प्राप्ति क्यों नहीं की। आपको चांस दिया गया, जैसे बहुत सरलता से हम समझाते हैं कि जैसे हम आपको विदेश भेजें सरकारी, भारत के संविधान के अनुसार आप भारतीय काम कीजिए, जाकर भारत के लिए आप ये काम कीजिए, और आप वहां जाकर जाने के लिए तैयार हो कि हमें वहां गाड़ी मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, हमारी सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सब व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी। आप 20 वर्ष वहां रहे, आपको वापस बुलाया गया, आप जिस काम के लिए भारतीय संविधान के काम के लिए गए थे वो काम बिल्कुल नहीं किया, खूब बच्चा पैदा किए, पढ़ाया लिखाया और ब्याह और सब सब काम किए, अब आप बोलो भारत सरकार आपको दंड देगी कि नहीं देगी। तो देगी ना, क्योंकि आप प्रधान कार्य के लिए ही सुविधा आपको सारी दी गई थी। तो मानो देह केवल संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, जो मानुष देह वृथा कत डारत, संस्कृति के चक्र को रोक कर भगवान ने कबहू कर करुणा नर दे ही, देत ईस बिन हेतु सने ही, बिना किसी कर्म के अहेतु की कृपा करके आपको मानो दे दी कि जाओ नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वही का हमारा भाग्य नहीं था, हमारा भाग्य से भजन नहीं होता, भजन से भाग्य बनाएंगे हम, भजन से हम पूर्व कर्मों को मिटाएंगे, भजन से हम भगवत प्राप्ति करेंगे। जो न तरह भव सागर, असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाए, वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है केवल इस बात के लिए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन तुमने अपना काम नहीं बनाया। 83,99,999 योनियों में कोई एक भी ऐसी योनि नहीं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते, केवल ये मानव देह थी और उसको तुमने विषय सेवन में प्रपंच में नष्ट किया, तुम विशेष दंड के पात्र हो। कृपा हुई और तुमने उस कृपा को ठुकराया, अब भोगो अन्य योनियों में, अब पता नहीं फिर किस कल्प में भगवान की कृपा होगी और मुझे मनुष्य शरीर में। इसलिए मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, इस पे हमें छूट नहीं रखनी। अब भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं, समझना तो पड़ेगा ना कि भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। मोक्ष को तो समझे तो मोक्ष ऐसे थोड़ी होता है, उसके लिए साधना बहुत कठिन साधना है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्मृति उसकी, इसकी स्मृति का भी त्याग हो जाए तब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। बड़ा कठिन ज्ञान के पंथ कृपान के धारा और परत खगेश लगे निवारा। अब इसको सरल सहज भाव में ले लो, जिसकी अखंड स्मृति भगवान की होती है वही मुक्त पुरुष है और वही भगवत प्राप्त पुरुष है। हर समय तुम्हारी याद में भगवान का नाम चलता रहे, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रियो अपने, तो वृंदावन वासी राधा राधा रखते, हर समय नाम चिंतन करते रहो। तुम मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति चाहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है भगवान को जिस भाव से, स्वामी भाव सखा भाव जिस भाव से वो प्राप्त हो जाए। और अच्छा इसमें है कि गिरने का भय नहीं। हम राधा राधा जपते हुए किसानी कर रहे हैं, राधा राधा जपते करते नौकरी कर रहे, राधा राधा जपते हुए संसार के सब कार्य कर रहे, तो हमको संसार के कार्य भी हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। अच्छा मिथ्या भाव हमारे यहाँ लगाना नहीं, भगवत भाव लगाना है। सब में भगवान है, हम जिससे मिलते हैं उनके हृदय में भगवान है, वैसे बर्ताव करते हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत सरलता से निपट गए संसार से, बहुत सरलता। पर भजन नहीं किया तब तो दंड मिलेगा, क्योंकि सरकार ने भेजा है यहां सरकारी काम करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब अगर चूक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा देखो तुम्हें तो कुछ गड़बड़ होना है नहीं, तुम तो अविनाशी भगवान के जन हो, अविनाशी स्वरूप है ना अपना सबका। लेकिन जैसे स्वप्न में लाठी चलती है कुछ नहीं होता है, पर पीड़ा होती है कि नहीं होती स्वप्न के समय? स्वप्न के समय अगर लाठी चलावे तो वैसे लगती है नहीं। स्वप्न में अगर हम डूब रहे हैं तो वैसे डूब रहे। स्वप्न में अगर पिटाई शुरू है या कोई गला काटने जा रहा तो वैसे भय लग रहा है, और है कुछ नहीं तो दंड तो भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही जागृत में है, ऐसे ही नरक आदि में है। अविनाशी आत्मा को कोई कष्ट थोड़ी होता है, पर जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो स्थूल देह सैया में पड़ी होती और स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हम समुद्र में डूब रहे हैं, अब वो ऐसे ही कष्ट हो रहा है, समुद्र भी दिखाई दे रहा है, डूब भी रहे हैं, और जो डूबने वाला शरीर है वो तत्कालिक स्वप्न में बना हुआ है, क्योंकि शरीर जो स्थूल शरीर वो तो सैया में सो रहा है। अब बताओ उसको कैसे बचाया जाए? जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, अब आप उपाय बताओ उसको कैसे बचाया जाए? ना बस एक उपाय है कि उसको जगा दो, चाहे जितनी नौका लगा दो, चाहे मंत्रवेत्ता लगा दो, चाहे तैराक लगा दो, उसको आप बचा ले सकते। उसके बचाने का उपाय है जगा दो। ऐसे ही हम सब

0: आगा। बोले मोह निद्रा में सब सो रहे, ये पत्नी है, लड़का है, बच्चा है, रुपया है, पैसा है, ये कर लिया, ये कर लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, और सोचते सोचते मर गए, कुछ नहीं कर पाए जो करने आए थे। अब कोई सदगुरु जगा दे, ए उठ मोह निद्रा में सो रहा है, तो जानस तबई जीव जग, जब सब विषय विलास विरागा, तभी जानना सत्संग का रंग चढ़ रहा है, जब गंदी बातें छूटने लगे और अच्छे आचरण होने लगे और भगवान नाम जप होने लगे, तो जान लेना आप जाग रहे हैं, और जग गए तो स्वप्न के जैसे सारे दुख मिट जाते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे पाप दुख चिंता शोक सब नष्ट हो जाएंगे। पर जगना पड़ेगा, बिना जगे नहीं हो सकता, बिना जगे एक ही उपाय है, जगना पड़ेगा, अर्थात भगवत प्राप्ति करना पड़ेगा, नहीं तो दुख से पिंड नहीं छूटेगा, है झूठा पर बहुत जोर का फुसकार मार के काटता है, झूठा सांप है रस्सी का सांप, पर ऐसा काटता है, वो ऐसा अनुभव होता है कि जहर चढ़ गया पक्का, देख लो सब पूरा जहर चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं हुआ, आत्म तत्व को ना कभी फर्क पड़ा था, ना पड़ रहा है और ना पड़ेगा। पर भैया ये स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है, इससे जगो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन, और जगत सब सपने में हो, ना कोई माता था ना कोई पिता था, ना है और ना रहेगा, ऐसे ये रूप एक दिन नहीं दिखाई देगा, लाख उपाय कर लेना मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म खेल, ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में प्रवचन कर रहा, इसका क्या भरोसा, स्वप्निक है ये स्वाप्निक है, जो इसके अंदर है वो सत्य है, और अंदर वाले से परिचय नहीं हुआ, बाहर वाले का टिकेगा नहीं, भाई इसी में हम झूठे में मारे जाते हैं, हर जन्म में मारे जा रहे हैं, हम झूठे से प्रेम करते हैं बाहरी और वो टिकता नहीं, और जो अंदर का है उससे प्यार हुआ नहीं, खाली हाथ फिर। तो एक बार तो यार इस पर विचार करो कि मेरे जीवन का परम लाभ क्या है, भगवान का चिंतन, भगवत प्राप्ति, इसी से परम लाभ मिलेगा।
1: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जे. शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जे. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
2: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
3: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है, मोबाइल नंबर है 76545 67666।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं, वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, सुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 90971-6602।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

केवट से निहोरा करके श्री रामचंद्र पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण सहित गंगा पार तो उतर गए, किंतु केवट को उतराई देने की उनकी कोई युक्ति सफल नहीं हुई। श्री राम ने स्नान कर पार्थिव पूजा की तथा सीता ने गंगा से हाथ जोड़ अपना मनोरथ पूरा करने की प्रार्थना की। माँ गंगा को रघुवीर की प्रियतमा की महिमा ज्ञात थी, फिर भी उनकी विनती सुनकर भागीरथी ने कहा, हे सीते, तुम अपने प्राणनाथ तथा देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे और तुम्हारा यश संपूर्ण जगत में छाएगा। उधर श्री रामचंद्र ने केवट को भक्ति का वरदान देकर विदा करना चाहा, तो निषाद राज ने दो चार दिनों तक उनके साथ रहकर उनके चरणों की सेवा करने की अनुमति चाही। भक्त वत्सल भक्त की प्रार्थना कैसे न मानते। सीता लक्ष्मण सहित उन्होंने श्री गणेश तथा शिवजी का स्मरण किया तथा माँ गंगा को सिर नवा निषाद राज को साथ लेकर वन की ओर चले।

प्रयाग क्षेत्र को तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम पर स्थित इस पुण्य भूमि पर पहुंचकर सबके मनोरथ सफल हो जाते हैं। ऐसी पावन भूमि के दर्शन कर श्री रामचंद्र ने परम सुख का अनुभव किया। उन्होंने सीता, लक्ष्मण तथा सखा निषाद राज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा कह सुनाई। सभी ने त्रिवेणी के दर्शन किए। वहां स्नान कर विधि पूर्वक शिव तथा तीर्थ देवताओं की पूजा की और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे। श्री राम ने भरद्वाज मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो मुनिराज ने उन्हें हृदय से लगा लिया। आनंदातिरेक में आशीर्वाद देते हुए उन्हें यह प्रतीति हुई कि देवी सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम के दर्शन कराकर विधाता ने उनके संपूर्ण पुण्यों का फल लाकर आंखों के सामने रख दिया है। प्रेम सहित पूजन करके भरद्वाज जी ने उन्हें कंद मूल फल खिलाए और स्नेह सनी वाणी में अपने उद्गार प्रकट किए। आपके दर्शन कर आज मेरी तपस्या, जप योग, तीर्थ सेवन और त्याग, वैराग्य सभी सफल हो गए। प्रभु दर्शन के अतिरिक्त लाभ और सुख की कोई अन्य सीमा नहीं है। जब तक मनुष्य मन, वचन और कर्म से छल कपट त्याग कर आपका दास नहीं हो जाता, तब तक कोटि उपाय करके भी उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजैट पर।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
11: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18-744।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
6: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
6: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
6: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
8: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: छब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: सुनिए जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी सिजेरियन हर्निया अपेंडिक्स पित्त की थैली बवासीर भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
0: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा साड़ी और गाउन दिलाओगे।
0: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
0: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
9: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर पटना कलकत्ता लखनऊ बनारस चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03 6200-42-34-03।
11: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
12: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
13: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
12: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
16: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स।
6: BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
4: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
6: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
4: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
6: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
4: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
6: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच ब्रांच में 9693101611।
6: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602। भोरे ब्रांच में 8207856404।
4: सिवान ब्रांच में 9942071405। मेरवा ब्रांच में 8207856403।
17: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
18: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
19: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
20: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष को SP ने किया निलंबित। बाल श्रम रोकने को ली गई शपथ। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक का सख्त फरमान जारी। हत्या के प्रयास में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गैस सिलेंडर को लेकर जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष को कार्यों में लापरवाही, थिथिलता और नेतृत्व क्षमता के अभाव को देखते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार पासवान को अनुशासनहीनता और कार्यों में लापरवाही, वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना सहित तमाम मामलों में शिकायतें मिली थी, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन के बाद अब इन्हें जीविकोपार्जन के लिए कुछ वेतन भत्ता मिलेगा। इनके जगह पर बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष अंकित कुमार को बनाया गया। अंकित कुमार वर्तमान में SC ST के थाना अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने इन्हें अब बैकुंठपुर का थाना अध्यक्ष बना दिया। आज अंकित कुमार ने बैकुंठपुर थाने में पहुंचकर अपना चार्ज भी ले लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों को क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश भी दिया है, और क्राइम मीटिंग में ही सुभाष कुमार पासवान के विरुद्ध कई मामले सामने आए, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें क्राइम मीटिंग के दौरान ही पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया था। बिहार सरकार के मुख्य सचिव एवं श्रम संसाधन तथा प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के निदेश के आलोक में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला समाहरणालय कक्ष में बाल श्रम से संबंधित शपथ पत्र ग्रहण समारोह का आयोजन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी और समाहरणालय के कर्मी उपस्थित रहे। जिला पदाधिकारी ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए संबंधित नारा एवं जिंगल्स के ई रिक्शा को प्रचार प्रसार हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पदाधिकारी ने संबोधन में कहा कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस पर उन्होंने बाल श्रम को एक सामाजिक अभिशाप बताया तथा उससे उन्मूलन के लिए सभी के सहभागिता पर विशेष बल दिया। साथ ही श्रम अधीक्षक की अध्यक्षता में बिहार कौशल विकास मिशन सभागार में बाल श्रम उन्मूलन विषय पर समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य गणों तथा सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं प्रत्येक प्रखंड से 2 मजदूर प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बाल श्रम से संबंधित विषयों पर व्यापक चर्चा किया गया। साथ ही सभी अभिभावकों, शिक्षकों, उद्योग, सामाजिक संगठनों, नियोजकों से अपील किया गया कि वे बाल श्रम उन्मूलन अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं और बच्चों को शिक्षा एवं बेहतर भविष्य से जोड़ने में सहयोग करें। नियोजकों से भी बाल श्रमिक से कार्य नहीं करवाने के लिए अनुरोध किया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी एवं पुलिस सभा का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि इस बैठक में जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष एवं शाखा प्रभारी शामिल हुए। बैठक में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों के निष्पादन, गश्ती, वाहन जाँच और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गयी। पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सभी लोग सक्रियता से काम करें। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जेल से छूटे हुए अपराधियों और संगठित गिरोह पर कड़ी निगरानी रखें, भू माफिया, शराब तस्कर और एनडीपीएस मामलों में कार्रवाई तेज करें, लूट और चोरी में शामिल अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखें, लंबित वारंट, कुर्की और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी में भी तेजी लाएं, साइबर अपराध मामलों के त्वरित निष्पादन का भी आदेश दिया गया, अवैध संपत्तियों की पहचान कर उसके जब्तीकरण की कार्रवाई पर भी पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया, साथ ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता के साथ काम करने का पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में गोपालपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के अहिरौली दुबौली गांव में छापेमारी की और वहां हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त बाड़ू अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इसे पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के तरफ से गैस की उपलब्धता को लेकर जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 3 एजेंसियों के माध्यम से गैस की सप्लाई होती है, जिसमें HPCL, BPCL और IOCL के प्रबंधकों द्वारा उपलब्ध कराए गए गैस उठाव एवं वितरण से संबंधित जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सिलेंडर पूर्ण मात्रा में जिले में उपलब्ध है। IOCL के इस जिले में 26 विक्रेता हैं और इनके स्टॉक में 18,605 सिलेंडर हैं। BPCL के कुल 8 थोक विक्रेता हैं और इनके पास 4,568 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, तो वही HPCL के कुल 12 विक्रेता हैं और इनके पास 6,005 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। इस प्रकार जिले में IOCL, BPCL और HPCL विक्रेताओं के पास मिलाकर कुल 29,178 गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। जिला पदाधिकारी ने आम जन से भी कहा है कि अगर गैस से संबंधित किसी भी तरह का कोई शिकायत है तो उसके निस्तारण के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, पालीवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06/56-22-7007 बताया जा रहा है। इसके अलावा 22-75-07, 22-75-08, 22-75-09 और 22-75-10 नंबर में भी आप 06/56 कोड लगाकर डायल कर सकते हैं। समस्या के निदान को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज और हथुआ के द्वारा अपनी अहम भूमिका निभाई जा रही है। जिले में गैस की किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए सभी एजेंसियों द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत पटना के लोदीपुर गांव के पंचायत रघुरामपुर में किसानों के लिए जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य किसानों के बीच संतुलित उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती, समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन तथा टिकाऊ कृषि तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण की अनुशंसाओं के अनुसार करें तथा रासायनिक उर्वरकों के संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाएं। किसानों को जैव उर्वरकों, कंपोस्ट और गोबर की खाद तथा अन्य जैविक संसाधनों को अपनाने के लिए भी सलाह दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जन शिकायतों की सुनवाई हुई। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा और पुलिस उपाधीक्षक यातायात सोमेश मिश्रा के द्वारा लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादित करने का प्रयास भी किया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दूर दूर से आए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष रखते हुए सहायता की गुहार लगाई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो रिमझिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ दुनिया के किसी भी शहर से उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बैकुंठपुर के थाना अध्यक्ष को SP ने किया निलंबित। बाल श्रम रोकने को ली गई शपथ। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक का सख्त फरमान जारी। हत्या के प्रयास में एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गैस सिलेंडर को लेकर जिला पदाधिकारी ने दी जानकारी। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी। और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहां के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीरफाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
22: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
23: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
24: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
23: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
24: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
23: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
25: ठक ठक।
26: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
23: अच्छा मिला ही नहीं।
26: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
26: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
22: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
27: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
28: नमस्कार श्रोताओं, कहते हैं जहां समझ हो वहां तरक्की, और जब सेहत की समझ जुड़ जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। तो शुरू करते हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ गई, और मैं हूं आपकी RJ दिव्या, जो हर सप्ताह सामुदायिक रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर लेकर आती हूँ आपकी सेहत और बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक खास जानकारी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM की, और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे अपने सेहतिया भैया और टिकन भाभी।
29: नमस्कार RJ साहब, नमस्कार श्रोतागण। आज डिजिटल जमाने की सेहत की बातें होंगी, बड़ा मजा आएगा।
28: सेहतिया जी, जब से आए हैं मोबाइल से नजर ही नहीं हट रहे, लगता है रील का चस्का लग गया है।
29: अरे नहीं नहीं, मैं कोई रील नहीं देख रहा, मैं तो आभा हेल्थ ID के बारे में जानकारी पढ़ रहा था।
28: अरे ABHA के बारे में मैंने भी कुछ कुछ सुना है, तो श्रोताओं को बताएं ये ABHA हेल्थ ID आखिर होती क्या है?
29: ABHA आभा का मतलब है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। यह एक यूनिक डिजिटल हेल्थ ID है जिसमें आपका मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन सेव रहता है। इससे डॉक्टरों को इलाज में आसानी होती है और मरीजों को फाइल की झंझट नहीं रहती।
30: यानी इलाज के वक्त बस आभा नंबर बताओ और डॉक्टर को सब कुछ दिखे, कोई एक्सरे, कोई रिपोर्ट, सब डिजिटल।
28: तो आयुष्मान कार्ड भी तो एक सुविधा सरकार ने चलाई है, तो हमें समझाइए आयुष्मान कार्ड और ABHA कार्ड में क्या फर्क है।
29: बहुत जरूरी सवाल है। आयुष्मान कार्ड यानी पीएमजे कार्ड एक बीमा योजना है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पाता है। आभा कार्ड सिर्फ आपकी स्वास्थ्य जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड।

0: आयुष्मान कार्ड और आभा एटी की जरूरत अलग अलग है, लेकिन साथ में होने पर इलाज बहुत आसान हो जाता है। पर इन सब का क्या फायदा जब सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर इतना समय लग जाता है डॉक्टर को दिखाने में, उस पर तो सरकार कुछ किया ही नहीं।
1: अरे नहीं नहीं किया है ना, जब आप अब जब भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे तो स्कैन एंड शेयर का QR कोड लगा होता है, जिससे कि लाइन में लगकर पर्ची बनवाने का झंझट खत्म, बल्कि अब बस स्कैन करो और अपना टोकन नंबर लो, जिससे एक घंटे तक का समय बच जाता है। आभा और स्कैन एंड शेयर से अब न फाइल न पर्ची।
2: वाह, तो अब तो इलाज भी हाईटेक हो गया।
0: एक सवाल और, इतनी सारी जानकारी ऑनलाइन रहेगी तो इसका दुरुपयोग तो नहीं होगा?
1: बिल्कुल सही चिंता है, लेकिन ABDM में डेटा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। 2023 का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP कानून लागू है। आपकी मर्जी के बिना कोई जानकारी नहीं देख सकता, और साथ ही आपके पास विकल्प होगा कि जो भी जानकारी आप अपने डॉक्टर के साथ दिखाना चाहते हैं वो विकल्प चुनें, बाकी आपके अलावा कोई नहीं देख सकेगा।
0: भैया ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, मतलब आसानी की आसानी और प्राइवेसी साथ। कोई अगर आभा ID बनवाना चाहे तो कैसे बनवाए?
1: बहुत आसान है, abdm.gov.in वेबसाइट या आभा ऐप से आधार या मोबाइल नंबर के जरिए खुद भी बना सकते हैं। भाई कोविड के वैक्सीन लगवाए थे, आधार से लगवाए थे?
0: हाँ लगवाए थे, और आधार कार्ड देकर ही लगवाए थे।
1: तो तुम्हारा आभा नंबर बना हुआ है, चेक करो, बहुत आसान है चेक करना। बस अपने फोन में आभा ऐप डाउनलोड करिए और आधार कार्ड जिस फोन नंबर से रजिस्टर किया है उससे लॉगिन करने का प्रयास करो। यदि आभा ID बनी होगी तो OTP आएगा, नहीं तो आभा ID रजिस्टर करने को बोलेगा।
2: और अगर मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आशा दीदी या नजदीकी अस्पताल मदद कर देंगे।
0: स्वागत है आपका दोबारा। एक और जरूरी सवाल, तो क्या ये सारी सुविधाएं सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों तक सीमित है या आभा सेवाएं निजी अस्पतालों में भी मिलती हैं?
1: बिल्कुल मिलती है, अब कई प्राइवेट अस्पताल ABDM से जुड़ गए हैं। इससे रिकॉर्ड साझा करना, इलाज करवाना, यहाँ तक कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और दवाई मंगवाना भी आसान हो गया है।
0: तो अगर किसी को ये जानना हो कि कहाँ कहाँ पर ये सुविधाएं हैं या कौन कौन से डॉक्टर ये सुविधाएं दे रहे हैं तो वो कहाँ मिलेगी?
1: तो इसका सीधा उपाय है ना, NHA के वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पर बहुत से विकल्प होते हैं इन जानकारियों के साथ, कहाँ पर किस ब्लॉक में किस गांव में किस स्वास्थ्य केंद्र पर कौन सी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही देश के बहुत बड़े निजी अस्पताल भी ABDM से अब संबंधित हैं, जिसकी जानकारी भी वहीं पर मिल जाएगी।
0: पर दिक्कत तो इसकी आती है कि सारी सुविधाएं या सरकारी डॉक्टर निपुण होते हैं, या क्या पता कौन से डॉक्टर अपनी दुकान चमकाने के लिए बोल दे कि वो ABDM की सुविधाएं दे रहा है।
2: अरे अरे अरे कैसी बात कर रहे हो, हमारी सरकार भी आधा अधूरा काम नहीं करती। NHA की वेबसाइट पर जो भी डॉक्टर और स्वास्थ्य केंद्र सूची में है वह सब भारत और राज्य सरकारों में मेडिकल बोर्ड द्वारा अधिकृत है, और यह योजनाएं पूरे देश में मान्य है।
0: क्या मतलब पूरे देश में मान्य है? वैसे पूरे देश के नाम पर एक सवाल ध्यान में आया कि यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर कमजोर है और वो अपने निवासी राज्य या शहर से बाहर है तो क्या वो इन सब का फायदा उठा सकता है?
2: अब आए ना तुम सही मुद्दे पर, यही तो समझना चाह रहे थे हम दोनों इतनी देर से कि यदि किसी का आभा ID बना हो और वो उसे इस्तेमाल कर रहा हो तो वो देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर में हो तो वह इस पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड यानी आभा ID में मौजूद जानकारी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है, अपना कागजी जत्था लेकर चलने की जरूरत नहीं।
1: और आसानी की बात, क्योंकि इस पर सभी रिकॉर्ड सरकारी अधिकृत स्वास्थ्य केंद्रों और लैब द्वारा रिकॉर्ड होगा तो हर जगह मान्य होगा, इसलिए बार बार अलग अलग डॉक्टरों के लिए जांच का खर्चा भी बचेगा। तो इस तरह आभा कार्ड खास है, अगर आपने आभा कार्ड में पुराने रिपोर्ट सेव कर रखी हैं तो दोबारा टेस्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: तो क्या इसका मतलब है कि कोई भी कहीं भी कुछ भी सेवा ले सकता है? पर क्या ये सुविधा सिर्फ आभा कार्ड के साथ है या आयुष्मान कार्ड भी कुछ इस तरह की सुविधाएं देता है?
1: तो और नहीं तो क्या है, तुम्हें याद नहीं किस तरह बिरजू गया था गुजरात कमाने और उसको डॉक्टर ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन बता दिया था अचानक दर्द होने पर? तब यही आयुष्मान कार्ड और आभा ही तो काम आए थे। अब दूसरे राज्य में गरीब इंसान कहाँ से पैसे जमा करता और कहाँ से अपनी मेडिकल हिस्ट्री लेता, जब ही तो उसका आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड काम आया और उसका सफलतापूर्वक इलाज हो सका बिना किसी खर्च के।
0: अरे हाँ हाँ मैं तो भूल गई थी ये बात कि जिस तरह आभा कार्ड हर जगह आपका हेल्थ रिकॉर्ड मान्य तौर पर दिखता है, उसी तरह आयुष्मान कार्ड देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधिकृत स्वास्थ्य में मान्य है और वो सुविधा ले सकते हैं।
2: पर ध्यान रहे, परिवार में जिस जिस का नाम राशन कार्ड पर है उन सब का अपना अलग अलग उनके नाम से आयुष्मान कार्ड होना चाहिए, जिनका नहीं होगा वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की

0: घर नहीं उठा पाएंगे।
1: तो इसका मतलब है कि ABDM हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर कर सकता है।
2: जी जी बिल्कुल, आभा ID जो कि एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचान होगा, जो कि अपने सारे हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित रखता है, साथ ही मेडिकल रिकॉर्ड को डॉक्टर के साथ आसानी से साझा करने में मदद करता है। इससे मरीजों को अस्पताल में बार बार कागजी दस्तावेज लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: दूसरा, कैन एंड शेयर सुविधा आपको अस्पताल की लंबी कतारों और पर्चियों से बचाकर समय की बचत करती है। वहीं UHI प्लेटफॉर्म से आप घर बैठे डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और दवाएं मंगवा सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री से देश भर के योग्य डॉक्टरों की जानकारी मिलती है और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री से आपके नजदीकी क्लिनिक, लैब और अस्पताल की पूरी सूची एक क्लिक में उपलब्ध हो जाती है।
1: अरे वाह वाह, पर एक बात और तो बताइए, अगर किसी का आभा नंबर खो जाए तो?
0: तो घबराइए नहीं, वेबसाइट पर आभा नंबर पुनर्प्राप्त करें पर जाएं, मोबाइल नंबर डालिए, OTP डालिए और नंबर दोबारा मिल जाएगा।
1: और जानकारी अपडेट करनी हो तो
2: वेबसाइट या ऐप से लॉगिन करके प्रोफाइल एडिट कीजिए, नाम, मोबाइल, पता सब बदल सकते हैं और अस्पताल में जाकर अपडेट भी कराया जा सकता है।
1: देश भर में ABDM की स्थिति कैसी है?
2: सरकार इस मिशन को तेजी से फैला रही है, सरकारी और निजी दोनों अस्पताल इससे जुड़ रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बन रहा है।
0: डॉक्टर, मरीज, फार्मेसी, लैब सब एक छतरी के नीचे आ रहे हैं, इससे इलाज पारदर्शी, सुलभ और तेज होगा।
1: और डिजिटल अपनाने की संभावनाएं?
2: भारत में डिजिटल एडॉप्शन तेजी से बढ़ रहा है, इंटरनेट, स्मार्टफोन से अब लोग डिजिटल सेवाएं अपनाने लगे हैं। ABDM यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की ओर बढ़ा कदम है।
1: सेहतिया भैया टिकन भाभी, आखिरी में ये बताइए, आम आदमी को ABDM से क्या उम्मीद रखनी चाहिए?
2: उम्मीद रखिए कि अब इलाज में भाग दौड़ कम होगी, रिकॉर्ड सुरक्षित होंगे और सिस्टम भरोसेमंद होगा।
0: और ये भी उम्मीद रखिए कि अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, सलाह, रिपोर्ट सब कुछ फोन पर ही होगा।
1: तो श्रोताओं, आज की बातचीत से ये समझ में आया कि ABDM सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हमारी सेहत को सुरक्षित और सरल बनाने का डिजिटल समाधान है। अगर आपने अभी तक आभा ID नहीं बनाई है तो आज ही बनवाएं। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और डिजिटल बनिए। नमस्कार।
3: हम सब मिलकर आज शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
4: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
4: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
4: संतुलित आहार और व्यायाम को अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
4: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493945651 या 97097506575।
12: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
11: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
10: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
11: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
10: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
10: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
13: सुनिए सुनिए सुनिए,
14: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
13: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
14: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
13: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
8: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
7: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
8: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710 30 92 या 97 65 65 750।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
4: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
3: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
4: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
3: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
4: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $16 अरब हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित जैन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव खबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
4: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
6: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमरीकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमरीका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं। अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द। तेहरान ने कहा, अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा। हम जानते हैं खेल क्या है। यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से

0: Presents Morning News.
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9557 97644।

0: मेरा पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
7: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊं अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
0: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034648652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी,
2: हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
10: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासी खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
9: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
11: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
9: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
11: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
9: और 90-97-61-60-02।

0: भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य में विकसित किए जा रहे नए औद्योगिक क्षेत्रों और सैटेलाइट टाउनशिप योजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा। उन्होंने उद्योग विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाई जाए। श्री चौधरी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय पर बल दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। यह टीम मुख्यालय की आईटी टीम के साथ लगातार संपर्क में रहकर तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करेगी। राजस्व कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलावार समीक्षा के दौरान श्री जायसवाल ने यह निर्देश दिए। इधर राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और भूमि संबंधी अनियमितताओं के आरोप में 8 अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। पिछले एक महीने में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के 50 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि केक की सजावट और मिठाई के डब्बों समेत अन्य खाद्य पैकेट में पिन या तार का इस्तेमाल उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। FSSAI के अनुसार जन स्वास्थ्य को देखते हुए खाद्य उत्पाद व्यापारियों को पैकेट में पिन और तार का उपयोग बंद करना चाहिए। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान डॉक्टर सोमनाथन ने सभी संबंधित हितधारकों के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से परीक्षा का सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन नीट पुनर्परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए घनिष्ठ समन्वय में काम कर रहे हैं। वहीं NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया AI-171 विमान दुर्घटना की जांच की प्रगति पर अंतरिम बयान जारी किया है। पिछले साल अहमदाबाद में हुई इस दुखद दुर्घटना को एक साल पूरा हो गया है। AAIB ने कहा है कि सभी जांच गतिविधियां पूरी होने और आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के बाद अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। इधर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि विमान दुर्घटना की जांच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के अनुसार पेशेवर तरीके से की जा रही है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा लोक भवन और उच्च न्यायालय परिसर में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम बढ़ती उम्र के लिए योग निर्धारित की गई है। इस थीम के माध्यम से लोगों को बढ़ती उम्र में बेहतर स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन शैली और मानसिक संतुलन के लिए योग अपनाने को प्रेरित किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मनरेगा के तहत 990 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रदेश में संचालित हो रही मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने सामग्री मद में 73,556 लाख रुपए और प्रशासनिक मद में 1,203 लाख रुपए आवंटित किए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। विभाग के अनुसार सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेगूसराय, लखीसराय, बांका, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर जिलों में मानसून के प्रभाव से अच्छी बारिश हो रही है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और जमुई जिले के कुछ भागों में भी मानसून ने प्रवेश कर लिया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य और दक्षिणी भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है।
1: राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में कुछ जगहों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं पूर्वी भाग के जिलों एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिलों में एक दो जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सरकार द्वारा सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड लेक्चरर तालित मिजेन ने इस योजना के लाभों पर बात की। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश में 21 नए पालना घर खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत नए पालना घर की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। प्रदेश में पहले से 79 पालना घर संचालित हो रहे हैं। पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के मणिचक गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया है। नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि अपराधियों की ओर से की गई फायरिंग में मसौढ़ी के थाना अध्यक्ष राहुल कुमार और दारोगा संजय कुमार घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश के सभी 76,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों की जमीन का डाटा बैंक बनाया जाएगा। साथ ही विद्यालय भवनों और अन्य संरचनाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार डाटा बैंक बनाने की जिम्मेदारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग के पूर्व अधिकारियों को सौंपी जाएगी। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। भारत का पहला मुकाबला कल चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बिहार में भ्रष्टाचार कर कोई नहीं बच सकता। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नीट में छात्रों को मिलेंगे अतिरिक्त 15 मिनट। दैनिक भास्कर ने खाड़ी युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर लिखा है, ईरान के साथ युद्ध खत्म, करार जल्द होगा। प्रभात खबर ने मौसम की गतिविधियों को तरजीह देते हुए लिखा है, सूबे में मानसून ने पकड़ी रफ्तार 17 जिलों में पहुंचा। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, अंतरराष्ट्रीय शूटर जसपाल राणा का निधन। आज अखबार लिखता है, बिना रेरा नंबर के खरीदा फ्लैट या प्लॉट तो फंसेगा पैसा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, राजस्व कार्यों की निगरानी के लिए हर जिले में एक तकनीकी टीम बनाई जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य पदार्थों और उनकी पैकेजिंग सामग्री में धातु की पिन और तारों के इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए। और दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के 17 जिलों में पूरी तरह सक्रिय, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों में आज भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 से 7 तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
8: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
14: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
15: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
14: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
15: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
14: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
15: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
13: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
12: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
17: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
16: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
17: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
16: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
18: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
19: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
18: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
19: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
18: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
19: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
20: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
21: हेलो,
22: मैम मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ।
21: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
22: यस मैम।
21: जी, कैसे हैं मनोज जी?
22: मैं ठीक हूँ मैम।
21: जी तो पढ़ाई कहाँ तक की है आप मनोज?
22: मैं ग्रेजुएशन किया हूँ।
21: उसके बाद पढ़ाई जारी है कि बंद है?
22: नहीं, इस समय तो बंद है। ग्रेजुएशन के बाद जो है ना, मैं इधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए आप एक साल बाद जो है आपकी बार रुकूंगा।
21: अच्छा अच्छा, तो मनोज जी अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
22: पापा का नाम है अनिरुद्ध सिंह और मम्मी का नाम है राम दुलारी देवी।
21: जी, तो पापा जी आपके क्या करते हैं?
22: पापा ये दुकान है, जैसे अलमारी बक्से कूलर वगैरह की है ना, यही सब अलमारी की दुकान है।
21: तो तैयार है मनोज जी आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
22: यस मैम।
21: ओके,

0: तो चलिए मनोज जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर, बी गोविंद सागर, सी नागार्जुन सागर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर ए कौन सा था?
0: इंदिरा सागर।
1: मैम नागार्जुन में लगा दीजिए।
0: नागार्जुन में लगा दें?
1: वैसे तो कन्फर्म तो नहीं है लेकिन।
0: चलिए तो लॉक करें
1: जी। यस मैम।
0: ओके तो चलिए मनोज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नागार्जुन सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा गोविंद सागर झील, ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: मैं कमरान नफीद, विलेज पकड़ी सुल्तान
0: जी। क्या हालचाल है कमरान जी?
2: ठीक है, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है कमरान जी आपकी?
2: मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है।
0: चलिए तो अपने अम्मी अब्बू का नाम बता दीजिए।
2: मोहम्मद रशीद अहमद रजिया खातून
0: जी। लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
2: जी
0: जी,

0: तो कमरान जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है?
1: ऑप्शन कट रहा है, आवाज थोड़ा कट रहा है।
0: बोल रहे हैं कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? आवाज जा रही है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन सी
0: श्योर है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दो?
1: जी।
0: तो चलिए कमरान जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विटामिन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: तो कमरान जी, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर। आपका समय शुरू होता है अब। आर्यभट्ट को लॉक करें? श्योर नहीं है?
1: श्योर नहीं है।
0: चलिए, तो चलिए कमरान जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आर्यभट्ट को लॉक कर

0: ये सवाल कैसा?
1: विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
0: जी
1: ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल और सी गोभी मरुस्थल।
0: सहारा ऑप्शन।
1: श्योर है?
0: जी।
1: ओके, तो चलिए रशीद, कमरान रशीद जी, आपकी तीसरे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
0: हाँ मैम।
1: ओके, आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, भारत से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत से होकर के गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9। आपका समय शुरू है अब।
0: मैम 8 को फिक्स
1: करें। श्योर है?
0: हाँ मैम श्योर है।
1: लॉक कर दें?
0: जी 8।
1: चलिए, तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 8 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन और सी 52वां संशोधन। आपका समय स्रोत है अब।
0: ये तो उनको याद था,
1: अभी ध्यान नहीं आ रहा।
0: अभी में ना दो तीन दिन पहले पढ़ा था इसको, मैं पढ़ता हूँ ऑनलाइन, वो याद था। क्वेश्चन पर,
1: संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
0: मैम 42।
1: श्योर है?
0: नहीं 42 मैंने करी थी।
1: 42 को ही लॉक करें?
0: हाँ वो याद नहीं आ रहा।
1: ओके, तो चलिए कमरान जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 42 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
0: मैं पढ़ा था मगर उनको ध्यान नहीं था।
1: चलिए,
0: हाँ।
1: तो लिया जाए छठा प्रश्न।
0: जी मैं।
1: संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? आपसे आपका छठा प्रश्न है।
0: जी,
1: संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय और सी संसद। आपका समय स्रोत है अब।
0: सवाल क्या
1: था? संविधान का रक्षक किसे माना जाता है?
0: राष्ट्रपति को। फिर करिए
1: राष्ट्रपति को?
0: जी।
1: श्योर है?
0: जी।
1: ओके, तो चलिए कमरान जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय। जी, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण

0: साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86 034 48 652 पे।
1: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
1: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
12: जी मैम।
11: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
12: नाम सलोनी कुमारी बंजारी, ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
11: जी, कैसी हैं सलोनी जी?
12: ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
11: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सलोनी जी आपकी?
12: BA फाइनल ईयर
11: चल रहा है।
12: हाँ।
11: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
12: अच्छी चल रही है।
11: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
12: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है कुंदन लाल।
11: ठीक, तो लिया जाए आपसे आज क्या पहला प्रश्न?
12: हाँ लीजिए।
11: ओके,

0: तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ,
0: भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंद्रज सागर, ऑप्शन बी गोविंद सागर और ऑप्शन सी नागार्जुन सागर।
1: गोविंद सागर।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है पर लग रहा यही होगा।
0: लॉक कर दें?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है।
1: हाँ,
0: भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी हीराकुंड, सी गोविंद सागर। आपका समय
1: होता है।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर हो।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय और सी संसद।
1: सर्वोच्च न्यायालय।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है।
0: लॉक कर दें?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को लॉक करते हैं। और आपको बता दी कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947। आपका समय श्रोता है अब।
1: बी लगाइए।
0: 26 नवंबर 1949।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है। नहीं,
0: जनवरी 1950 नहीं हो सकता।
1: लगा लीजिए 26 जनवरी 1950।
0: एक बार फिर सोच लीजिए।
1: लगाइए 26 जनवरी 1950।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर 26 जनवरी 1950 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर था 26 जनवरी 1949, जो आपने पहले बताया था।
1: ठीक है।
0: हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो।
0: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
3: जी नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
3: शालू कुमारी सिरसी टोला से।
2: ठीक है, कैसी हैं सालू जी?
3: हम ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो कहाँ तक पढ़ाई की है सालू जी आप?
3: अभी 9th में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ।
2: 9th का चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है आपकी?
3: अच्छा चल रहा है।
2: आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
3: जी UPSC में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना।
2: अच्छा, तो तैयारी शुरू कर दी है कि अभी 10th के बाद?
3: 10th के बाद।
2: 10th के बाद, चलिए बढ़िया है। चलो, क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं आप?
3: हाँ किए हैं, एक बार मैंने दिया था 10 क्वेश्चन का टोटल आंसर, तो उसमें कुछ हुआ ही
2: होगा? जरूर दी है तो
3: पता नहीं।
2: पक्का होगा, ऐसा थोड़ी है, सबका एक साल में जब हमारा ये रेडियो रिमझिम का स्थापना दिवस होता है, जब सबको ही रहता है, उस बीच में बुलाया जाता है सभी को, जो पूरे साल में जितने लोग विनर बने होते हैं। आपके बगल में कोई है?
3: नहीं, वो पापा का फोन आ रहा है इसलिए।
2: अच्छा, कोई है तो फिर उन्हें भेज दीजिए या फिर आप कहीं अलग हो जाइए। ठीक है,
3: ठीक है।
2: ओके, तो सालू जी लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
3: हाँ,
2: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
3: मेरी मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद्र कुमार प्रसाद।
2: जी,

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ बोलिए।
0: कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन के।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विटामिन के को लॉक करते हैं। और आपको बताएं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा विटामिन सी, ना कि विटामिन के।
1: जी मैम।
0: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में की बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
11: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
11: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
11: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710309 या 90765065।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921, 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
14: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिंग के कार्यक्रम में, क्विज कॉन्टेस्ट में।
14: जी गुड्डू कुमार यादव बोल रहा हूँ।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं गुड्डू जी?
14: भाटवा रोड से।
0: भाटवा रोड से? ये कहाँ पड़ता है आपका भाटवा रोड?
14: कुचायकोट से।
0: कुचायकोट। कैसे हैं गुड्डू जी आप?
14: ठीक है,
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुड्डू जी आपकी?
14: ग्रेजुएशन तक हुई है।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
14: नहीं, बीएड कर रहे हैं।
0: अच्छा, बीएड चल रहा है, चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप अपना।
14: जी, पिताजी का नाम उमा शंकर यादव और माता जी का नाम कैलपति देवी।
0: जी, तो गुड्डू जी लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
14: हाँ लीजिए।
0: ओके,

0: तो गुरु जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, गोविंद सागर झील का संबंध किस बांध से है? गोविंद सागर झील का संबंध किस बांध से है? ऑप्शन ए है टिहरी बांध, बी है भाखड़ा बांध और सी है सरदार सरोवर बांध। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सरदार सरोवर को ठीक चाहिए।
0: प्योर है?
1: प्योर तो नहीं है लेकिन ठीक चाहिए।
0: ओके तो चलिए गुड्डू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भाखड़ा बांध। जी हेलो क्यूज कौन? हेलो।
2: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी
0: नाम बताइए अपना और कहाँ से?
2: जी मैं विमल कुमारी बोल रही हूँ लाइन बाजार से।
0: जी कैसी हैं विमल जी?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो पढ़ाई करती हैं आप?
2: हाँ पढ़ाई कर लिए है।
0: अच्छा फाइनल है?
2: हाँ अभी फिलहाल बंद है।
0: अच्छा कहाँ तक हुई है पढ़ाई आपकी?
2: ग्रेजुएशन तक।
0: ग्रेजुएशन करके छोड़ दी है?
2: हाँ।
0: तो आज के प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी मैम।
0: जी तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए विमल जी।
2: जी मेरे मम्मी का नाम प्रभावती देवी है और पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: तो लिया जाए प्रश्न पहला आपसे?
2: जी मैम।
0: जी तो चलिए विमल जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू है अब।
1: आपका आवाज कट गया मैम।
0: तो ऑप्शन फिर से बोले।
1: आपका आवाज नहीं सुनाई दिया शुरू में।
0: क्वेश्चन नहीं सुनाई पड़ा
1: जी।
0: क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छब्बीस जनवरी 1950।
0: श्योर है
1: जी?
0: लग कर दो
1: जी मैम।
0: ओके तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार और सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी ऑप्शन बी
0: थार मरुस्थल।
1: मेरा आवाज में थोड़ा फोन कट कट के आ रहा है ना, तो नहीं सुन पा रहे।
0: तो ऑप्शन फिर से बोले
1: जी।
0: ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल, बी है थार मरुस्थल, सी है गोबी मरुस्थल।
1: बी लॉक कर दीजिए,
0: थार मरुस्थल को।
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
1: ओके मैम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो कृष्ण कृष्ण कॉल की।
1: ओके
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं,
7: चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
13: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
13: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
15: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्यूरिंग जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट
15: जी। नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
15: निरंजन कुमार बोल रहे हैं। मतलब
0: निरंजन की रंजन?
15: निरंजन।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं निरंजन?
15: बतरदे से।
0: बतरदे
15: जी।
0: ये बतरदे किधर पड़ता है? नाम तो सुना हुआ है।
15: डौली प्रखंड पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा।
15: मेरे गाँव का नाम अंग्रेजों रखा था बेटरडे।
0: अच्छा,
15: बतरदे हो गया। अच्छा, दिन गुजरता था लोग का।
0: ये बतरदे थोड़ा सीधा हो गया, साधारण हो गया है।
15: हाँ हाँ,
0: कोई भी बोल सकता है। तो कैसे हैं निरंजन जी आप?
15: अपना सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
15: इंटर तक हुई है।
0: इंटर के बाद जारी है कि खत्म, वहीं से छोड़ दिए हैं?
15: छोड़ दिए हैं।
0: इंटर के बाद छोड़ दिए हैं।
15: 2020 में ही इंटर का एग्जाम।
0: अच्छा।
15: उसके बाद कोरोना आ गया, पैसा भी नहीं था एडमिशन कराने के लिए।
0: उस टाइम तो काफी लोगों का पढ़ाई लॉस हुआ है।
15: ऑन टाइम में मैंने ऑनलाइन कराए थे, कॉलेज में भेजा था नेचुरल जलाल, तो उसे पैसा 6000 रूपया लग रहा था 8 से दुकाने के लिए। 4000 रूपया लेकर गए थे, नहीं हुआ।
0: नाम आने के बाद 8000 रुपया लग रहा था।
15: 6000 एडमिशन के लिए।
0: लिस्ट में नाम आने के बाद?
15: हाँ, लिस्ट में नाम आने के बाद।
0: फिर तो ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था।
15: हाँ,
0: क्योंकि हमारे यहाँ तो जो कॉलेज है, यहाँ कमला राय है, उसमें तो इतना नहीं लगता है।
15: इधर उतना नहीं लगता है। उधर भेज दिया था।
0: तो आप ऑप्शन में लिए होंगे?
15: तो लास्ट में डाले थे, 10 ऑप्शन रहता है, 10 कॉलेज का डालना पड़ता था।
0: 10 कॉलेज का नाम होता है।
15: और लास्ट में डाले थे, किसी में डाल दिए।
0: चलिए, जो होना था वो हो गया।
15: उसमें जो मास्टर थे किधर है बात करना है, तो सब उल्टा पुल्टा बोल रहा था। रोज से घुमा सही है, तहने घुमा सही, काफी इस बार छोड़ दिए।
0: क्या करते हैं आप निरंजन जी?
15: अभी तो गांव में आए हुए हैं, बाहर आते हैं सूरत।
0: अच्छा, काम करते हैं।
15: हाँ,
0: तभी घर आए हुए हैं
15: जी।
0: रेडियो रिमझिम को कब से सुनते हैं आप?
15: रेडियो रिमझिम को तो हम 2009 से ही सुनते हैं।
0: मतलब जब से इसका स्थापना हुआ तभी से?
15: क्या,
0: जब स्थापना हुआ रेडियो रिमझिम का तभी से आप सुनते हैं?
15: हाँ हाँ अभी छोटे छोटे साइंस के क्लास में पढ़ रहे थे। दिन में दो तीन बार बंद हो जाता
0: था,
15: तो बढ़िया से सुनते थे। जब स्टार्ट होता था भक्ति गाना बजता था। जनरेटर जो चलता था उसका आवाज ही सुनाता था पहले,
0: कभी कभी आता था।
15: तो उस टाइम से ही सुन रहे हैं।
0: चलिए बढ़िया है। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं इससे पहले?
15: हाँ कॉल तो बहुत बार किए।
0: अच्छा तो लिया जाए आपसे आज का प्रश्न है। जी तो निरंजन जी आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
15: माता जी का नाम श्रीमती जनमती देवी और पिताजी का श्री सुमन माजी।
0: तो निरंजन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय श्रोता अब।
1: मूर्ख होगा।
0: क्योर है?
1: हाँ क्योर है।
0: लॉक कर दो।
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मूर्ख को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए
1: विटामिन सी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: चलिए तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विटामिन सी, लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? श्योर है? ओके। तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? चौथा प्रश्न आपसे ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार मरुस्थल, सी गोभी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: थार।
0: क्यों है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा सहारा
1: मरुस्थल।
0: थार भारत का है, हम विश्व का पूछे हैं।
1: अच्छा विश्व का।
0: कोई नहीं, नेक्स्ट संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है।
0: ठीक है, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
4: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
3: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
5: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
3: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
3: और 90971660।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो
10: हेलो,
0: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
10: नाम अनुराधा गुप्ता है, थाने से बोल रहे हैं।
0: नाम एक बार और बताइए।
10: अनुराधा गुप्ता।
0: अनुराधा गुप्ता
10: जी।
0: ठीक, कैसी हैं अनुराधा जी।
10: हम ठीक हैं, आप बताइए।
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था अभी।
10: कुछ नहीं, खाना बना रहे थे दोपहर में।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी।
10: जी मैं 12th पास हूँ, ग्रेजुएशन में अब गई हूँ।
0: अच्छा, तो आपका एम क्या है, कुछ सोचा है आपने।
10: टीचर का है, बट देखते हैं आगे क्या हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी।
10: जी
0: जी। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
10: जी
0: जी। अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: जी, पापा का नाम प्रभुनाथ गुप्ता है और मम्मी का नाम धर्मशीला देवी है।
0: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।

0: तो राजा जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन सी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिनलैंड, ऑप्शन सी
0: फिनलैंड।
1: जी
0: श्योर है?
1: देखिए श्योर नहीं है
0: तो लॉक करो।
1: जी
0: जी तो चलिए अनुराधा जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी फिनलैंड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: अच्छा आपका दूसरा प्रश्न ये है
1: जी,
0: भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1911, बी 1921 और सी 1931। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उन्नीस सौ इक्कीस। जी
0: श्योर है?
1: देखिए क्या श्योर नहीं है।
0: ओके चलिए तो अंदाजा जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी 1921 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी गलत है। सही उत्तर होगा 1911।
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो
2: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं गुलाम हुसैन मुंबई से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलाम जी?
2: बढ़िया है, आपने सुनाइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुलाम जी आपकी?
2: क्या मैम?
0: पढ़ाई कहाँ तक किए हैं आप?
2: मैट्रिक तक किए हैं मैम।
0: मैट्रिक तक किए हैं?
2: जी जी।
0: तो अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए आप।
2: मेरे अबू का नाम है अब्दुल वाहिद अंसारी, मम्मी का नाम है दीदी उम्मत।
0: लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी जी
0: जी

0: तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त और ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: जी मैम बी होगा,
0: श्रीगुप्त।
1: जी
0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है लेकिन लगता है।
0: ओके तो लॉक करें?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी श्रीगुप्त को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: जी आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? जल ही जीवन है किससे जुड़ा नारा है? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी शिक्षा और ऑप्शन सी विज्ञान। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विज्ञान होगा मैम।
0: विज्ञान होगा
1: जी।
0: श्योर है?
1: श्योर नहीं है लेकिन देखते हैं कोशिश से।
0: ठीक है तो लॉक कर दूं?
1: जी
0: जी। तो चलिए गुलाम जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विज्ञान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जल संरक्षण। जी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी? और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
7: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
7: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
7: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
7: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में में 9693101611।
7: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602। भोरे ब्रांच में 8207856404।
6: सिवान ब्रांच में 9942071405। मेरवा ब्रांच में 8207856403।
9: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
10: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो।
11: हाँ सर, वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
11: गौरवपति
0: जी। कैसे हैं जोहार जी?
11: हाँ मैम।
0: तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
11: अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं 10वीं क्लास में है।
0: किस क्लास में है?
11: 10 क्लास में, 10th में।
0: अभी 10th में पढ़ते हैं। पढ़ाई कैसे चल रही है?
11: अच्छी चल रही है मैम
0: जी। तो कुछ सोचा है आगे क्या करना है पढ़ाई कम्प्लीट करके?
11: नहीं मैम, अभी नहीं सोचे हैं।
0: अपने अम्मी अबू का नाम बता दीजिए।
11: अम्मी का नाम कैसा खाते हैं और अबू का नाम मेरा जानकारी।
0: जी, लिया गया आपसे आज का पहला प्रश्न।
11: यस मैम।
0: ओके

0: निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम मोम है? ऑप्शन ए पैराफिन मोम, ऑप्शन बी जुजुबा मोम और ऑप्शन सी मधुमोम। आपका समय होता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिए मैम।
0: ऑप्शन बी जुजुबा मोम।
1: यस मैम।
0: श्योर है?
1: नहीं मैं श्योर नहीं हूँ।
0: ये तो लॉक करूं?
1: यस।
0: ओके तो चलिए झार जी, आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी जुजुबा मोम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पैराफिन मोम।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें कॉल किया। हेलो।
2: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू मैम।
0: जी नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: नाम सलोनी कुमारी बंजारी ब्रह्मस्थान गोपाल से।
0: ठीक कैसी है सलोनी जी?
2: ठीक हूँ
0: जी। तो क्या हो रहा था अभी?
2: कुछ नहीं, पढ़ाई हो रही थी।
0: जी किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
2: बीए।
0: बीए चल रहा है? कौन सा ईयर?
2: फाइनल ईयर।
0: फाइनल ईयर चल रहा है?
2: हाँ।
0: तो कैसी चल रही है तैयारी?
2: अच्छी चल रही है।
0: चलिए बढ़िया है। तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ
0: ओके।

0: नाम बता दीजिए मम्मी पापा का अपना।
1: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल का।
0: ओके, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है सलोनी जी, भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु। आपका
1: क्वेश्चन बोलिएगा।
0: भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बंगला, बी तमिल, सी तेलुगु।
1: तमिल।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: तो लॉक करो?
1: हाँ लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी तमिल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा तेलुगु।
1: ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेल्पलाइन कॉन्टेस्ट में कॉल की।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18744।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार

0: पढ़ाई कर रही है कि छोड़ दिए हैं?
1: अभी तो छूट गया है मैम।
0: अच्छा अच्छा, तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप।
1: मम्मी का नाम प्रभावती देवी है, पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: जी तो लिया जाए आज का पहला प्रश्न आपसे।
1: जी मैम।
0: तो चलिए आपसे आज का पहला प्रश्न ये है विमल,

0: टीवी का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन लगी वेयर्ड, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय स्रोत है अब।
1: ऑप्शन ए जॉन लोगी।
0: जॉन लोगी वेयर्ड?
1: जी वेयर्ड।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है, देखते हैं।
0: लॉक कर दो?
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जॉन लोगी वेयर्ड को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी ब्राजीलिया और सी पेरिस। आपका समय स्रोत है अब।
1: दिल्ली।
0: दिल्ली। श्योर है?
1: हाँ।
0: लॉक करो?
1: जी।
0: चलिए तो विमल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा ब्राजीलिया।
1: ब्राजीलिया।
0: हाँ। ओके। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बताइए अपना।
2: राजन कुमार बोल रहा हूँ थामे से।
0: राजन
2: जी।
0: जी क्या हाल चाल है राजन जी?
2: ठीक है
0: जी। तो क्या करते हैं आप?
2: अभी हम ग्रेजुएशन पास करके बीएड कर रहे हैं।
0: जी जी। पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कल ही आया है।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी पूछिए।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: जी मेरे मम्मी पापा का नाम है श्री रामा जी प्रसाद, मम्मी का नाम है प्रभावती देवी।
0: जी। तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? बिजली का बल्ब सर्वप्रथम किसने बनाया? ऑप्शन ए माइकल फराडे, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन और ऑप्शन सी जेम्स वाट। आपका समय शुरू होता है।
1: ऑप्शन बी होगा, थॉमस एलवा एडिसन।
0: सही श्योर है आप?
1: जी
0: लॉक कर दूं?
1: जी लॉक कर दीजिए।
0: ओके तो चलिए राजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थॉमस एडिसन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? भारत ने 2025 में किस ग्रह के अध्ययन हेतु नया मिशन घोषित किया? ऑप्शन ए मंगलयान 2, ऑप्शन बी नेपच्यून मिशन और ऑप्शन सी शुक्रयान 1। आपका समय शुरू होता है। अब
1: मंगलयान को लॉक।

0: श्योर है?
1: नहीं श्योर तो नहीं है, लेकिन अभी न्यूज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत 50-50 है।
0: अच्छा तो लॉक करूं?
1: जी मैम लॉकिंग।
0: चलिए तो राजन जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए मंगलयान को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा सुपरयान वन।
1: ओके
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
9: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
9: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
8: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
12: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम है कॉन्टेस्ट में।
12: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
12: प्रियांशु थारे से
0: जी। क्या करते हैं प्रियांशु?
12: अभी तो स्कूल में है।
0: मतलब स्कूल में किस क्लास की पढ़ाई चल रही है अभी आपकी?
12: सेवेंथ।
0: सेवेंथ, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
12: बढ़िया।
0: बढ़िया चल रही है। तो प्राइवेट में पढ़ते हैं या सरकारी में?
12: प्राइवेट।
0: प्राइवेट, कौन से स्कूल में?
12: क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल।
0: अच्छा, और कहाँ से बात कर रहे हैं प्रियांशु, एक बार फिर बताइए।
12: थावे से।
0: थावे से, प्रॉपर थावे या फिर थावे में कोई जगह?
12: थावे ही है, नानी थावे।
0: अच्छा, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं आप। चलिए, कार्यक्रम सुनते हैं?
12: हाँ सुनते हैं।
0: तो तैयार हैं आप आज के हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के लिए?
12: हाँ।
0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
12: पापा का नाम श्री तेजवाल दुर्गा, मम्मी का नाम श्रीमती दुर्गा देवी।
0: पापा जी क्या करते हैं आपका?
12: बाहर रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन है।
0: तो ले आज का पहला प्रश्न आपसे। चलिए, तो प्रियांशु जी आज का पहला प्रश्न आपसे ये है

0: जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लाल बहादुर शास्त्री।
0: श्योर है? लॉक कर दें? चलिए तो प्रियांशु जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो प्रियांशु आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सहारा मरुस्थल। सहारा।
0: श्योर है? लॉक करें? जी। और प्रियांशु जी, आप जहाँ हैं वहाँ से हट जाइए, बहुत सारे आवाज आ रही है बगल से।
1: ठीक है
0: जी, तो लॉक करें ना आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? तो प्रियांशु जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पंद्रह अगस्त को किया गया था 1947।
0: श्योर है? लॉक करूं? चलिए तो प्रियांशु जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। जी, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है,
0: ओके।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80 029 94 21 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
9: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
12: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
11: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
12: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
12: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
12: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
1: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
2: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
1: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
2: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
2: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399 66999।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7555467666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522384088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-94-94-53
5: और 9097-61-60-02।
8: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
9: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947434468 पे।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू सू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे और समय हो रहे हैं 9:19 और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप गाने की फरमाइश करें और नए गाने की फरमाइश करें तो आपकी फरमाइश तो हम प्ले नहीं कर पाएंगे, और यदि आप पुराने गाने की फरमाइश करेंगे तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर नमस्कार राधे राधे सर जी। तो बिल्कुल नमस्कार, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुजीत कुमार बस्तारा राजा लालगंज मिर्जापुर से और कहते हैं कि मुझे गाना सुनना है, जीता था जिसके लिए जिसके लिए मरता था, आज मेरा गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर नमस्कार। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सनो भैया कैसे हैं, मैं नैना शर्मा वृंदावन से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, और कल तो कह रही थी कि आज मेरा गाना नहीं बजेगा तो रेडियो फोड़ दूंगी। इतनी गुस्सा नहीं करनी चाहिए, हमारे पास समय होंगे तो बिल्कुल फरमाइश पूरा करते हैं। अब क्या ही किया जाए, हमारे पास जितना समय मिलता है उतना ही हमें आदेश है, उतना ही हमें कुछ करना है। और आप लोग ऐसे उल्टे पुल्टे बोलते हैं लोग, तो थोड़ा सा समझदारी करनी है कि जब गाने की फरमाइश हमारे पास पहुँचाई है तो समय रहेगा तो बिल्कुल पूरा करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सनम भैया, मैं पल्लवी कुमारी भिड़िया से और गाना सुनना है, सावन का महीना पवन करे सूर। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, दिल की बाज़ार में दौलत नहीं देखी जाती, हो जाए मोहब्बत तो फिर सूरत नहीं देखी जाती, पसंद हो जाए कोई चीज़ तो फिर कीमत नहीं देखी जाती, मुझे गाना सुनना है। लेकिन इसी पे एक लाइन हमें भी थोड़ा सा याद है कि पहले प्यार अंधी हुआ करती थी, फिर उसने इलाज कराया और उसके बाद से धन दौलत सकल सूरत सब कुछ देखती है। तो पहले वाले प्यार अब रहा नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसके बाद से प्यार किया जा रहा है देखने सुनने के बाद। और आप अभी उसी उम्मीद पे हैं तो थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है, और आपने भी थोड़ा सा अपने में बदलाव करें फिर इस रास्ते पे चले तो आप सफल हो पाएंगे। गुलाम हुसैन जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आप कौन है अपना परिचय दें, फिर आपकी फरमाइश तो हम बिल्कुल पूरी करेंगे। और गाने की भी फरमाइश अभी आपके द्वारा नहीं किया गया है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सनो भाई मेरी भी आज भी हाजिरी लगा दीजिए। और परवेज जी नवादा से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन गाने के फरमाइश से तो ओ कहते हैं कि मेरी फरमाइश का गाना बजाने के लिए थैंक्स। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड, मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। अब बढ़ते आगे, और पहले गाने के फरमाइश हम सुजीत जी की पूरी करते हैं, जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिससे प्यार में करता था। सुना जाए, एंजॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

कमल के सॉन्ग रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, मैं अली अख्तर सिरीपुर से और हमको गाना सुना दीजिए। बिल्कुल, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमशम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर जी, आज भर मेरा रिचार्ज है, सुना दीजिएगा। तो बिल्कुल, आपकी फरमाइश हम प्ले कर ही देते हैं और इस गाने के फरमाइश करती हैं निशा डुमरिया से, और गाने की फरमाइश करती हैं खेसारी लाल जी की आवाज़ में, और गाने का बोल है जैसन सोच ले रही ओशा ने बर पा गई नहीं। तो चलिए, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, अरे तुम खूबसूरत चांद जैसी लगती हो, तुम नदान लेकिन प्यारी बेहिसाब लगती हो, ये कांच का टुकड़ा आईना क्या बताएगा तुम्हारी खूबसूरती का राज, जरा मेरी आंखों में पूछो, आंखों से पूछो तुम कितनी लाजवाब लगती हो। सुनो भाई नमस्कार, और कैसे हैं आप? मैं रोहित देहरादून से तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। जुड़े हुए हैं तो बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप सभी दोस्तों का? मैं साजिया नवादा से और सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल, आपकी भी फरमाइश पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि

आज तुम्हारी याद ने मुझे रुला दिया, क्या करूं तुमने जो मुझे भुला दिया। ना करते वफा ना मिलती ये सजा, मेरी वफा ने तुझे बेवफा बना दिया। सुनो भाई नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे गाने की फरमाइश को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं, सुनते हैं हम सभी रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे खेसारी लाल जी की आवाज़ों में निशा जी की फरमाइश, जैसन सोच ले रही ओशन बर पा गई।

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आज मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा गाना बजा दीजिएगा, मैं कल का एसएमएस की हूँ। उजाला कुमारी और इसी गाने के फरमाइश कल की थी और आज यही गाने बज रहे हैं और फिर भी इनकी तरफ से भी मैसेज पहुँची है, तो चलिए आप भी इंजॉय करें इस गाने के साथ। आपके द्वारा भी तो इसी गाने के फरमाइश की गई थी, तो हम सभी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी बन रहे हैं।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-65750।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MC 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और आगे कई मैसेज भी पहुंचे हुए हैं और मैसेज शामिल करने से पहले हर रोज़ की तरह आज भी मैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे आप सभी के बीच। और आज हम जानेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग एक ऐसी बीमारी है जो दूषित बासी या संक्रमित भोजन और पानी के सेवन से होती है। यह गर्मियों के मौसम में अधिक होती है क्योंकि गर्म तापमान में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवी तेज़ी से बढ़ते हैं। तो कारण इसका हो सकता है बासी या ख़राब भोजन खाना, दूषित पानी पीना, भोजन को साफ सफाई से ना बनाना, संक्रमित बैक्टीरिया, वायरल या परजीवियों का भोजन में होना, जैसे खुले में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेना, ये सारे कारण हो सकते हैं फूड पॉइजनिंग की। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं भी तो समोसा और चाट चाउमीन गोलगप्पे, जो अधिकतर समोसे हम लोग खाते हैं जो बाहर ऐसे ही थालिया में सजाई जाती है और हम लोग धड़ल्ले से उसको खाते हैं, बहुत खाने में मज़ा भी आता है। और ठेले पे पकौड़ी, ब्रेड, ये सारे जो भी चीज़ें हैं जो ढके हुए बर्तन में नहीं रहते हैं, खुले में बेची जाती है, तो ऐसे अधिकतर फूड पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है। आगे इसके लक्षण हैं पेट में दर्द आना, मड़ोड़ आना, उल्टी होना, दस्त आना, बुखार आना, कमजोरी और थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, ये सारे इसके लक्षण हो सकते हैं यदि आपको फूड पॉइजनिंग का थोड़ा सा भी असर हुआ तो। ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। और बुखार तो हमेशा यदि आपके शरीर में कोई भी गतिविधियाँ हो जाती है तो बुखार आ जाता है। बुखार मतलब आपकी शरीर में कोई बाहरी व्यक्ति मतलब बीमारी प्रवेश कर रहा है। जब ही प्रवेश करता है तो बुखार नाम का एक हमारे शरीर में भी व्यक्ति है जो लड़ता है उससे, और लड़ने के बाद से जब दोनों में लड़ाई होती है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो लोग कहते हैं कि बुखार लग गया है। तो कई लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से दवा भी खा लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करना है। यदि आपको हमेशा ऐसा होता है तो मेडिकल स्टोर से दवा नहीं खाना है, उसको डॉक्टर से सलाह लेकर दवा खाना है और जांच कराना है कि हमें हमेशा बुखार क्यों आ जाता है, क्या कारण है। तो यदि हम जांच कराते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर में और कोई प्रवेश कर रहा था जिसके कारण हमें बुखार लग गई है। इसके उपचार हो सकते हैं अधिक मात्रा में साफ सफाई, अधिक मात्रा में साफ पानी पिए, ORS का घोल लें, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, पर्याप्त मात्रा में आराम करें, गंभीर स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, ऐसा ना हो कि उसको हम दबाएं। यदि आप के शरीर में बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से जाकर संपर्क करें और उसके निर्देशानुसार आप दवा लें और इसके बचाव हो सकते हैं। हमेशा ताज़ा और स्वच्छ भोजन करें, भोजन को ढक कर रखें, साफ पानी का उपयोग करें, खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं, बासी और खुले में रखे भोजन से बचें। जैसे कि अभी हम सभी को बता रहे थे कि धड़ल्ले से जो बेची जा रही है ठेले पे चाट चाउमीन गोलगप्पे तो खैर शीशे में बंद रहते हैं, लेकिन पकौड़ी हो गए, ब्रेड हो गए, समोसे हो गए, ये तीन चीज़ें जहाँ भी देखे वो खुले में ही थाली में सजाई जाती है और हम लोग खूब चाव से खाते हैं। तो इससे थोड़ा सा परहेज करना है और घर के खाने पे थोड़ा ध्यान देना है। जो घर के खाने होते हैं वो थोड़े से नहीं बहुत अच्छे होते हैं, जो हमेशा साफ सफाई से बनाई जाती है। तो कोशिश करें कि घर के खाने अधिकतर सेवन करें और अपने को स्वस्थ रखें।
ये हर रोज़ आप सभी के बीच छोटी छोटी जानकारी साझा किया जा रहा है रेडियो रिमझिम के माध्यम से सेहत से ही लाभ कई के अंतर्गत। तो अब हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप इसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतारें और कोशिश करें कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी अपनी जानकारी को साझा करें और मदद करें। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो भी मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं और फिर उनकी फरमाइश को हम पूरा करते हैं और सुनते इंजॉय करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनू जी मैं भी जुड़ गई हूं और मुझे भी गाना सुनना है, गाने का बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हमारे पास पहुंची और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। रेखा जी बन रहे हमारे साथ और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि फिल्म फकीरा सॉन्ग हम तो झुककर सलाम करते हैं, नाम शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर असम से डेडिकेट दिलीप राम आज़ाद अंसारी और बर्जू और कमरान को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा नंबर आएगा कि नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, कल भी आपकी मैसेज हमारे पास पहुंची थी, आज आपकी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश किया गया है सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, कमलेश दी हैं विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से जुड़े हुए। तो चलिए आपके गाने के साथ अब हम सभी इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

अभी प्यारे संग रेडियो रामछेम 94.4 एफएम पे सुन रहे आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। तो चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रामछेम सुनने के लिए कमलेश जी। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जब मैसेज करते तो हम आप सभी की फरमाइश हम पूरा नहीं कर पाए। यदि हमारे पास समय रहता है तो बिल्कुल पूरा करने की कोशिश रहता है मेरा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, गुड इवनिंग सोनू सर, क्या हाल है? तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में अनिल जी, और बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? और मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। रोशनी कुमारी मानिकपुर से नाइस सॉन्ग कहती हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो जी मैं जुड़ गई हूँ और मुझे गाना सुनना है, गाने का बोल है जीने ना देगी ये जुदाई। मेरा नाम रेखा पांडे है और मैं सरिया वार्ड नंबर 5 से हूँ और मैं कल से लाइन में लगी हूँ। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर मेरा नंबर, तो बिल्कुल आपका भी नंबर आएगा, एक एक करके सबकी फरमाइश तो पूरी कर ही रहे हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और फिलहाल हम रेखा जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत हुई नु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99393965930।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
9: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के,
9: और कदम बढ़ा रही है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के।
10: आप सब और अभी रेखा जी की फरमाइश अभी हम सभी सुन रहे थे।

बताने, कोशिश रहेगा कि आपकी फरमाइश हम पूरी कर दें। फिलहाल गाने को हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो एमसीएम 91.4 एफएम पे। गाने का बोल दाग द फायर मूवी से, परदेसिया। इतना बता सजना कि तेरी कौन हूँ मैं।

0: माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9160264498 पे।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं अपने ज़िले की आवाज़ रेडियो रिमसिम 90.4 और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आरजे सोनी। और हर बार की तरह आज भी हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के अपने पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस को। जहाँ होती है आपकी पसंदीदा गीत, आपके प्यारे प्यारे संदेश और ढेर सारी बातें। तो चलिए आज की शो की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज हम फिर बात करने वाले हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण विषय गर्भावस्था और उससे जुड़ी देखभाल के बारे में कि गर्भावस्था के दौरान माँ और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, परिवार किस तरह से सहयोग कर सकते हैं और अपने मन में उठने वाले कई सामान्य सवालों का आसान जवाब भी हम साझा करेंगे आप सभी के बीच। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या अपनी पसंद का कोई भी गीत है सुनना चाहते हैं तो हमें अपना मैसेज भेज दीजिए अपनी फरमाइशें के साथ और आपके सवालों के साथ। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं गर्भावस्था से जुड़े आप भेज सकते हैं, हम उस सवालों का जवाब भी आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो देर किस बात की है, शो से जुड़िए। शो में जुड़ने के लिए माध्यम है आपके पास व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं शो में। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है हमारा 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए, हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप हमारे रेडियो रिमसिम के इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपने गाने की फरमाइश को सुन सकते हैं। या फिर व्हाट्सएप नहीं यूज करते हैं, इंस्टा नहीं यूज करते हैं तो आपके लिए कॉल का माध्यम है, नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277165696 पे आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। तो चलिए बिना देरी किए शो की शुरुआत करते हैं और जब तक आपके संदेश और सवाल हमारे पास पहुंचते हैं तब तक आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत रेडियो रूम सिम 90.4 FM पे। और गीत के बाद फिर मिलेंगे कुछ खास बातें और आपके सवालों और आपके मैसेज के साथ रेडियो रूम सिम पे। तब तक एंजॉय करते हैं इस गाने को।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। 12:13 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ काफी सारे मैसेज हमारे पास पहुंच चुके हैं और आज हम शो में बात करने वाले हैं आपके मैसेज फरमाइशों के साथ साथ गर्भावस्था से जुड़ी कुछ सवालों का जवाब साझा करने वाले हैं, जो कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप अपना सवाल यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, काफी सारे मैसेज है और हमारे पास जो पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो है शाजिया जुड़ी हुई है नवादा से और गाने की फरमाइश के साथ है। बहुत बहुत स्वागत शाजिया जी आपका। और लिखिए कि अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हालचाल है सभी दोस्तों का? तो सभी का तो पता नहीं और मेरा हालचाल बिल्कुल बढ़िया है। आप बताइए आप कैसी हैं और सभी दोस्त बिल्कुल बताएंगे कि कैसे हैं। और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है और बढ़ेंगे आगे। हाँ, आगे मैसेज। और लिख रहे हैं कि हेलो हाय दी का हालबा, गुड आफ्टरनून, और मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और कितना म्यूजिक बजाएं। तो म्यूजिक खत्म हो चुका है और बढ़ेंगे आगे। यहाँ आगे एक और मैसेज है और अली अख्तर जी जुड़े हुए हैं कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत आपका, फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की कोशिश है, बहुत बहुत स्वागत। और दीनानाथ यादव है कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है और अनीश यादव जुड़ चुके हैं विलेज दुमरा से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। इरशाद मास्टर जी हैं धनाव से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि राधे राधे, मिथुन शर्मा उत्तर टोला महादा से जुड़े हुए और गाने की फरमाइश के साथ है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और बढ़ेंगे आगे। आगे यहाँ मैसेज है, धनीश मिश्रा जुड़े हुए हैं दिल्ली से, लिख रहे हैं कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द पाला होगा, जो चल रहा है उसने पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारो, जो चलेगा उसी के दिल में तो उजाला होगा। और हेलो सोनी मैम नमस्कार, धनेश मिश्रा दिल्ली से, और आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है ना, बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल तबीयत मानी बिल्कुल बढ़िया है और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रहे हैं कि आज का ओपनिंग अच्छा रहा और मेरा विश्वास है कि अंत तक भी अच्छा ही रहेगा। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैं न्यू फैशन टेलर नागपुर महाराष्ट्र से, और मेरे तरफ से सभी दोस्तों को नमस्कार बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल दिए हैं। और जन्मभूमि से कर्मभूमि, अच्छा नागपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ। और आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गाना बजाया, दिल खुश हो गया। और मैसेज के साथ है डॉक्टर अमोद कुशवाहा जय छपरा कुशीनगर से, और लिख रहे हैं कि अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ जहूर आलम अंसारी है कुवैत से, बहुत बहुत स्वागत आपका, लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम नमस्कार धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं नमस्कार गुड आफ्टरनून आदाब, हम भी शो से जुड़ गए हैं। और रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं नारायण नंदनी बेटी देवा पिंटू चिंटू आरोसी और रौनक बाबू के साथ, लिख रहे हैं एक सप्ताह हो गया है, कृपया हमारा गाना भी बजा दीजिए। गाने का बोल है दिल तो पागल है दिल दीवाना है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और गाने बिल्कुल बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फरमाइश है प्ले करने की कोशिश है। और यहाँ लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्कार, राम कुमार पांडे हैं लंदन से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, साधु राय जुड़ चुके हैं छपरा से, लिख रहे हैं हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो सोनी गुड आफ्टरनून, मैं राकेश भारती बक्सर से, और हरेंद्र जी पप्पू जी और बलराम यादव मंगरू यादव सॉन्ग सुनना है, खाकी फिल्म का सॉन्ग है वादा रहा प्यार से प्यार।

हाय मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाजिया नवादा पसानी से। मुझे सॉन्ग सुनना है, तुझे देख के दिल जोरों से धड़कता है। सबसे पहले आपको और सुनने वाले सभी लिसनर को सुनाना चाहती हूँ। प्लीज मैम, सुना कैसे?

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश थी साजिया की तरफ से नवादा से, और यहाँ इनकी तरफ से वॉइस पहुंच चुका है, तो चलिए सुनते हैं क्या कहना चाहती हैं ये।
1: थैंक यू मैम सॉन्ग प्ले करने के लिए, एक दिन से थैंक यू।
0: और काफ़ी बढ़िया है गाने की फरमाइश थी जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है। लिख रहे हैं कि हरेंद्र जी का फरमाइश है, बजा दीजिएगा मैम। बिल्कुल हरेंद्र जी का फरमाइश है, प्ले करेंगे और बने रहिए हमारे साथ में। और थोड़ा वेट करिए, आपकी बारी आते ही हम आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ आगे मैसेज है, सन्यासी रंजन बाबा जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी हम भी सोच से जुड़ गए हैं, नमस्कार, हमारा भी हाजिर लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, और नाम है इनका गोल्डन टेलर, जुड़े हुए हैं चिनफरिया से। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम से जुड़े, और लिख रहे हैं हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, हमको भी गाना सुनना है, सुनवा दीजिए बिल्कुल। और आपके तरफ से तीन वॉइस पहुँचा हुआ है, तो गाने का नाम वाला कौन सा वॉइस है जो कि क्लियर है, एक कोई वॉइस क्लियर करिए, या फिर उसको टैग करिए कि कौन सा है, या फिर कोई और अगला वॉइस जो हो एक ही में सब क्लियर हो, वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका, हम आपके भी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और जैसा कि हम शुरुआत में ही बात किए थे कि आज के शो में हम आपकी फरमाइशों के साथ साथ बात करने वाले हैं गर्भावस्था के बारे में, और उससे जुड़ी कुछ सवाल कि उसके दौरान हम खुद का ख्याल कैसे रखें और अपना देखभाल कैसे करें। तो यहाँ मेरे पास सवाल पहुँच चुका है, और सवाल ये है कि गर्भावस्था की शुरुआत में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो गर्भावस्था की जानकारी मिलते ही सबसे पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और समय पर जांच करवाना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना, पर्याप्त पानी पीना, आयरन और फोलिक एसिड का गोलियाँ जो भी है स्वास्थ्यकर्मी या फिर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेना। और पर्याप्त आराम बहुत ही जरूरी है, बिना डॉक्टर की सलाह का कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। साथ ही धूम्रपान, शराब और तंबाकू जैसी हानिकारक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। परिवार का सहयोग और सकारात्मक माहौल भी माँ और शिशु दोनों के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन सारी बातों का आप ख्याल रख सकते हैं शुरुआती दौर में। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास है कॉल के माध्यम से, और कॉल तो कट चुका, तो चलिए बढ़ते हैं व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, अली अख्तर जी जुड़े हुए हैं कश्मीर से, और इनको सुनना है गाना, वॉइस पहुंचा हुआ है, तो चलिए सुनते हैं कौन सी गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
2: हाय, मैं अली अख्तर सिरीपुर से बोल रहा हूँ, हमको गाना सुनना है कुल्ली फिल्म का कव्वाली।

0: गाना बना बजाने के लिए थैंक यू।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
7: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
6: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
7: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
6: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
6: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
7: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
10: प्रसाद क्लिनिक।
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज है और शो से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल। आप इस माध्यम से चाहे शो में जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज काफ़ी सारे पहुँचे हुए हैं। मुस्तफ़ा जुड़ चुके हैं सऊदी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजय यादव जी हैं दुबई से, लिख रहे हैं क्या हाल है मैम। बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। विमल जी जुड़ चुकी हैं, लिख रहे हैं कि हेलो आए मैम, नमस्ते, कैसी है। मेरे पापा का कॉल आया था कि नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है और नाम मेंशन नहीं है। और मैसेज है सुनीता सिंह है नितेश हेल्थ बॉडी केयर से, और बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ और भी सारे फरमाइश है शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। और हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: हम रामाज प्रसाद खावे राजे मार्ग से।
0: जी जी, क्या हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा, गाना सुना था, धूप था फिर बेचैन करे बा।
0: आज भयानक वाला धूप भइल बा।
1: हाँ, गाना सुना दी आज। चल चल मेरे हाथी हो मेरे साथी, चल चल खटारा खींच के।
0: और सुनवाई के भी बा?
1: आप विमल मैसेज कर लिया तो वो सुने, राम सुने, मनोराधा सुने, जितना लोग रेडियो रिमझिम सुन रहा सबको सुनी।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दे ले। मनी
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सुमे कॉल करने।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे रामाजी प्रसाद की फरमाइश थी थावे राजन मार्केट से। और यहाँ विमल जी का मैसेज है लिख रहे हैं कि ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग बढ़िया। और बढ़ेंगे आगे यहाँ आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास है व्हाट्सएप के माध्यम से और मिथुन शर्मा है उत्तर टोला से जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं और गाना है चांद सितारे बिंदिया तुम्हारे। तो चलिए अगली फरमाइश प्ले कर दिया आपकी एंजॉय करते हैं मिथुन जी की फरमाइश पे इनके पसंद का गाना रेडियो रिमझिम पे है।

0: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी हेतु कॉल करे 6052 62112 पे।
4: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
5: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
6: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
5: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्ते लागू।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
9: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
10: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
11: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
10: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
11: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
11: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे, काफ़ी सारे मैसेज है। और यहाँ रागनी जी है गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और मैसेज है, लिख रही है कि हेलो, मैं भी शो से जुड़ गई हूँ, मेरा नाम रचना है, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और कहाँ से है रचना, ज़रूर बताइएगा आप। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी खुशहाल तो कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी, यह सड़क है ज़िंदगी का, कभी दुखों का पहाड़ तो कभी खुशियों का बेशुमार होगी। और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़ाद अंसारी सऊदी अरब से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि मोहब्बत को लोग खुदा मानते हैं तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं, जब जमाना ही पत्थर दिल है फिर पत्थर से लोग क्यों दुआ मांगते हैं। और मैसेज के साथ है सबीना खातून एंड जिसान बाबू फ्रॉम दुलदुलिया से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, कैसी हैं आप, और हम भी शो से जुड़ गए हैं आपके। तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप लोग बताइए आप कैसे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है गाने की फरमाइश है, वादा रहा प्यार से प्यार का। और गाने की फरमाइश है हरिंदर जी भेजे हुए हैं बक्सर से, और इनको सुनना है गाना। और साथ में इनके राकेश भारती जी, बलराम यादव जी, पप्पू जी, मंगरू यादव जी, चलिए आप सबकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, हरिंदर जी की फरमाइश थी बक्सर से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं कि थैंक यू गाना बजाने के लिए। और बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ मेरे पास अगला सवाल है। गर्भावस्था के बारे में हम बात कर रहे थे जैसा कि, और सवाल है कि गर्भावस्था के दौरान किस तरह का भोजन माँ और शिशु दोनों के लिए फायदेमंद होता है। तो गर्भावस्था के दौरान संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत ही जरूरी होता है। भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, दूध और दूध से बनी पदार्थ, मौसमी फल, साबुत अनाज और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां लेना भी माँ और शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो गर्भावस्था के दौरान छोटी छोटी सावधानियाँ माँ और शिशु के लिए बेहतर स्वास्थ्य की एक दिशा में बड़ा कदम साबित होता है। तो याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु की नींव होती है। तो गर्भावस्था के दौरान सबका ये कर्तव्य बनता है फैमिली में कि उसका ख्याल रखें, जो भी आपके घर में गर्भवती महिला है उसका अच्छे से ख्याल रखिए। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गुलाम हुसैन है वेस्ट मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की कोशिश है। और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, गाने का बोल है फूलों सा चेहरा तेरा, और गाने की फरमाइश के साथ है गोल्डन टेलर टिनफिनिया से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और फरमाइश है। तो चलिए अगली फरमाइश आपका प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँचे, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यह रागनी जी है, इनको सुनना है गाना, तो आप भी थोड़ा सब्र रखिए, आपकी बारी आते ही हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और कॉल वाले लोग गायब है, तो आप लोग भी आइए, क्यों आप लोगों की फरमाइश सज नहीं है क्या?

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 9779-714-86164।

ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रूम से 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैम आज भोजपुरी गाना पे बैन लागल बा का, तो बिल्कुल बैन नहीं लगा है। और मैसेज करने वाले हैं दिनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और लगातार यहाँ कुछ भोजपुरी गाने ही हमारे पास पहुँचे हुए हैं और बैन तो बिल्कुल नहीं है। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे मैसेज है लिख रहे हैं कि सोनी मैम गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और 4 हफ्ता से मेरा गाना नहीं बज रहा है। तो बिल्कुल मुझे याद है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम परसों या कल में आपका गाना ज़रूर प्ले किए थे। और यहाँ आप दूसरे नंबर से मैसेज किए हैं और नंबर चेंज किए हुए हैं, तो अगर आप लोग सोचते हैं कि नंबर चेंज करने के बाद हमें पता नहीं चलता है तो ऐसा नहीं है। और इससे पहले जो कल भी आप जुड़े थे वो नंबर कोई और था और उस नंबर से आप मैसेज किए हुए थे। सो में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ईमानदारी बनाए रखिए। होता है कभी कभी कि गाना नहीं प्ले होता है कंटिन्यू 2-3 दिन किसी किसी का, लेकिन मुझे याद है हम आपका गाना प्ले किए थे। और आगे यहाँ बढ़ेंगे, विशाल पांडे जुड़ चुके हैं कोनवा मोड़ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और लिख रहे हैं कि हेलो जी नमस्कार मैडम जी, नमस्कार आपको भी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि हर पल खुशी का एहसास करो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी को खास करो। और नमस्ते सोनी जी, मैं भी जुड़ गया हूँ। और अनिल जी है चोटपुर से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी, और मैसेज करने वाले हैं नाम तो मेंशन किए ही नहीं है। और वीरेंद्र कुमार जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रुमझिम को। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास है रचना का, और इनकी तरफ से सवाल भी है। तो बिल्कुल आपके सवाल है, जो आपके सवाल का जवाब देंगे हम आपके गाने के बाद। फिलहाल सुनते हैं रचना की फरमाइश पे इनके पसंद का गाना, और गाना है गजब ड्रामा कहले बाड़ो। तो एंजॉय करते हैं रचना की फरमाइश पे इनके पसंद का गाना रेडियो रुमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, रचना की फरमाइश थी और रचना जुड़ी हुई है बंजारी मोर से। ओहो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गाने की फरमाइश थी, काफ़ी बढ़िया गाने की फरमाइश। और यहाँ धनेश जी बोल रहे थे कि भोजपुरी गाना पे बैन लगा है लग रहा है आज, तो देखिए भोजपुरी गाना आ भी गया और आपके बोलने से पहले था। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ धनेश जी की तरफ से मैसेज है, लिख रहे हैं कि दूसरा नंबर चेंज करने वाले भाई ये सोनी जी हैं, इसलिए तो कहते हैं कि सोनी जी का टैलेंट है बहुत। और लिख रहे हैं कि आज का शो का पहला भोजपुरी गाना बजाने वाले भाई को दिल से धन्यवाद। तो धनेश जी वो भाई नहीं है, बहन है, और यहीं बंजारी ब्रह्म स्थान से जुड़ी हुई है रचना जी। और इनके तरफ से सवाल है, लिख रहे हैं कि जी मैम, क्या गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य की जाँच करवाना जरूरी होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत ही ज़रूरी है। समय समय पर होने वाली जांच से माँ और शिशु दोनों का स्वास्थ्य पर नज़र रखी जा सकती है और किसी भी संभावित समस्या का समय रहते पता लगाया जा सकता है। तो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर की सलाह के अनुसार जाँच करवाने, जरूरी टीके लगवाने और आयरन फैलिक एसिड की गोलियाँ लेने से स्वास्थ्य गर्भावस्था और सुरक्षित प्रसव में मदद मिलती है। तो गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच केवल एक सलाह नहीं बल्कि माँ और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो बिल्कुल ज़रूरी है और हमेशा जांच करवाते रहना चाहिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, यहाँ और भी मैसेज है। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैडम जी हमारा फरमाइश है, और फरमाइश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी फरमाइश है। तो और मैसेज करने वाले हैं वीरेंद्र कुमार जी। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना भेज सकते हैं क्या गाना, और ये गाना आपके लिए डेडिकेट है, सभी को, सभी श्रोताओं को, बंधुओं को भी डेडिकेट है। और मैसेज करने वाले हैं विशाल पांडे जी और गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए। और यहाँ अगला फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है, वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ रोहित जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत रोहित जी। और लिख रहे हैं कि जीते थे हम किसी शाम की, जीते थे हम कभी शान से, दिल धड़कता था किसी के नाम से, गुजरे थे हम किसी के नाम से, नफरत हो गई है मोहब्बत के नाम से। और सोनी जी नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं, रोहित देहरादून से बहुत बहुत स्वागत आपका। और बढ़ेंगे आगे, अगली फरमाइश यहाँ पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: आपका भी स्वागत है सोनी जी।
0: जी क्या हाल चाल?
1: अरे हाल चाल तो हमारा बढ़िया है, अपना सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया है।
1: नंबर आप बताते हैं कि इस कॉल से नंबर पर बात होगा, गाना जो फरमाइश करना है होगा। अभी कल लगाए थे तो कोई उठाए थे, कह रहे थे ऑफिस का नंबर है,
0: तो आप इस नंबर पे नहीं किए होंगे, आप व्हाट्सएप वाला पे करिएगा। तो जो यहाँ पे व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन वो ऑफिस पे नंबर है,
1: इसी से किए थे 77 77 16।
0: तो सो के बाद किए होंगे, 4 बजे के बाद कॉल किए होंगे, इसके लिए बोल दिया गया होगा।
1: कोई कौन कौन प्रोग्राम में कौन कौन माने कॉल के माध्यम से नंबर चलता है?
0: कॉल के लिए सारे कार्यक्रम में यही नंबर है, लेकिन सो के बाद सारे फोन ऑफिस में होते हैं, तो जो भी ऑफिस में रहेगा वो बोल देगा कि ऑफिस में लगा है।
1: प्रोग्राम तो चल रहा था लगभग वही 12 12:30 के बीच में कॉल किए थे
0: कल।
1: कल
0: तो कल तो 12:30 के बीच में सो के टाइम में ये नंबर मेरे पास ही था।
1: नहीं,
0: अब पता नहीं, हो सकता है कि कहीं और नेटवर्क मिल गया होगा। फिलहाल आज कॉल किए हैं तो बता दीजिए गाने की फरमाइश।
1: ठीक है, बताते हैं जरा, वो क्या बोलते हैं, कर्मा फिल्म का ये वही गाना एक चला दीजिए।
0: कौन सा?
1: हर का नाम अपना करेंगे इस फिल्म के।
0: जी, और नाम बता दीजिए अपना।
1: हेलो,
0: हाँ नाम भी बता दीजिए।
1: कृष्णा जी बोल रहे हैं।
0: कहाँ से कृष्णा जी?

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता

0: पूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
0: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99 54 94 93
5: और 90 97 61 60 02।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का 1:26 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और डेढ़ घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ काफ़ी मैसेज है शामिल करेंगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज में सवाल के साथ पहुँचा हुआ है और सवाल है, अगर गर्भावस्था में कोई महिला है तो उन्हें कौन कौन से टीके लगवाना ज़रूरी होता है और क्यों ज़रूरी होता है। तो बिल्कुल आपके सवाल है, हम जवाब देंगे, इंतज़ार करिए थोड़ा और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, विशाल पांडे है कुनवा से और इनको सुनना है गाना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। लिख रहे हैं कि डेडिकेट है आपको और सभी सुनने वाले रेडियो दोस्त और बंधुओं को, तो इन्जॉय करते हैं रेडियो टिमझिम 90.4 FM पे विशाल पांडे की फरमाइश को।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, विशाल पांडे की फरमाइश थी कोनवा मोर से। और इनकी तरफ से एक मैसेज है, लिखते हैं कि दिल से धन्यवाद। और गाना कैसा लगा? तो गाना काफ़ी बढ़िया था और ये गाना मेरा फेवरेट सॉन्ग है। गाना फरमाइश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, और लिख रहे हैं कि आज तो शो का पहला भोजपुरी गाना बजने वाला था, भाई को दिल से धन्यवाद। और बढ़ेंगे आगे, दनीश मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं कि मुसीबत में भी पत्नी से कभी पैसे उधार ना ले। मैंने 2 साल पहले 20,000 लिए थे, 50,000 दे चुका हूँ, अभी भी 25 बाकी है, पता नहीं कौन सा हिसाब लगाती है। चलिए कोई भी हिसाब लगाएं, लेकिन शुद्ध ब्याज तो नहीं जोड़ती है ना, तो फ़ायदा भी है और नुकसान भी। बढ़ेंगे आगे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश तो हमारे पास है, गाने की फरमाइश है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है रायपुर छत्तीसगढ़ से, नारायण है, नंदिनी है, बंटी देव और देवा, पिंटू, चिंटू, आरुषी, रौनक बाबू सभी के साथ जुड़े हुए हैं गाने की फरमाइश के साथ। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी है, दिल तो पागल है दिल दीवाना है। तो एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। मिलते हैं आप सभी से इस गाने के बाद।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
8: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की बात करेंगे तो यहाँ मैसेज है और प्रमुख सिंह है लुधियाना पंजाब से लिख रहे हैं कि और काफी दुख के साथ लिख रहे हैं कि कोई भी हमको गाना डेडिकेट नहीं कर रहा। एक तो निर्मला थी जो कि मुझे गाना डेडिकेट कर रही थी और वो भी आजकल शो में नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं, कोई डेडिकेट नहीं कर रहा। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो खुद ही अपने आप को डेडिकेट करके गाने की फरमाइश भेज दीजिए। और हाँ विशाल पांडे हैं लिख रहे हैं कि आपका फेवरेट गाना हमारा फेवरेट कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्या आप अपना कोई जासूस मेरे पीछे छोड़े हैं या फिर कैसे पता चला, जरूर बताइएगा। और सावन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि सावन का महीना हो, फूलों का शहर हो, कितना अच्छा होगा झोपड़ी का घर हो और पास में रेडियो रिमसिम हो। नमस्ते, दिल में राम बसे, मन में बसे हनुमान, प्यार उसी से करो जो हमेशा दे साथ। और गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि रुदल पेंटर और सावन शर्मा और सभी श्रोताओं के साथ आज हमारा भी गाना बजा दीजिए। बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम हमारे बारी ना ही, हमारा गाना ना बाजी। क्या बिल्कुल बाजी, सबके गाना बाजी। और यहाँ कॉल पहुँचल बात अगला गाना के फरमाइश जोन बाबू कॉल के माध्यम से रही। फिलहाल यहाँ हमारा पास सवाल पहुँचा रहे और रागनी चिथी लिख रही है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका लगवाना जरूरी होता है और क्यों जरूरी होता है? तो गर्भावस्था के दौरान माँ और शिशु को कुछ गंभीर संक्रमणों से बचाने के लिए कुछ टीके लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टरों की सलाह के अनुसार टीटेस और डिप्थीरिया से सुरक्षा देने वाली DT टीका लगाया जाता है। कुछ परिस्थिति में अन्य टीकों की भी सलाह दी जा सकती है, इसलिए गर्भावस्था की नियमित जाँच के दौर स्वास्थ्यकर्मी या डॉक्टर से टीकाकरण के बारे में जानकारी जरूर ले और उनके बताए अनुसार समय पर जरूर टीका लगाए। और याद रखिए कि समय पर लगाया गया टीका माँ और शिशु दोनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो टीका लगवाना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से और जो भी आपके आसपास में स्वास्थ्यकर्मी हैं उनसे ज़रूर सलाह लें। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सोनी जी, मनीष शुजाक फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश, और हमारा भी हाजिर लगा दीजिए, बिल्कुल लग चुके हैं आपके हाजिरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कॉल पहुंचा हुआ है तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है हमारे पास। हेलो
10: हेलो मैडम जी, प्रणाम
5: जी। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंसी में।
10: हम नगेंद्र माझी उर्फ दयमान जी या घर पकौली बदो आ ब्लॉक फुलवरिया से बोलता नहीं
5: जी, का हाल चाल बा?
10: ठीक है मैडम जी, अपन समाचार बताएं।
5: मेरे समाचार बिल्कुल बढ़िया बा।
10: हाँ स्कूल या बोन भाई, एक हफ्ता आवरी रोज आदमी जुड़ जाता है।
5: कब 22 तारीख तक खुले वाला बा का स्कूल?
10: ना 22 के खुल जाई, 20 ले बोन बा फर्नीचर ले जान, या फर्नीचर आनो। हाँ तो शनिचर ले बन बा, 21 के अतवार बा, तो सोमवार के 22 के खुल जाई, तो एक हफ्ता और मैंने बंद रही। हाँ ओकरा बाद तनी कम टाइम मिले तो टाइम के अनुसार आदमी सुनी या जुड़ी।
5: जी जी, काम भी जरूरी बा। हाँ, तो बता दी कौन गाना सुनवा दी आज रोवा के?
10: ठीक बा, दयवान फिल्म का गाना तनकिया साहब गावा तनी।
5: हेलो जी जी बिल्कुल।
10: हमको तुम पे प्यार आया है, हमको

0: मैडम जी
1: जी
0: ये गाना बजाओ के बाद दयामान फिल्म का गाना आओ जान नी सबसे पहले रहूगा तो सुनवाओ के चाहत नहीं
1: जी
0: जितना लोग सुनत है रेडियो रिम जिम हम नाम लेबे के ना चाहनी और प्रमुख साहब कहते नहीं तो वहाँ का नाम हम ले लेते नहीं ठीक बनू प्रमुख साहब के सुनवाओ के चाहत नहीं पंजाब के
1: अनू जी जी
0: हम नाम लेबे के ना जान देनी का भइल एक बेर एक बेर आउ पल्लव सरबानी अथी आला का नाम अथी हो एगो बाय रेडियो दुकान एगो रेडियो भैया गोपालगंज में पल्लव सर सब लोग के सुनवा के चाहतनी जाननी
1: जी बिल्कुल चलिए ठीक बा
0: ठीक बा सुने के चाहतनी हम पूरा अपना परिवार के साथ जाननी
1: गाना प्ले कर दिले मनी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करनी जी
0: ठीक बा
1: ठीक बा।

90.4 रेडियो रंजिम पे सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश पहुँची थी कॉल के माध्यम से, और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ कुछ मैसेज है और लिख रहे हैं कि सर जी को मेरे तरफ से प्रणाम, और बहुत ही अच्छा गाना का फरमाइश किए, गाना गाकर बहुत ही अच्छा लगा। और मैसेज करने वाले हैं धनेश मिश्रा जी दिल्ली से, और बढ़ेंगे आगे। आज यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सनी मैडम जी और उमा शंकर मिश्रा दिल्ली से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि पिछले फ्राइडे शो नहीं हुआ था और आज हो रहा है, टाइमिंग क्या है शो का वो बताइएगा, और क्योंकि पिछले फ्राइडे पूरा दिन वेट किया था और शो नहीं आया था हमारे पास। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका दीपक जी, हैं मुंबई से, तो मंडे टू सैटरडे गाने जो भी है शो का टाइम है योर वॉइस योर चॉइस का 12 से 4 के बीच, और सोमवार से शनिवार तक आप 12 से 4 के बीच में इस शो में जुड़ सकते हैं। संडे को भोजपुरिया चलता है जो कि 2 से 5 के बीच होता है, बाकी 12 से 1.5 बजे के बीच हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट की रिकॉर्डिंग होती है, अगर आपको जुड़ना है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे मैसेज है और सवाल पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि क्या गर्भावस्था के दौरान हल्का फुल्का एक्सरसाइज या फिर कोई भी व्यायाम करना ज़रूरी है,

चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल आपके सवाल है, हम जवाब देंगे आपके सवालों का। फिलहाल उससे पहले यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए देखते हैं कौन है, कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। और गाने की फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है रागनी जुड़ी हुई है और उनको सुनना है गाना मनोज तिवारी के आवाज़ में, राजा पैदल ना चले सही के लिए अभी ना। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: यह वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403। 6200042403।
6: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774861464।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रंजीम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 2:01 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और यहाँ बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ व्हाट्सएप मैसेज है और लिख रहे हैं कि हमारा गाना कितना बजे आएगा, तो बिल्कुल आपके भी गाने की फरमाइश अगर अभी कॉल के माध्यम से गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, समय रहेगा तो आपकी गाने की फरमाइश प्ले करेंगे, नहीं तो दोपहर समाचार के बाद। और मैसेज करने वाले हैं, नाम है इनका, नाम भी मेंशन किया करिए, वीरेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपकी भी बारी आएगी और आपका गाने की फरमाइश जो है जरूर प्ले करेंगे। और यहाँ रागनी है और इनके भी सवाल हैं, हम आपके भी सवालों का जवाब देंगे, बने रहिए हमारे साथ में सुनते रहिए रेडियो रंजीम को। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है कॉल के माध्यम से, यहाँ इंस्टा पर भी मैसेज पहुँचा हुआ है। बिट्टू जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। गोलू कुमार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रिंस कुमार है, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और यहाँ गोलू जी लिख रहे हैं, गाना सुनना है तो अपने गाने का नाम लिख के भेज दीजिए, हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। और कॉल पहुँचा हुआ है तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहाँ से। हेलो,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: धन्यवाद
0: जी, क्या हाल चाल है?
1: बढ़िया है।
0: आज भी कॉलेज गए हैं क्या?
1: अभी तो आ रहे हैं ट्रेन से।
0: अच्छा, अभी एग्जाम चल रहा है कि क्या?
1: अभी एडमिट कार्ड मिला है, आज सोमवार से एग्जाम होगा।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो गाना कौन सा सुना दे आज आपको?
1: किताब मूवी के गाना सुनना है, जब हम जहाँ होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पे याद करेंगे। और ये गाने हमारे सभी श्रोतागण को एक चित्र

0: रहना चाहिए। और हम आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए हैं।
1: हम सब इंतजार कर रहे हैं।
0: ओके, एंजॉय करिए अपने गाने को रेडियो रिंग जी पे।
1: ओके, धन्यवाद।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे आरजे सोनू जी की फरमाइश थी और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं सीतामढ़ी जिला से, लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है और मेरा भी गाना बज सकता है क्या आज। बिल्कुल गाने की फरमाइश है भेज सकते हैं और आपके गाने की फरमाइश जो है वो दोपहर समाचार के बाद पूरा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका और आगे बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ सवाल था कि क्या गर्भावस्था के दौरान हम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर करना ज़रूरी है, करना चाहिए या नहीं। तो जी हाँ, सामान्य और स्वास्थ्य गर्भावस्था में डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के अनुसार हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधियाँ जैसे टहलना या सरल व्यायाम फायदेमंद हो सकता है।

इससे शरीर सक्रिय रहता है, तनाव कम करने में मदद करता है और प्रसव के लिए भी शरीर को तैयार होने में भी सहायता मिलती है। हालांकि हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी प्रकार का व्यायाम शुरू करने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर आराम करने की सलाह दे तो उसी का पालन करना सबसे उचित होता है। तो गर्भावस्था के दौरान सक्रिय रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी और अपने शिशु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर की सलाह का पालन करना सबसे जरूरी है। तो अगर आपके मन में भी कोई गर्भावस्था से जुड़ा सवाल है तो भेज सकते हैं हमें 98527 88 291 पे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सवाल का जवाब जो है उसे आपकी आपके अनुसार संतुष्ट कर सके, जवाब दे के आपके सवालों का जवाब हम दे सके। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं वीरेंद्र कुमार जी, और इनको सुनना है गाना जल्दी आ जाए बलमुआ, और गाने की फरमाइश के साथ हैं। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: और इसी गाने के पार हम चलेंगे दोपहर समाचार की तरफ और आप सभी से मिलते हैं दोपहर समाचार के बाद। तो आप सब कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो रंजिम 90.4 FM। और जिनकी भी फरमाइश से बच गई है एक बार फिर मैसेज करिए और दीजिए 100 से, और बाकी की फरमाइश से दोपहर समाचार के बाद।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की, कहा पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया, हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त, और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
6: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
5: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
7: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीकी

0: आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
7: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
9: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
5: भरोसे वाले से लेंगे,
4: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
5: और कीमत भी।
4: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
6: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99-393-65-930।
13: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
13: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
13: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
14: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
15: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
14: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

समाचार के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में रेडियो रमसिम 90.4 एफएम पे। 2:45 हो चुके हैं स्टूडेंट घड़ी में, और शो से अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और आज के शो में हम बात कर रहे हैं आपके मैसेज फरमाइशों के साथ साथ गर्भावस्था के बारे में, और आपके मन में भी अगर गर्भावस्था से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप अपना सवाल भेज सकते हैं हमें 98527881 पे व्हाट्सएप मैसेज करके। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश से पहले यहाँ कुछ व्हाट्सएप मैसेज पहुँचा हुआ है। और दिलीप राम जी जुड़ चुके हैं दिल्ली से लिख रहे हैं, सुनी नमस्कार, आप कैसी हैं? और हम भी जुड़ गए हैं अपने शो से, अपने गाँव से, और सिनोरवा गाँव से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत दिलीप जी आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, अयान अंसारी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ में इनके हैं सलमान अंसारी, और गाना सुनना चाहते हैं टिंकू जिया। तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रमसिम को। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि हम लाइन में बानी तनी हमरो पर ध्यान दी। बिल्कुल ध्यान है। श्रावण शर्मा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आगे बढ़ेंगे, एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है और मेरे गाना सुना सकती है। बिल्कुल सुना सकते हैं, लेकिन आप अपना नाम पता मेंशन करिए, कौन है, कहां से, और गाना कौन सा सुनना है ज़रूर बताइए। और बढ़ेंगे आगे, यहां निजामुद्दीन जी है समस्तीपुर से, और गाने की फरमाइश के साथ है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में। और आगे बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश से पहले एक और यहाँ अभी अभी दस्तक दिए सचिन कुशवाहा पुणे से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे लिखते हैं कि पैसा भी क्या मस्त चीज़ है, बचपन में मांगना पड़ता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में यही छोड़कर जाना पड़ता है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, सावन शर्मा जी है, और इनको सुनना है गाना परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रमसिम को।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

90.4 रेडियो रमजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज है और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुँचा हुआ है। और संतोष कुमार पटेल जी जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि आज का अर्जुन चले आना पान की दुकान पे 3:30 बजे गाने की फरमाइश के साथ है। बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो मैसेज है, मनीष पांडे जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड दोपहरिया। बहुत बहुत स्वागत मनीष जी आपका भी, बने रहिए हमारे साथ में। और यहाँ धनेश मिश्रा जी हैं, लिख रहे हैं कि दोस्ती करो BSNL वाली से, प्यार करो आइडिया वाली से, बात करो एयरटेल वाली से और आँख लड़ाओ वोडाफोन वाली से, पर दोस्तों शादी करना बिना मोबाइल वाली से। तो धनेश मिश्रा जी मैं आपको बता दूं कि फिर बिना मोबाइल वाली ढूंढते ढूंढते आप बूढ़े हो जाइएगा, फिर भी आपको कोई बिना मोबाइल वाली अभी के समय में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं, रश्मि है जुड़ी हुई है और इनका सुनना है गाना अहो साले। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं और यहाँ कुछ सवाल पहुँचे हुए हैं तो आपकी सवालों के भी जवाब देंगे। फिलहाल रश्मि की फरमाइश पे एंजॉय करते हैं इनके पसंद का गाना।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे और गाने की फरमाइश थी रश्मि शर्मा जी की, और इनको सुनना था गाना, और काफ़ी फनी गाना था भोजपुरी में कल्लू की आवाज़ में। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ, और उससे पहले यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम तो बिना मोबाइल वाले ढूंढ रहा हूँ मैं, तो ढूंढिए। और बोले तो ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाइएगा, लेकिन आपको बिना मोबाइल वाला अभी के समय में नहीं मिलने वाली, क्योंकि अभी का जो समय है बिना मोबाइल का काम चलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी हो। या तो मोबाइल यूज़ करने के लिए चाहिए, या फिर अभी काफ़ी सारे क्लास भी है ऐसे हो गए हैं कि बिना मोबाइल का नहीं, घर पे बैठिए, स्कूल जाइए, घर पे आके मोबाइल पे ही होमवर्क आ रहा है और फिर लेके मोबाइल से होमवर्क हो रहा है। तो मोबाइल तो रखना अभी के समय में मैंडेटरी हो गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मनीष पांडे हैं, लिख रहे हैं कि गाना बज सकता है क्या, और भाग रे पंडित जी, तो ये गाना का नाम है या क्या? फिर अगर गाना का नाम कोई और है तो कंफर्म करिए, और गाना बिल्कुल बज सकता है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ सानिया सैफी जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत आपका सानिया जी। और लिख रहे हैं कि सुबह उठकर कितना भी मुँह धो लो, फेस पर ग्लो चाय पीने के बाद ही आता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो मैं चाय पीना काफ़ी कम कर दी हूँ, लेकिन फिर भी सुबह सुबह तो ज़रूर पीती हूँ चाय। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुंचा हुआ है, तो फरमाइश लेंगे, लेकिन यहाँ सवाल भी पहुंचा हुआ था हमारे पास। और सवाल ये था कि हम बात कर रहे थे सेहत सही लाभ के अंतर्गत आज गर्भावस्था के बारे में, और उससे जुड़ी हमारे पास सवाल है कि गर्भावस्था के दौरान परिवार का सदस्य किस तरह से सहयोग कर सकता है एक गर्भवती को, इसके बारे में बताया जाए। तो जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान परिवार का सहयोग माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। परिवार के सदस्य ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि गर्भवती महिला को समय पर पौष्टिक भोजन मिले, पर्याप्त आराम करने का अवसर मिले, और नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र या फिर अस्पताल ले जाया जाए। इसके साथ ही घर के कामों में मदद करना, उन्हें तनाव मुक्त और खुश रखने की कोशिश करना तथा उनकी बातों और ज़रूरतों का समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक सहयोगी और सकारात्मक माहौल स्वस्थ गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो गर्भावस्था केवल महिला की नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होता है। परिवार का प्यार, सहयोग और देखभाल माँ और शिशु के लिए बेहतर स्वास्थ्य में मदद करता है, तो बहुत ही ज़रूरी होता है। परिवार के सदस्य का भी सहयोग गर्भावस्था के दौरान और यहाँ सानिया सैफी जी हैं, लिख रहे हैं कि नॉर्मल लोग दिन में 2 बार चाय पीते हैं, लेकिन प्रोफेशनल लोग दिन में कितने बार पीते हैं? तो अभी का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो मैं नहीं पी पाती हूँ चाय, लेकिन इससे पहले मैं जहाँ काम करती थी वहाँ पे दिन भर में मेरा तो 6-7 बार हो जाता था चाय, लेकिन अभी काफ़ी कम हो गया है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से है, और यहाँ और भी सारे मैसेज है शामिल करेंगे, और मैसेज यहाँ पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है। बिल्कुल आप सबकी गाना है, फरमाइश प्ले करेंगे, फिलहाल बात करते हैं, और यहाँ हेलो बात करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, कट चुका कॉल, तो चलिए बढ़ेंगे आगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है पुणे से सचिन कुशवाहा जी को, और इनको सुनना है गाना, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18744।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-053-69-015 पे।
6: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
6: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
10: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। 3:13 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज है, और बाबा जी जुड़े हुए हैं, सूरत से लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल, हम आपके गाने की फरमाइश प्ले करते हैं, लेकिन कल ही आपके गाने की फरमाइश प्ले किए हैं हम, और इस शो का रूल है कि इस शो में आप जुड़ ले सकते हैं, डेली अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन गाने की फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद ही पूरा की जाती है, कि काफ़ी सारे हमारे लिस्टर हैं तो सबको चांस देना चाहिए इसी वजह से। तो कल आपके गाने की फरमाइश प्ले किया था, और अगला गाना एक सप्ताह बाद ही प्ले करेंगे। शो में जुड़े बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, और गाने की फरमाइश है, और निजामुद्दीन जी हैं समस्तीपुर से, और इनको भी लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना है मैम, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपकी भी गाने की फरमाइश जो है कल ही प्ले किए थे, और अगली फरमाइश जो है एक सप्ताह बाद ही प्ले कर पाएंगे। शो में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि धनेश के घर लिख रहे हैं कि धनेश के घर ही भाभी है जो एक मिनट बिना मोबाइल के नहीं रहती है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश जी के भैया उमा शंकर मिश्रा जी दिल्ली से। तो एक मिनट का पता नहीं, मैं तो बिना मोबाइल के ही रहती हूँ, मुझे तो मोबाइल चलाने का ही मौका नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ कि समय मिले तो थोड़ा मोबाइल चलाएं। और इस चक्कर में कितने लोग हैं जो कि बोलते हैं कि मैसेज इग्नोर करते हैं, हम देखते नहीं हैं, आज रील भेजो आप देखते हो दो चार दिन बाद। कुछ लोग तो ऐसे सामने से मिलते हैं तो बोलते हैं रील भेजे थे नहीं देखे, तो हम बोलते हैं कि दिखा दो, तो वो अपने फ़ोन में ही दिखाते हैं। और जिनके पास समय है वो चला रहे हैं, अच्छी बात है। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, और विजेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं मोहम्मदपुर नीलामी से, बहुत बहुत स्वागत आपका विजेंद्र जी, बने रहिए हमारे साथ में। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्या हो गया, कहाँ खो गई, बिल्कुल नहीं खोया और आपके गाने की फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ सनी है गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, और अगली फरमाइश प्ले करेंगे हम। मनीष पांडे जुड़े हुए हैं और इनको सुनना है गाना, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर मैसेज कर दिए हैं और हमें भी कोई गीत में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल, और आगे गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब से जुड़े हुए हैं किशोर सावलनिया जी, सवित्री सावलनिया और साथ में इनकी है सुमन सावलनिया बेटी अंशु रानी के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मेरे यहाँ तेज आंधी आया है आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो अभी बाहर दिख रहा है जैसे कि धूप निकला हुआ है और ऐसा नहीं लग रहा है कि आंधी आने वाला है, और जितना दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ, बाकी बाहर तो अभी हम निकले नहीं हैं। और जब दोपहर समाचार चल रहा था उस टाइम निकले थे तो उस टाइम तो मौसम काफ़ी बढ़िया था। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, वो है, लिख रहे हैं कि अभी तक मेरा गाना चला नहीं, तो बिल्कुल अगली फरमाइश आप ही क्या है और मैसेज करने वाले हैं आनंद अंसारी जी हैं साथ में, है सलमान जी और गाना सुनना है टिंकू जिया। तो आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दी, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल

0: 7050061444 या 7870331444।
1: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ बढ़ेंगे आगे व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। और मैसेज है, आजाद अंसारी जुड़े हुए हैं सऊदी अरब से, लिख रहे हैं कि 2 महीने बाद फरमाइश भेजा हूँ, मेरी फरमाइश भी प्ले कर दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और लिख रहे हैं कि पुराने फिल्म नसीब का कोई भी गाना सुनवा दीजिएगा, बिल्कुल आपकी फरमाइश से प्ले करेंगे। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि आयान बाबू को बहुत ही अच्छा लगा सुनकर गाना सुनी जी। और मैसेज करने वाले हैं सलमान अंसारी जी और बिहार से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि सोनी मैम मेरे भैया से बता दीजिए कि मुझे तो बिना मोबाइल वाली ही चाहिए, नहीं तो मैं शादी करूंगा नहीं, ऐसे ही रह जाऊंगा, मोबाइल वाली से डर लगता है मुझे। तो बिल्कुल, और मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके लिए लड़की भैया ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको भी चिंता लगी हुई है। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, तो चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से, और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो हेलो।
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में
1: जी।
0: नाम बता दीजिए अपना।
1: मेरा नाम चंदन कुमार है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं चंदन जी?
1: करबिया से।
0: अच्छा, तो आज गाना कौन सा सुना दे आपको?
1: बरसात के दिन आए, यही गाना सुना दीजिए।
0: और सुनवाना भी है?
1: हम अपने दोस्त सबको सुनवाना चाहते हैं।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दिए हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सो मैं कॉल किए, एंजॉय करिए अपने गाने को। ओके।
2: पीता पियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं, ये

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, कॉल के माध्यम से गाने की फरमाइश थी, चंदन कुमार जुड़े हुए थे करजिया से। और यहाँ अनिल जी है छोटपुर से, लिख रहे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, बरसात के दिन आए। और आगे बढ़ेंगे, आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि प्यार सिखा कर वो जुदा हो गए, प्यार सिखा कर वो जुदा हो गए, ना सोचा ना समझा खफा हो गए, अब किसी को हम अपना कहे वो भी औरों की तरह बेवफा हो गए। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी दिल्ली से। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रवि तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका, लिख रहे हैं कि हम भी जुड़ चुके हैं और नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और बढ़ेंगे आगे, आगे अगली फरमाइश है, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल है हमारे पास पहुंचा हुआ। और सवाल है, क्या गर्भावस्था के दौरान तनाव चिंता जो रहता है वो माँ या फिर शिशु के स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ता है या नहीं? तो जी हाँ, गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक तनाव और चिंता माँ के शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जिसका असर शिशु के विकास पर भी पड़ सकता है। इसलिए इस दौरान खुश रहना, पर्याप्त आराम करना, संतुलित भोजन लेना, परिवार के साथ सकारात्मक माहौल में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी बात को लेकर लगातार चिंता या तनाव महसूस हो तो डॉक्टर या फिर स्वास्थ्यकर्मी से सलाह लेना भी फायदेमंद हो सकता है। तो गर्भावस्था के दौरान माँ को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। परिवार का प्यार, सहयोग और सकारात्मक वातावरण माँ और शिशु दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो स्वास्थ्य से ही लाभ कई के अंतर्गत आज के इस विषय कार्यक्रम में हमें बात की गर्भावस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उनका आसान जवाब आपके साथ साझा किया। और हमें उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आप सभी के परिवार के लिए उपयोगी साबित होगी। तो याद रखिए, सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार का सहयोग स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु की मजबूत नींव होता है। और फिलहाल गर्भावस्था से जुड़ी आज की जानकारी यहीं तक, फिर मुलाकात होगी आप सभी से अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों, नए जानकारी और स्वास्थ्य से जुड़ी नए विषय के साथ। तब तक आप सभी सुनते रहिए और रखिए अपनों का ख्याल, अपने परिवार का ख्याल, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को अपने आरजे सोनी के साथ, अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ रवि जुड़े हुए हैं और गाने की फरमाइश के साथ है, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, आजाद अंसारी हैं सऊदी अरब से और इनको सुनना है गाना फिल्म नसीब से, कोई भी पुराना नसीब फिल्म से। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को।

0: बहुत बहुत शुक्रिया सोनी जी हमारे गाने को बजाने के लिए। और मैं अपना गाना सुन रहा हूँ, मैं आजाद अंसारी, ग्राम सुखदेव पट्टी, अभी फिलहाल सऊदी अरब से।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत रेडियो रणसिम 90.4 FM में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, 3:46 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारे उद्घोषक महादेव जी, फिर से हाजिर है एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ सानिया सैफी जी है चखसना से, लिख रही हैं कि अभी बरसात के दिन नहीं आधी के दिन आए हैं और धूप तेज हो जाए फिर गर्मी ज़्यादा पड़े फिर लाइट चली जाए और हमारे तरफ गाना सुनते ही आधी आ चुकी है। और रही बात कि हमारे यहाँ भी आधी तो नहीं आई है, लेकिन बोलते हैं ना कि तूफान आने से पहले की जो शांति है वो पूरी शांति बनी हुई है और कभी भी आधी आ सकता है। पूरा एकदम क्या भोजपुरी में बोलते हैं कि गुमसुम भैलबा मौसम, वैसे ही भैलबा और आधी तो अभी आया नहीं है और धूप भी नहीं है, पूरा गर्मी सा मौसम हुआ है। और यहाँ आगे बढ़ेंगे, मैसेज है लिख रहे हैं कि नज़र और नसीब में एक गहरा रिश्ता है क्योंकि नज़र को अक्सर वही पसंद आता है जो नसीब में ना हो। और अनिल जी है छोटपुर से, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है रवि तिवारी जुड़े हुए हैं और उनको सुनना है गाना, तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर रहे हैं, आवाज़ पहुँच रही है, अपने गाने को एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे रवि तिवारी जी की फरमाइश थी दिल्ली से, और बढ़ेंगे आगे और अगली फरमाइश की तरफ। उससे पहले यहाँ मैसेज है, और मैसेज है रिसव डिजिटल सर्विस बिशुनपुर बाजार से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि मेरा मैसेज भी देखिए, बिल्कुल आपके मैसेज देख चुके हैं और शामिल भी कर दिए हैं, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि ये गाना रेडियो लायक नहीं है, अनिल जी है छोटपुर से। और आगे यहाँ मैसेज है, और गाने की फरमाइश है चली आना पान की दुकान पे 3:30 बजे आज का अर्जुन फिल्म से गाना सुनना है और संतोष कुमार पटेल जी है। तो चलिए अगली फरमाइश जो है आपका प्ले कर रहे हैं, एंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।
1: यानी नेम माय है

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे संतोष कुमार पटेल जी की फरमाइश थी और लिखे हैं कि सॉन्ग प्ले करने के लिए थैंक यू। और बढ़ेंगे आगे यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ और मैसेज है लिख रहे हैं कि उमाशंकर मिश्रा जी हैं लिख रहे हैं कि अगर बिना मोबाइल वाला लड़की चाहिए फिर वो तो बर्बाद है। और दिल्ली से है उमाशंकर जी, बढ़ेंगे आगे यहाँ मैसेज है। और सानिया सैफी जी हैं चखसना से लिख रहे हैं कि सही बात बा, इतना गुमसुम मौसम भइल बा कि जेठ के महीना चलत बा और सब केहू के घूंघट उड़वा के छोड़ ले बाटे। जी हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही मौसम के जेठ थोड़े कहल जाला। और आगे यहाँ फरमाइश है हमारे पास और नाम मेंशन नहीं है और गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है तो नाम ज़रूर बताइए आप कौन है कहाँ से। लिख रहे हैं कि मेरा भी एक गाना है बजा दीजिए, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश है प्ले कर रहे हैं और गाना है सरकारी दुल्हा, तो आपके गाने की फरमाइश प्ले कर दिए। और अपना गाना ख़त्म होने से पहले नाम पता ज़रूर मेंशन करिए कौन है कहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुमे जुड़े।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, और गाने की फरमाइश है लिखने की, मैं रचना की बहन बोल रही हूँ। ओके, और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि किसका किसका बात माना जाए। कोई बोल रहा है दुल्हा सरकारी चाहिए, और दुल्हन की तरफ बोला जाए तो बोला जा रहा है कि लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए। कन्फ्यूज़न हो रहा है पूरा, और किसी के तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। आजाद जी, अपना अपना सबका सोच है, और जिसका जैसा सोच है वो अपने सोच के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हर कोई जवाब देता है। तो आपको जो भी है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने जो भी हमारा स्वभाव उसके हिसाब से हमें कैसा जीवन साथी चाहिए उस हिसाब से ढूंढना चाहिए। दूसरा सामने वाला क्या बोल रहा है उसका बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जिसको बिताना है वही सही डिसीजन लेगा। बाकी लोग ऑप्शन देते हैं, उसमें से बस चुन लेना है। रही बात, बहुत लोग अरेंज मैरिज करते हैं, तो अरेंज मैरिज में भी ऑप्शन होता है, घर वाले पसंद करते हैं लेकिन उसके बाद भी मौका तो देते हैं ना, कि इतने लड़की देखे हैं या फिर इतने लड़के देखे हैं, इसमें से जिसको शादी करना है वो कन्फर्म करता है कि उसको किससे शादी करना है। और जो लोग ज़बरदस्ती थोपते हैं उनसे मेरा यही कहना है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। जिससे शादी करना है एक बार उससे भी उसका सलाह ज़रूर पूछे, उसका राय ज़रूर ले। और यहाँ वाजिद अंसारी जुड़ चुके हैं, और शो का समाप्ति का समय हो गया, समाप्ति से 2 मिनट अधिक जा चुका है। स्वागत है आपका। और यहाँ अभी अभी मैसेज है, नौशाद मोबाइल विक्रमगंज रोहतास से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। और सभी का मैसेज यहाँ बाय बाय का पहुँच रहा है, तो बाय बाय मैसेज के साथ हमें भी दीजिए आज की शो से इजाज़त जाने की। और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले दिन इसी शो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें, और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
7: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज, CBSE पैटर्न पर आधारित।

0: नर्सरी से क्लास दसवीं तक कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल, सासामुसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम,
2: सुनो दिल से।

0: कि दुनिया माया के बाजार बा, इहां केहू के केहू नहीं खे, भाई बहन बाप माई सगे संबंधी।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
4: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554953
0: और 9097160602।
3: अरे ए चाची, जब आंख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलतनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आंख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाक चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आंख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आंख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आंख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने राजसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 919-666-9973।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003। 62042434403।
7: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
8: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 5790।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
2: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: मास्टर निर्गुणों के भाव लगा दी का
1: ना बे आश्रो है दे।
2: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
3: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
3: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
10: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
10: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67-666।
9: आप सब सुन रहे बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जॉन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास जादवपुर में, कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9954-97644।
6: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज कराकर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
7: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु छिनताई और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
6: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
8: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता,
6: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
8: जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
6: और 9097-6160-02।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। नाम बता दे अपना।
2: साना कैश।
1: और कहाँ से हैं आप?
2: मालवा से।
1: अच्छा, क्या हाल है आपका?
2: ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है। तो मौसम कैसा है उधर का?
2: मौसम तो अच्छा है, धूप के साथ साथ हवा भी है।
1: अच्छा जी, चलिए तब बढ़िया है। भोजन हो गया आपका?
2: जी, नाश्ता हो गया, 12 बजे लंच होगा।
1: अच्छा जी, चलिए ठीक है। फिर बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: ये सुना दीजिए, दुल्हन सी दुल्हन सी सजी है थी खुदा हुआ अब लौट के। हाँ, ये गाना सुना दीजिए। आपको डीजे करना चाहते हैं और सभी पूछना कुछ कितना करना चाहते हैं?
1: ओके
2: मैम, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम भारती है।
2: भारती
1: जी, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ। सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल चाल है जी?
1: बढ़िया, आप अपना बताइए।
0: बढ़िया, हिमतापुर से बोल रहे हैं, विकास
1: जी। क्या क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो यही काम वाम हो रहा है गांव में, दिल्ली में रहते हैं, अभी घर पे आया है, यही घर पे काम वाम हो रहा है। सोचे कि आपका कॉल लगाए, थोड़ा बहुत दिन के बाद आपका कॉल लगा है।
1: अच्छा जी,
0: तो हमको सॉन्ग सुना दीजिएगा, वही सारे दिक्कत भुला के को।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: आपके पूरे श्रोताओं को, बस रिमझिम सुनने वाले को पता।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम, आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9947044468 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
13: नमस्ते मैम।
14: नमस्ते,
13: हम घासीराम भिटौली कला से बोल रहे हैं।
14: जी जी, क्या हाल है आपका?
13: हाल चाल मैम बढ़िया है।
14: तो मौसम कैसा है उधर का?
13: इधर बहुत गर्मी हो रही, बहुत धूप खिली है। अभी खाना वाना नहीं खाया, अभी तुम्हें खाना खाएंगे, काम कर रहे थे।
14: अच्छा, तो नाश्ता हुआ है?
13: हाँ, नाश्ता सुबह में हुआ।
14: अच्छा, चलिए बढ़िया है, फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
13: वो गाना सुनवा दीजिए, मंदिर लगी रोशनी गाँव कैसे। और एक गाना भक्ति गाना
14: जी, कौन सा सॉन्ग?
13: वो मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे मेरा रूठ गया सावरा मनाऊं कैसे,
14: किसी फिल्म का सॉन्ग है?
13: नहीं, एक भक्ति गाना है सॉन्ग है, मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे मेरा रूठ गया सावरा मनाऊं कैसे।
14: ओके चलिए बता दीजिए, ये सॉन्ग किसी को सुनाना नहीं है?
13: ये हमारे राकेश भाई है और हमारे संजू भाई है, राजकुमार दादा है और जितने सुन रहे हैं, जितने श्रोता सुन रहे हैं और रेडियो रिंगिंग की टीम को।
14: ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिंगिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: और मैम क्या हाल है?
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: अरे आज तो बहुत परेशान हूँ।
0: क्यों?
1: 11 बजे करते करते सारे 11 बजे।
0: अच्छा जी, कॉल नहीं लग रहा था।
1: आप लोगों से तो मिलने बात करने के लिए ना इतने आदमी लाइन में लगे रहते
0: जी, अब मन पसंद गाने सुनने के लिए।
1: आज तो परेशान है, पूरा आधा घंटा हो गया लगाते लगाते लगाते।
0: अच्छा जी,
1: और सब ठीक है?
0: जी सब ठीक है।
1: तबियत सही है ना?
0: हाँ मेरा सही है, आपका सही है ना?
1: बस हम भी काम पे हैं।
0: जी तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश यही है ना, आरा सिंह मजनू रखिए पटना रेखा पहले।
0: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: आपको, सोनी जी को, भैया को, भाभी को, और पिछले सारे लिखना सुनने वाले हैं सबको।
0: ओके चलिए ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: गुड मॉर्निंग।
13: गुड मॉर्निंग, मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
14: मेरा भी बढ़िया, और सब बताइए।
13: और सब बढ़िया है, आप बताइए।
14: खाना खा कर आए कि नहीं?
13: जी, खाना खा के आए हैं। और सब बताइए, सब कोई घर में कैसे हैं?
14: सब लोग बढ़िया है। मेरे बहन बोल रहे कि इसको आवाज बहुत बढ़िया लगता है।
13: थैंक यू, मेरी आवाज आपको पसंद आई?
14: बोल रहे आवाज बहुत अच्छा लग रहा है। हम उठाने अभी कर रहे थे तो बोल रहे थे कि सोने की भी थी, सोने के लिए भारतीय भी दिया था, बोल रहे थे तो उसके बहुत अच्छा अच्छा है। सोने की भी क्या हाल?
13: उनका भी बढ़िया है।
14: आप तो पूछ रहे हो, चावल वाला जगह नहीं है?
13: कौन सा काम?
14: चावल वाला जगह नहीं है?
13: पैसे ना भरोसा करी
14: एक बार, चावल पर चावल पर नहीं चढ़े हो, गन नहीं है?
13: पैसे ना भरोसा करी क्या? हाँ हाँ आया है। ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
14: आपको विद्या मन को बच्चों को भी रहेगा
13: भारती में,
14: और बोले भारती में भी रहेगा।
13: जी जी बिल्कुल, हाँ रहेगा आप भी। जी बिल्कुल, कैसी हैं आप?
15: हम बढ़िया है, अपना बताइए।
13: हम भी ठीक है।
15: तो क्या हो रहा है?
13: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही हैं। और क्या?
15: अच्छा नहीं मिलता है?
13: वो भी है, वो भी किसी काम में बिजी है।
15: चलिए ठीक है।
13: ओके चलिए, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ चलेगा। बाय बाय।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है मैम, कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
1: आप अच्छे हैं, अहमद अली सरायाबाद नंबर 1 से।
0: हाँ जी।
1: अब मैम नाश्ता पानी हो गया है?
0: हो गया है। आपका हो गया?
1: हाँ हाँ, मेरा तो हो गया है। आए थे आपके रिमझिम के बाजू में ही खड़े हैं, नंबर लगा रहे थे, सोचे लग जाएगा तो एक आदमी से मिलना था इधर।
0: अच्छा,
1: वही आए लग गया नंबर।
0: चलिए ठीक है, बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी।
1: फरमाइश हमको सुनाइए, दीवाना मूवी से सुना दीजिए, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं।
0: अच्छा जी, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: सबसे पहले तो आपको और भारती मैम को, अक्षरी को, कमरान रशीद को, भाई को, रघु जी को, रानी को, पूनम को, और जो भी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं जहाँ से भी, सभी को।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें।
1: थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
12: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
11: तो देर मत कीजिए,
12: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9932 1308।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: जी नमस्कार।
15: नमस्कार,
14: मैं डॉक्टर अमोद कुमार कुशवाहा, ग्राम जी छपरा जिला खुशनगर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
15: जी क्या हाल है आपका?
14: क्या मैम अपना बताएं।
15: मेरा भी बढ़िया है।
14: मुझे गाना सुनवा दीजिए, पर से जाना नहीं, कुमार सानू का वाजन सुनाइएगा।
15: और ये सॉन्ग डेडिकेटेड भी है
14: आपको और फिर रिमझिम परिवार को, जितने भी रिमझिम सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को। एक इसमें है उदित नारायण की आवाज में, वो वाला मत सुनाइएगा, कुमार सानू वाला सुनाइएगा।
15: ओके
14: ठीक है, थैंक यू।
15: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ।
14: कब तक आ जाएगा?
15: कल शाम को 5 बजे।
14: कल आएगा?
15: जी
14: ठीक है, थैंक यू।
15: रेडियो रूम जी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
0: अपना नाम बता दें एक बार।
1: मैम मेरा नाम है सुजीत कुयाल।
0: अच्छा जी, कैसे हैं? क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो जी बेटा रहा था सोचा की पढ़ी
0: हो गया है।
1: हाँ मैम हो गया है।
0: चलिए फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: मैम से गाने नहीं है, नीले नीले अंबर वही वाला गाना सुनना है मैम।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: मैम ये सॉन्ग आपको डेडिकेटेड है, मेरे फ्रेंड्स लोगों को डेडिकेटेड है और मेरी एक्स थी उस।
0: चलिए
1: हाँ जी
0: ओके
1: ठीक है मैम।
0: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रिंग में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
5: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97746164।
8: प्रसाद क्लिनिक।
9: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
8: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
9: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय फ्रेंड्स।
13: जी मैम नमस्ते।
14: नमस्ते,
13: मैं संगम पासवान, ग्राम धनौती, पोस्ट कटिया, थाना कटिया, जिला गोपालगंज, बिहार से हूँ। अभी फिलहाल में मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ, नासिक। जहाँ भी आप लोग का प्रोग्राम हम लोग लगातार सुनते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं फिर भी वहाँ भी सुनते हैं ऐप के माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है ये हमारे गांव का जो भी हालचाल मिलता है, चाहे जो भी प्रोग्राम होता है, एक से एक है।
14: बताइए क्या हाल है आपका?
13: मैम आप लोग की कृपा है, रेडियो परिवार का प्यार है, अच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है।
14: मौसम कैसा है उधर का?
13: मैम यहाँ मौसम तो अभी धूप है, एक दिन बारिश हुआ था आज ये लगभग एक सप्ताह पहले, अभी बारिश वारिश नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ तो बारिश होती है तो लगातार होती ही रहता है ना, इधर से खुलता है फिर उधर से आता है, ऐसा होता है, हम लोग जॉब करने में भी दिक्कत होता है।
14: अच्छा जी।
13: आने जाने में चाहे कोई काम भी हो तो। वहाँ कैसा मौसम है मैम?
14: इधर भी बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है।
13: अच्छा अच्छा, हम लोग सोचे कि इधर ही है, मतलब यहाँ तो ज्यादा मुंबई के तरफ तो ज्यादा गर्म मौसम है ना, पहाड़ी इलाका है इसीलिए। मैम आप बढ़िया है ना?
14: जी हम बढ़िया है, आप ठीक है ना?
13: जी मैम जी, सब बोल रहे हैं नहीं, आपका आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है, हम लोग जहाँ भी रहेंगे तो रेडियो रिमझिम हम लोग का साथ नहीं छोड़ने वाला है, नहीं हम लोग रेडियो रिमझिम का साथ छोड़ेंगे, चाहे यहाँ रहे चाहे अदर देश में चले जाए।
14: जी
13: बहुत एक से, हम तो लगभग 2009 से रेडियो रिमझिम से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, और परमानेंट मैं कॉल करता ही रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो कॉल करता हूँ, लेकिन और सारे सब श्रोता लोग हैं तो कभी कभी कॉल नहीं लगता है तो दुख भी होता है कि आप लोगों से बात नहीं हुआ।
14: अच्छा। कभी कभी ज्यादा दिन बिजी रह जाता है।
13: हाँ हाँ, क्या करें मैम, हम तो लग रहा है हमको तो बहुत, हम एक घंटे से ट्राई कर रहा हूँ।
14: अच्छा।
13: और नहीं लग रहा था तो फिर सोच रहे थे कि लग रहा है कि मेरा कॉल लगेगा ही नहीं,
14: तो आज बता दीजिए आपकी क्या फरमाइश है।
13: मैम अपने पसंद से कोई भी भोजपुरी सॉन्ग सुना दीजिए गम का।
14: जी दिन भर तो हम लोग अपने पसंद से बजाते हैं, कॉल किए हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, अपनी पसंद का सुनना चाहिए।
13: भोजपुरी जो भी हो गम का, तो अंकुश राजा का एक गाना है ना,
14: बताइए कौन सा।
13: तो अपना बारे में पीवा कुछ ना बतावे, हमारा से जाने खातिर ऐसी करके ये गाना है भोजपुरी में, वही गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, मेरे सब दोस्त लोग हैं उन लोगों को, मनु मुकेश और बहुत सारे दोस्त है
14: जी,
13: और खास करके आपको और रेडियो रिमझिम पूरा परिवार को और हमारे जितना भी कटिया का हमारे सब दोस्त हैं उन लोगों को।
14: ओके, तब सब ठीक है ना?
13: हाँ मैम सब आपकी आशीर्वाद है, ठीक है, आप लोग बढ़िया है ना। खुशी ये मिलता है ना मैम कि जब हाल चाल हम लोग जब सुनते हैं ना मैम, तो हम लोग का सब कुछ पता लग जाता है कि गांव में क्या हुआ क्या नहीं, ये कार्य, ये जो आप लोग हालचाल वाला जो एपिसोड चला रहे हैं ना, बहुत हमको खास करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक चीज जो भी है हम लोग को जानकारी हो जाता है, क्या होने वाला है अपने जिला में, कब क्या हुआ, रेडियो रिमझिम आने से हम लोग को बहुत फायदा है मैम। और हम तो चाहेंगे कि कृपा शंकर श्रीवास्तव जी को प्रणाम मैं कर रहा हूँ कि उनके जैसे और भी कुछ ऐसा हो कि उनके माध्यम से कि और रेडियो रिमझिम का नाम हो और ऊपर तक जाए, हम लोग यही चाहेंगे, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं।
14: जी चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ।
13: जी मैम नमस्ते।
14: नमस्ते, रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
13: ठीक है मैम, नमस्ते।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत नी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87-894-18744।
10: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
13: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
14: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
15: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
16: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
18: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
19: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
18: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे फोन लगाते हुए, बहुत मुश्किल से फोन तो आज लगा मैम। जी जी जी, बहुत ट्राई करना पड़ा मैम, जाके फिर अभी फोन शामिल हुआ।
19: अच्छा जी
18: जी जी जी मैम। अब मैम वहाँ के मौसम के क्या हाल चाल है मैम?
19: इधर का मौसम अभी बहुत गर्मी पड़ रही है।
18: जी जी जी जी मैम, हमारे यहाँ भी अभी बहुत गर्मी है मैम। यहाँ एमपी में। अभी बारिश तो नहीं हुआ, पहले हुआ था एक हफ्ता पहले, बाकी बारिश अभी नहीं है। नहीं
19: बारिश होगा, जब मौसम गर्म हो रहा है तो बारिश तो होना ही चाहिए।
18: जी जी जी जी, बारिश तो होना चाहिए, बाकी अभी बारिश नहीं, अभी बहुत गर्मी है, बहुत उमस भी है। जी जी जी, तो मैम आपका खाना पीना हो मैम, नाश्ता होता?
19: हाँ मेरा हो गया, आपका हो गया?
18: जी जी, अभी तो बाकी है मैम, हम सोचे अभी फोन लगाते हैं, फिर बाद में खाना वाना खाएंगे फुर्सत में मैम।
19: अच्छा जी, तो
18: जी
19: गाने की फरमाइश बता दीजिए।
18: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा, गाने के बोल है कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दो लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
19: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम।
18: धन्यवाद।

0: हेलो मैम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
2: हेलो
1: जी, बोलिए, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम आयशा है।
1: और कहाँ से हैं आप आयशा जी?
2: मैं मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ।
1: कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ।
1: क्या करती हैं आप?
2: पढ़ाई।
1: कौन सी क्लास में हैं?
2: 5 क्लास में।
1: पढ़ाई कैसे चल रही है?
2: अच्छी चल रही है।
1: बता दीजिए, कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
2: मेरी फरमाइश है कि मैं सारी रात गाना सुनूं। सारी रात सुता है मुझको।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: बोलो जी, मेरी आंटी सबको, सोनम आंटी, साबरी आंटी, नाजर आंटी, पलक आंटी, सभी को और रेडियो रिमझिम और मेरे भाई को।
1: ओके ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
10: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
12: जी नमस्कार मैडम।
11: नमस्कार
12: जी, कौन मैम बात कर रहे हैं मैडम?
11: भारती।
12: अच्छा अच्छा, भारती मैम। और बताइए कैसे हैं?
11: मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
12: हम दीपक कुमार बात कर रहे हैं।
11: जी
12: जी, गर्मी कैसा है मैम वहाँ का?
11: यहाँ गर्मी है बहुत ही ज्यादा।
12: अच्छा अच्छा, तो कूलर वगैरह नहीं चल रहा है क्या?
11: नहीं, यहाँ पे तो चल रहा है लेकिन बाहर जाने पे गर्मी तो लग रही है ना।
12: अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते रहिए, ठंडा पानी लेते रहिए।
11: जी ठंडा पानी पीते हैं लोग।
12: जी जी, और सोनी मैम, पूजा मैम, ये सब नहीं रहते हैं क्या?
11: जी है, सोनी मैम है।
12: अच्छा अच्छा अच्छा, सोनी मैम से भी बात करे हुए बहुत दिन हो गए, काफी समय हो गया। मान लीजिए कि शादी का समय, हमारे शादी का समय बात हुई थी। ठीक है, तो एक गाना सुनवा दीजिएगा।
11: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
12: वो है कवाली है, मौत बड़ी तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कवाली सुना दीजिएगा।
11: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
12: हाँ, सोनी मैम सुनेंगे और पूजा मैम सुनेंगे, सोनू सर सुनेंगे, हम सुनेंगे, अनिल जी सुनेंगे, अनिल जी लाठी वाले।
11: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंगजिन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
12: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
13: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
14: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
15: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
16: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
19: नमस्कार मैडम।
18: नमस्कार
19: मैडम, मेरे को गाना सुनना है।
18: गाना सुनाएंगे, नाम बता दो।
19: राजकिशोर गुप्त।
18: और कहाँ से?
19: हमें।
18: क्या हाल है आप?
19: हमें, मैं, हमारा दुकान है।
18: अच्छा, हाँ आपका दुकान
19: है। गाना सुनना था मैडम, महबूबा फिल्म का है, मैं तेरा दीवाना।
18: जी, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
19: हाँ, जितने भी रेडियो सुनने वाले हैं सभी।
18: ओके, तो कैसे हैं आप?
19: बढ़िया है।
18: भोजन हो गया?
19: हाँ सब कुछ हो गया।
18: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
19: रिकॉर्डिंग कब तक आएगा मैडम?
18: ये वाले रिकॉर्डिंग कल आ जाएगा या परसों?
19: ठीक
18: जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज इनके कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैम, कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए। तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी कुछ नहीं, कॉल लगा रहे हैं। एक सौ बीस लगा है,
1: ना ज्यादा कॉल लगाना पड़ा।
0: 11 बजे से आपका शो चल रहा है ना? गाने की सर्वाइस करें
1: जी, बताइए।
0: गाना है पुराना, गाने का नाम है सबसे हम दूर हुए।
1: गाने का क्या नाम है?
0: सबसे हम दूर हुए।
1: हाँ,
0: समय का आवाज है।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
0: डेडिकेटेड तो बस आपको है, सभी सुनने वालों को। चलिए मैंने तो हमारे क्या है सॉन्ग किया जाए।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ।
0: धन्यवाद
1: रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बम्बई से आने वाली गाड़ी 8 बजे अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पर पहुंचेगी।
14: प्लेटफार्म नंबर 7 से अभी कुछ ही क्षणों में रवाना होने वाली।
13: भाई साहब अरे मैं 1 घंटे से इस प्लेटफार्म में चक्कर लगा रहा हूँ पर।
15: हाँ, तो भाई साहब तो चक्कर लगा रहा हूँ तो अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं भी सुबह दो चक्कर नुक्कड़ के बरगद के पेड़ के लगाता हूँ।
16: अरे आप मेरी बात तो सुनिए।
15: तो फिर मैं और कर क्या रही हूँ?
16: नहीं नहीं, वैसे तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन
15: अरे लेकिन क्या, जब बात सुन रहा हूँ तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि बात तो सुनिए।
16: अजी आप समझे नहीं।
15: अच्छा, बहुत अच्छे है, मतलब आप अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। आप सोचते हैं कि आप जैसा बुद्धिमान कोई आया ही नहीं।
16: अरे यार आप जाइए प्लीज यार।
15: जाइए प्लीज का क्या मतलब? मैं कोई अपनी मर्जी से आपके पास आया था, आपने खुद मुझे आवाज देकर बुलाया था।
16: अरे गलती हो गई तो माफ करो।
15: ये स्टाइल ठीक है, ये स्टाइल ठीक है। और सुनो, आइंदा कभी ऐसे मत बुलाना।
16: नहीं बुलाऊंगा, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा।
15: आपने मुझे बुलाया क्यों था ये तो बताइए।
16: हे भगवान, देखिए भाई साहब, बाबा जी मैं इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर इंक्वायरी ऑफिस कहाँ पर है?
15: क्यों
16: जी, क्यों क्या मतलब?
15: भाई तुम क्यों पूछना चाहते हो कि इंक्वायरी ऑफिस का मतलब पता क्या है?
16: अरे मुझे काम है।
15: वही तो पूछ रहा हूँ, क्या काम है?
16: अरे भाई मैंने कहा ना मुझे काम है।
15: अरे फिर भी।
16: अरे क्या फिर भी, मुझे कोई भी काम हो आपको क्या मतलब?
15: अरे वाह, आप उससे पता पूछ रहे हैं कि नहीं?
16: पूछ रहा हूँ।
15: तो फिर मुझे ये तो पता होना चाहिए कि आप पता क्यों पूछ रहे हैं।
16: अरे भाई मैंने कहा ना मुझे काम है।
15: हाँ तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ कि वो काम क्या है।
16: अरे यार तुमको पता बताना तो बताओ यार, नहीं तो मुझे माफ करो।
15: अरे आप नाराज हो गए।
16: मैं क्या करूँ,
15: पता बताने में क्या ऐतराज हो सकता है, अभी बता देता हूँ।
16: धन्यवाद।
15: धन्यवाद?
16: अच्छा आपके पता बताने का धन्यवाद।
15: लेकिन भैया मेरे, अभी मैंने बताया कहा तुम्हें।
16: नहीं मेरा मतलब ये था कि आप पता बताने को राजी हो गए ना इसलिए।
15: अरे मेरे भैया अभी राजी तो हुआ हूँ। हाँ। पता बताया थोड़ी है, और अगर अभी नहीं बताऊँ तो आपका धन्यवाद बेकार चला जाएगा।
16: हाँ।
15: देखो भाई, धन्यवाद बताने के बाद देना मान देना।
16: ठीक है,
15: देखो यहाँ से सीधे
16: हाँ सीधे
15: हाँ सीधे जाओ।
16: जाऊँ
15: फिर दाएं मुड़ो।
16: दाएं मुड़ूं? ठीक है।
15: फिर 10-12 कदम चलने पर
16: हाँ
15: तुम्हें एक दरवाजा मिलेगा।
16: अच्छा, फिर
15: उसमें दाई तरफ मुड़ जाओ।
16: दाई तरफ मुड़ जाऊँ?
15: हाँ।
16: मुड़ गया।
15: फिर 10 कदम आगे चलो।
16: ठीक है।
15: फिर 10 कदम पीछे चलो।
16: है? अरे 10 कदम आगे चलूं, फिर 10 कदम पीछे चलूं। मैं चलूं ही क्यों?
15: बच चलो खड़े रहो।
16: अरे भाई साहब आपको जल्दी है।
15: भाई आप कह रहे हैं कि मैं चलूं ही क्यों, तो फिर मैं पता बताऊं ही क्यों?
16: अरे मेरा कहने का मतलब ये है बाबा जी, जब 10 कदम आगे चलना हो फिर 10 कदम पीछे चलना हो तो चलने से क्या फायदा?
15: आपको पता मालूम करना है या नहीं?
16: अरे करना है
15: तो फिर चलना ही पड़ेगा।
16: ठीक है बाबा जी, बताओ आप।
15: तो उसके बाद सामने एक वजन तोड़ने की मशीन आएगी।
16: अच्छा, फिर
15: बस उसके बराबर ही किताब की दुकान है।
16: किताब की दुकान? पर किताब की दुकान से क्या मतलब?
15: अरे मतलब क्या, किताबों की दुकान मतलब क्या, किताबें मिलती है।
16: तो मुझे किताबों की दुकान से क्या लेना देना, मुझे तो इंक्वायरी ऑफिस का पता चाहिए।
15: अरे वही तो बता रहा हूँ, उन किताबों की दुकान के सामने ही इंक्वायरी ऑफिस है।
16: अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ।
15: सुनिए,
16: अब क्या हो गया?
15: वाह भैया वाह, ऐसे ही चल दिए। एक शरीफ आदमी ने अपना कीमती वक्त लगाकर तुम्हें पता बताया और तुम उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते?
16: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत एहसान किया है मुझ पर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है
15: अब ठीक है, अच्छा तो मैं चलूँ।
16: अच्छा जी भाई साहब,
15: 10 कदम आगे
16: 10 कदम पीछे।
15: 10 कदम पीछे।
16: धन्यवाद। हे भगवान, कैसे कैसे लोग मनाता है। आप ही था चीनी गति का समाचार। ये रहा दरवाजा, वो रही वजन तुलने की मशीन, वो रहा इंक्वायरी ऑफिस। बहुत सुंदर बैठे हैं भगवान, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। गुड मॉर्निंग सर।
17: क्या क्या कहा तुमने?
16: गुड मॉर्निंग सर।
17: गुड मॉर्निंग सर?
16: यस सर।
17: घड़ी है तुम्हारे पास?
16: घड़ी? हाँ घड़ी है ना। क्यों?
17: अरे घड़ी का ताल्लुक है घड़ी।
16: हाँ घड़ी है ना।
17: क्या टाइम हुआ?
16: 12:30।
17: 12:30?
16: हाँ।
17: गुड मॉर्निंग क्यों? गुड आफ्टरनून क्यों नहीं?
16: यस सर, गुड आफ्टरनून सर।
17: थैंक यू, जाओ।
16: सर
17: अब क्या है?
18: सर मैं आया हूँ।
17: आप आए हैं ये तो मैं देख रहा हूँ, आपकी फोटो उतरवाऊँ?
18: नहीं सर वो बात ये सर, हाँ ये सर ये लीजिए, ये लीजिए सर ये लीजिए।
17: ये क्या है?
18: ये सर मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट।
17: मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट या जन्म पत्री?
18: अरे जन्म पत्री नहीं सर, मेरी ज्वाइनिंग रिपोर्ट। सर मेरी ड्यूटी लगी है सर।
17: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, नए नए आए हो?
18: यस सर।
17: आज पहली दफा?
18: हाँ सर।
17: और पहली दफा ही लेट?
18: हाँ?
17: दो घंटा से भी ज्यादा।
18: वो सब वो रास्ते में सर, रास्ते में।
17: रास्ता नाश्ता कुछ नहीं, तुम लेट हो, मान लो कि तुम लेट हो।
18: हाँ सर वो तो मैं मानता हूँ सर, मैं लेट हूँ, लेकिन सर वो बात ये कि
17: जब मानते हो कि लेट हो तो फिर ये लेकिन वेकिन क्यों लगा रहे हो?
18: वो सर बात ये सर, वो मैं कह रहा था।
17: अच्छा अच्छा छोड़ो, वहाँ उस कुर्सी पर बैठना है तुम्हें।
18: इस पे
17: देखिए
18: सर। हाँ हाँ बैठ गया सर।
17: हाँ अब ये पूछताछ का दफ्तर है।
18: यस सर पूछताछ का।
17: किसी भी यात्री को उसकी मांगी गई पूरी जानकारी मिलनी चाहिए।
18: यस सर।
17: समझ गए?
18: समझ गया सर।
17: और हर यात्री से बड़े प्यार से, धीरे से और मुस्कुरा कर बोलना है।
18: जी सर।
17: तो फिर शुरू हो जाओ।
18: हाँ सर।
17: क्या बोलूं? जाओ।
18: हाँ तो सर कोई पूछेगा तो बोलूंगा ना।
17: अरे तो मैं पूछ रहा हूँ ना।
18: हाँ पूछो।
17: आपकी पूछताछ की खिड़की कब खुलती है?
18: अरे मुझे क्या पता कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ।
17: खा गए ना बच्चा?
18: जी
17: हाँ, टेम्पर लूज कर दिया
18: तो?
17: अभी समझाया था, बड़े मुस्कुरा कर प्यार से बोलना है। खड़े हो जाओ सीधे।
18: अच्छा सर मुस्कुरा कर। हमको मुझे पता नहीं साहब कब खुलती है, मैं तो आज ही आया हूँ।
17: ये दांत क्यों दिखा रहे हैं आप? अरे हंसने के साथ जरूर यही क्या कि दांत दिखाओ?
18: अच्छा सर
17: मुंह बंद करो।
18: हाँ, मुझे पता नहीं सर, मैं तो आज ही आया हूँ।
17: अब क्या हुआ, पेट में ऐठन हो रही है या किसी ने गला दबा दिया?
18: अजी मैं बोल लूंगा साहब, आप ठीक है, मैं देख लूंगा।
17: कोई बात, पसीना पहुँचो।
18: यस।
17: अबे मेरा नहीं, अपना पसीना पहुँचो और उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ।
18: ठीक है साहब।
17: खिड़की खोल लो और अपना काम शुरू करो।
18: हाँ,
17: कोई दिक्कत हो तो मेरे पास मेरे कैबिन में आ जाना।
18: आ जाऊंगा सर, बिल्कुल आ जाऊंगा, आपके कमरे में आ जाऊंगा सीधा ही।
17: मैंने कोई लतीफा कहा है?
18: नहीं तो
17: फिर हंसे क्यों?
18: वो तो मैं यूं ही हंस रहा था सर, वो अभी कहा था ना हंसके।
17: अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा, खिड़की खोलिए और अपना काम शुरू कीजिए।
18: ठीक है
17: तो मेरे पास आ जाना।
18: हाँ सर आ जाऊंगा। क्या आदमी है, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। अरे वो पकौड़े वाले,
19: क्या बाबूजी?
18: हाँ, कैसे देते हो भैया पकौड़ी?
19: इतना भी नहीं मालूम कैसे देते हैं पकौड़ी, कागज में बांध के ऐसे देते हैं बाबूजी।
18: अरे ओए मेरा मतलब है क्या भाव देता है?
19: 250 रुपए की 10 किलो। कितनी दूँ?
18: 250 रुपए की 10 किलो, 5 यार 100 ग्राम कितने की देता है?
19: अब खुद हिसाब लगा लो बाबूजी, गणित नहीं आती है क्या?
18: अबे तो मैं कोई गणित का हिसाब लगाने बैठा हूँ क्या यहाँ? जोड़ 100 ग्राम पकौड़ी दे।
19: नहीं दे सकता?
18: नहीं दे सकता?
19: नहीं दे सकता।
18: क्यों भाई, क्यों नहीं?
19: भाजी नहीं दे सकते। अरे खत्म हो गई, इसलिए नहीं दे सकता भाई।
18: खत्म हो गई? अब खत्म हो गई तो फिर चिल्ला रहा था मैं, पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम।
19: बाबू जी दिन भर ऐसी चिल्ला देने से आदत पड़ गई, मैं तो ऐसे कर रहा था पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम पकौड़ी गरम।
18: अरे भगवान, अरे कोई ढंग का आदमी मिला दे, पता नहीं कौन से ग्रह के आदमी मिला। भगवान
20: अल्लाह के नाम देते अजय बेटा।
18: हे प्रभु कहाँ ड्यूटी लग गई?
20: अजय बेटा
18: भाई,
20: वो बारात आने वाली थी, आ गई क्या?
18: कौन सी बारात?
20: वो दूल्हा कहाँ है?
18: ये दूल्हा।
20: ए मैं काज नाराज क्यों होता है, दूल्हे का बाप तो है बाप।
18: अरे दूल्हे की माँ, चले आज बाहर जा चल।
20: अल्लाह तुझे सलामत रखे।
18: भगवान
20: चोर है,
18: कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में।
20: पहर पर पाए तेरा
18: प्रभु।
21: राम राम
18: राम राम राम
21: राम राम
18: राम राम
21: राधे राधे
18: राधे राधे
21: कृष्णा कृष्णा। मैं पूछ रहा था क्या इंक्वायरी ऑफिस यही है?
18: हाँ हाँ यही है। क्यों?
21: मतलब पूछताछ नहीं होती है?
18: अरे यही होती है।
21: भाई साहब इस शहर में अच्छी से अच्छे कपड़े कहाँ मिलते हैं?
18: कपड़े?
21: हाँ हाँ कपड़े, पैंट शर्ट कुर्ता पजामा धोती वगैरह कहाँ मिलते हैं?
18: मुझे क्या पता भैया कहाँ मिलते हैं?
21: पता नहीं, कमाल है।
18: कमाल है
21: भाई साहब, आप बता सकते हैं इस शहर में अच्छे से अच्छे जूते कहाँ मिलते हैं?
18: जूते?
21: हाँ जूते, काले भूरे लाल नीले, पैर में पहनते हैं जूते।
18: अरे मुझे मालूम है पैरों में पहनते हैं, लेकिन भैया जूतों से मुझे क्या मतलब?
21: कोई मतलब नहीं है। अच्छा भाई साहब एक बात बताइए आप, मुझे अपनी पत्नी के लिए हार खरीदना है, कहाँ से खरीदूं?
0: अबे तू तेरी पत्नी के लिए कहीं से भी हार खरीद यार, चोरी कर डाका डाल मेरे जगह पूछ रहा है।
21: अब इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पूछताछ, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा।
0: अबे तो इस पूछताछ का मतलब है रेल में पूछताछ, यहाँ रेलों के बारे में पूछा जाता है।
21: ओ, रेलों के बारे में पूछा जाता है।
0: हाँ।
21: भाई साहब ये रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं?
0: मेरे घर पे बनते हैं।
21: घर पे बनते हैं डिब्बे?
0: हाँ।
21: तो भाई साहब ऐसा करना, एक रेल का इंजन घर भेज देना, मुन्ना खेल लेगा।
0: अबे किन डब्बे कहाँ बनते हैं, रेल का इंजन बाहर कहाँ बनता है, इस बात से मुझे क्या लेना देना।
21: तो भाई साहब गुस्सा काहे को होते हो, रेलों के बारे में ही तो पूछ रहा हूँ ना।
0: अबे तो रेलों के बारे में पूछने का मतलब है रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
21: ओ, रेलों के आने जाने के बारे में पूछना।
0: हाँ।
21: भाई साहब ये रेल आती क्यों है?
0: अबे यात्रियों को लेने आती है बाबा जी।
21: तो गुस्सा क्यों होते हो है? फिर जाती क्यों है?
0: उन्हें लेकर जाती है, पर तुझे कहाँ जाना है?
21: मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यूं ही टाइम पास करने आ रहा था।
0: टाइम पास करने आया था तो ये
21: भाई साहब इंजन भेज देना।
0: टाइम पास करने आया था। अजय भाई साहब जी, अजय भाई साहब जी, अजय भाई साहब जी, अजय भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, क्यों आप रहे हो आप? अजय पांच नंबर के पेड़ों से बकरा रहा हूँ भाई साहब जी।
2: अरे ऐसी क्या आफत आ गई यार?
0: मैं जाना चाह रहा था भाई साहब जी, ये भोपाल है जो उदयपुर जाने वाली ट्रेन है भाई साहब जी, कितने बजे जाती है?
2: उदयपुर जाने वाली
0: भाई साहब जी, उदयपुर जाना जी भाई साहब जी।
2: अरे देख के बता रहा हूँ भाई, ये ठाव
0: तो भाई साहब, जल्दी बताओ जी।
2: उदयपुर जाने वाली ट्रेन
0: आ जाएगी भाई साहब,
2: बता रहा हूँ भैया। अरे भैया वो तो 11 बजे जाती है, वो तो गई
0: गई।
2: हाँ गई।
0: अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन?
2: अरे हाँ भाई उदयपुर जाने वाली ट्रेन।
0: ओ जो पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है भाई साहब जी वो?
2: अरे हाँ भाई पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, गई वो ट्रेन।
0: आप समझ नहीं रहे, सेवन डाउन है वो, पूछ रहा
2: हूँ। मालूम है सेवन डाउन है, सेवन डाउन है, पांच नंबर के प्लेटफॉर्म से जाती है, उदयपुर जाती है, 11 बजे जाती है ट्रेन। गई
0: गई क्या?
2: हाँ गई।
0: अच्छा भाई साहब,
2: क्या अच्छा भाई साहब?
0: अजी भाई साहब जी
2: क्या है
0: अजी, कहीं शंटिंग करने तो नहीं गई है?
2: हमारी शंटिंग करने वो 9 बजे जाती है भाई, और अभी 12:30 बज चुके हैं, ट्रेन गई।
0: अरे तो नियम थोड़ी, कभी लेट भी तो जाती होगी ना।
2: अरे आज नहीं हुई लेट,
0: मतलब चली गई।
2: चली गई
0: ठीक है भाई साहब।
2: क्या ठीक है?
0: ओ भाई साहब जी।
2: अरे अब क्या है भाई?
0: अजी कहीं ऐसा तो नहीं वो दूसरे प्लेटफॉर्म में खड़ी हो, आपको पता ही नहीं हो?
2: हम तो पागल है, हम तो यूं ही ड्यूटी पे आ गए। अबे यार ये रजिस्टर क्यों रखा है, काहे के लिए रखा होता है? इसमें देख के बताया ना मैंने, गई ट्रेन
0: गई क्या?
2: हां गई।
0: ठीक है भाई साहब,
2: पता नहीं कैसा आदमी
0: भाई साहब जी।
2: अरे अब क्या है यार,
0: आप मजाक तो नहीं कर रहे ना?
2: तू जीजा जी लगता है मेरा, तू भाई है मेरा, दोस्त है, मैं क्यों मजाक करूंगा? देर दे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई तो गई।
0: खाओ मेरी कसम।
2: तेरी कसम भाई, तेरे पिताजी की कसम, अरे तेरे पूरे खानदान की कसम दादा, उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई।
0: वास्तव में गई क्या भाई साहब?
2: वास्तव में गई यार, सच्ची में गई।
0: सच्ची?
2: अब सच्ची गई, रियली में गई, अरे उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई बाबा।
0: ठीक है भाई साहब।
2: अरे भगवान क्या करूं।
0: अजी भाई साहब जी।
2: अरे मेरे बाप, अब उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई?
0: नहीं वो तो आपने बता दिया गई,
2: तो
0: मैं पूछ रहा था पूरी गई क्या?
2: आधी खड़ी है बाहर।
0: आधी खड़ी है ना?
2: खुली। अबे आधी ट्रेन कैसे जाएगी, ट्रेन तो पूरी जाती है।
0: पूरी जाती है?
2: हाँ।
0: फिर तो इंजन भी गया होगा।
2: क्या आदमी, अबे इंजन के बिना ट्रेन चलेगी कैसे यार, इंजन ही तो ले जाता है ट्रेन को।
0: गार्ड का डिब्बा भी गया क्या भाई साहब?
2: अबे गार्ड के डिब्बे, डाक के डिब्बे, सारे डिब्बे गए भैया, तो चलने देगा से?
0: पहिए भी गए क्या भाई?
2: अबे कौन से चरम का बदला ले रहा है यार, अरे पहियों के बिना ट्रेन चलेगी कैसे?
0: भाई साहब मेरा उदयपुर जाना जरूरी है, मैं छत पे बैठ के चल जाऊंगा।
2: अरे तो जब ट्रेन ही नहीं है तो छत कहाँ से आई?
0: क्यों छत भी जाती है क्या ट्रेन के साथ?
2: नहीं भाई साहब, वो छत तो क्या ट्रेन के पीछे पीछे चलती है।
0: मैं भी ये सोच,
2: अबे ट्रेन में ही तो लगी होती है छत।
0: अच्छा भाई साहब आप कह रहे तो मान लेता हूँ,
2: मान लेता हूँ। कान होगी लगा दी तरह तरह से पौड़े पौड़े लोग मिल रहे।
0: ओ भाई साहब जी।
2: अरे अब क्या है यार,
0: कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो सकता क्या?
2: एक इंतजाम तो हो सकता है भाई साहब।
0: क्या भाई साहब?
2: ऐसा करो आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले जाता हूँ उदयपुर।
0: ऐसे तो देर हो जाएगी।
2: तेरा कह रहे क्या?
16: कोई इंतजाम नहीं हो सकता, समझे? चलो ऐसे।
18: अजी भाई साहब, मैंने टिकट लिया था, ट्रेन कैसे चली गई?
16: अरे ट्रेन का टाइम हो गया भैया और तुम लेट हो गए, इसलिए चली गई।
18: नहीं, मैंने टिकट लिया था भाई साहब।
16: बिना टिकट लिया था तू भगवान हो गया क्या? कोई देर से कहना, उदयपुर चल रही ट्रेन गई, अब चलो ऐसे।
18: अजी भाई साहब, आप ऐसा कीजिए, ट्रेन को वापस बुला लिए, मैं लटक कर चला जाऊंगा।
16: ट्रेन वापस नहीं आ सकती, समझे?
18: अरे कैसे नहीं आ सकती, ये तो आप रेल वालों की धांधली है।
16: रेलवे,
18: हाय हाय रेलवे,
16: ये क्या कर रहे हो यार?
18: देखो आप मेरे को उदयपुर भेजो, नहीं तो मैं ऐसे नारे लगाऊंगा।
16: तो मैं उदयपुर कैसे भेजू?
18: अरे कैसे भेजो, आपको क्या है कि एक आध डब्बे बाद में भेजने चाहिए, ताकि लेट आने वाले पैसेंजर को असुविधा ना हो।
16: हाँ भाई साहब, मैं आपकी सलाह है ना, रेल मंदिर तक पहुँचा दूंगा।
18: अरे लेकिन मैं अभी उदयपुर कैसे जाऊँ?
16: और तू कैसे जाए यार, मैं क्या करूँ इसमें? हाँ भाई साहब, एक काम हो सकता है, अरे आप बस से चले जाओ।
18: बस से नहीं, मैं तो ट्रेन से जाऊंगा।
16: बट ट्रेन तो चली गई, तो मुझे लेकर क्यों नहीं गई? तो
19: गलती हो गई भैया, रेलवे वालों से बहुत बड़ी गलती हो गई।
18: अब आप मुझे बताइए मैं उदयपुर कैसे जाऊँ?
16: अरे मैंने कहा ना दादा, बस से चला जा। अरे आज तेरे बस से चला जा यार, मेरी ड्यूटी का पहला दिन है, पैर पड़ू बस से चला। आरती सांत तेरी, जय जगदीश। भाई साहब बस से चला जाओ यार।
18: ठीक है भाई साहब, अब आप इतना कह रहे हो तो मैं बस से चला जाता हूँ।
16: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद
18: भाई साहब जी।
16: अब बोलो,
18: आप मेरा एक काम करोगे क्या?
16: कहिए।
18: वो बस स्टैंड थोड़ा दूर है यहाँ से,
16: छोड़ियो आपको।
18: नहीं नहीं, आप फोन करके टिकट बुक करा दो मेरा।
16: फोन करूं?
18: हाँ भाई साहब।
16: हाँ एक मिनट रुको भाई साहब, वो नंबर क्या है वहाँ का?
19: 2 26 21 22।
18: मैं ये बता रहा था,
19: 26 21 22।
18: हाँ भाई साहब, जरा सा।
16: अरे उठा ले रे। हेलो, हाँ बस स्टैंड से। हाँ ये मैं पूछ रहा था, ये उदयपुर जाने वाली कोई बस है क्या? हाँ। है
19: नहीं भाई साहब, मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा ही हूँ। नहीं वो प्रॉब्लम है कुछ भाई साहब आज। हाँ मैं पूछ रहा था भाई साहब, उदयपुर जाने वाली कोई बस की क्या है, कि वो टिकट विकट मिल सकती है क्या? उदयपुर जाने वाली बस गई हट? ठीक है भाई साहब।
16: भाई वो उदयपुर जाने वाली बस तो गई।
18: ऐसे पूछो वास्तव में गई क्या?
16: भाई साहब वास्तव में गई क्या? जी वास्तव में गई।
18: ऐसे पूछो पूरी गई क्या?
16: वो तो पूरी। अबे तेरी तो इधर आ तू। जाना नहीं जी तेरी पकौड़ी।
19: बाबू मैं कोई पकौड़ी बेचने थोड़ी आया हूँ।
16: तो क्या कहना है फिर?
19: मैं तो मैसेज देने आया हूँ।
16: मैसेज देने?
19: हाँ।
16: क्या मैसेज देने भाई?
19: वो जो सामने खंबे के सारे खड़ा ना, सारा लेके।
16: कहाँ पे?
19: वो सामने खंबे के, देखो ना।
16: वो हाँ। क्या कह रहा है वो?
19: उसने पूछ रहा है कि उदयपुर जाने वाली ट्रेन गई क्या?
16: ये कोई नौकरी है? मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। सर सर सर सर सर,
17: क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है?
16: ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये लीजिए सर, ये लीजिए।
17: क्या है
16: ये सर? मेरा इस्तीफा।
17: अरे लेकिन दफ्तर के कुछ कायदे कानून होते हैं।
16: जी कायदे कानून क्या होते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। कायदे वायदे कानून कानून
17: तुम्हें मैं
16: जानता हूँ, ये मेरा इस्तीफा है।
17: अरे भैया इस्तीफे के साथ चार्ज देना पड़ता है।
16: चार्ज देना पड़ता है?
17: हाँ।
16: यहाँ भी? हाँ। कितना चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलो?
17: अरे अरे अरे ये वाला चार्ज नहीं,
16: तो
17: हैंडिंग ओवर नोट में लिखना पड़ेगा तुम्हें कि उदयपुर वाली ट्रेन गई क्या।
16: हाँ गई।
1: का फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
22: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
23: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।

0: जहाँ सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
1: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में एनएच 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62 112 पे।
6: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम,
6: सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री।
3: सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित, कहा दीपक प्रकाश पूरी अवधि तक मंत्री बने रहेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, भोजपुर के कायमनगर निवासी अग्निवीर वायु दानिश आलम समेत 5 जवानों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग, निवेश, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक मंजूरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि बिहार में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से औद्योगिक विकास को गति मिल रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था को विकास की महत्वपूर्ण शर्त बताते हुए कहा कि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के जेपी गंगा पथ पर 1,00,000 पौधारोपण का लक्ष्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने गंगा तट क्षेत्र के समग्र विकास, पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक पहचान के पुनर्स्थापन और राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
4: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी कल ही हमारे पास ये जानकारी आई है, हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
3: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके निर्वाचन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किसी अन्य ने नामांकन दाखिल नहीं किया था। बाद में अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का विस्तार उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दीपक प्रकाश अपने पूरे कार्यकाल तक मंत्री बने रहेंगे।
5: एनडीए के नेताओं में पूरे तौर पे सूझबूझ है और सूझबूझ का उन्होंने परिचय दिया, नहीं देना होता तो दीपक प्रकाश दोबारा से मंत्री परिषद का शपथ नहीं लेता। जिस दिन दोबारा से इसने मंत्री परिषद की शपथ ली उस दिन इस सूझबूझ के साथ शपथ दिलाई गई कि दीपक प्रकाश 2 महीना 4 महीना का मंत्री नहीं, पूरे कार्यकाल का मंत्री। तो एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं की सूझबूझ पर कभी शंका करने का काम मत करिए।
3: एनडीए ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के उस बयान को खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार कंगाल होने के कगार पर है। गया में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है।
2: डबल सरकार है, ऐसे यहाँ पैसा की कमी नहीं है, पैसा सब आ रहा है। जब डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पर, तो सम्राट चौधरी को यानी बिहार सरकार को पैसे की कोई कमी नहीं होगी।
3: विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है।
6: लोकतंत्र में बातों को रखना चाहिए, जानकारी भी देना चाहिए, बयान देना एक अलग चीज है, कोई भी बयान दे सकता है जाकर। सच्चाई यह है कि आज बिहार में समय पर अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, बिहार का विकास हो रहा है, बिहार में तेज रफ्तार से डेवलपमेंट हो रहा है, बिहार में खुशहाली है, शांति है, कानून का राज है, बिहार का विकास हो रहा है, सबों को पेंशन भी मिल रहा है, वेतन भी मिल रहा है और डेवलपमेंट का काम भी जारी है।
3: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी हुई है और सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है।
7: खजाने की चिंता तेजस्वी जी नहीं कर रहे, सम्राट चौधरी जी बिहार की चिंता कर रहे हैं। हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है एक दिन में 1100 रुपए प्रति व्यक्ति उन्होंने डीबीटी के माध्यम से भेजा और सारी योजनाएं जो लोकहित की योजनाएं वो चल रही है। सम्राट चौधरी जी की सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है, लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही है, इसलिए आम जनता की चिंता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनकी सरकार कर रही है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की युवा विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विनिर्माण सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गाँव के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 सालों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% हो गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम के जोरहाट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के कायम नगर के अग्निवीर वायु दानिश आलम भी शामिल हैं। 22 वर्षीय दानिश वर्ष 2025 में वायुसेना में शामिल हुए थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। प्रदेश के 19 जिलों तक मॉनसून पहुंच चुका है। मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से आज कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार में 3,14,000 दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज की गई है। नव नालंदा महाविहार के कुलपति तथा मिशन के बिहार क्लस्टर निदेशक प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि इनमें से कई पांडुलिपियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। उन्होंने बताया कि 15,000 से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कुख्यात अपराधी संतोष यादव के पटना और नालंदा स्थित 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हथियार तस्करी, अवैध संपत्तियों और आय के स्रोतों की जानकारी जुटाने के लिए यह कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान जमीन, वित्तीय लेनदेन, संपत्ति से जुड़े कागजात और बेनामी संपत्ति की जाँच की गयी। पटना के बिस्कुमान भवन की 13वीं मंजिल पर बेल्ट्रॉन कार्यालय में आज तड़के आग लग गई। आग लगने के कारण कई महत्वपूर्ण कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर नष्ट हो गए। अग्निशमन दस्ते की मदद से आग पर काबू पाया गया। अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।
2: आग को कंट्रोल करने में पूरा 45 मिनट लगा था, बाकी धुआं वगैरह था उसको हम लोगों ने पूरी तरह से एग्जॉस्ट कर दिया है। हमारी 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां और 12 वाटर टेंडर और वाटर बाउजर गाड़ियां थी।
0: कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरावगंज के पास NH-31 पर एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। इनमें से 15 की स्थिति गंभीर बताई जाती है। गंभीर रूप से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए GNCH पूर्णिया रेफर किया गया है। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौवाहा से पुलिस ने 419 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि गांजा की तस्करी में डायल 112 के चालक की संलिप्तता पाई गई है, जिसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 10.5 किलो किलो अफीम के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नवादा सदर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुजीत कुमार को 15,000 रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से जमीन के परिमार्जन के एवज में घूस ले रहा था। धान खरीद में अनियमितता बरतने के आरोप में बांका जिले के चुटिया बेलारी पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद शाहबाज को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित पैक्स अध्यक्ष पर 50,00,000 रूपये मूल्य की धान की हेराफेरी का आरोप है। समस्तीपुर जिले के बढ़ोना पंचायत के चतरा गांव में करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत शेखपुरा जिले के मदारीपुर गांव में किसान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। बेतिया पहुंचने पर उनका बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग निवेश रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित। कहा, दीपक प्रकाश पूरी अवधि तक मंत्री बने रहेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। भोजपुर के कायमनगर निवासी अग्निवीर वायु दानिश आलम समेत 5 जवानों की मौत। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। तू जो
5: है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास, जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
7: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज

0: एसपी ज्वेलर के रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
2: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क 99-393-65-930।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
4: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड दूर संचार संवर्ग में कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पद हेतु प्रत्यक्ष भर्ती योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए BSNL की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका पता है www.bsnl.co.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग सहायक, परीक्षा सहायक नियंत्रक, उप नर्सिंग अधीक्षक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहायक भंडार अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, चालक ग्रेड 2। इसके अतिरिक्त अनुबंध के आधार पर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, सीनियर प्रोग्रामर, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, विधि अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता, स्वच्छता अधिकारी, बायोमेडिकल इंजीनियर, लॉन्ड्री मैनेजर और परफ्यूजनिस्ट। इच्छुक उम्मीदवार एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.aimsdevghar.edu.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पुस्तकालय अध्यक्ष, अधीक्षण अभियंता, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, उप कुल सचिव, कार्यकारी अभियंता, सहायक कुल सचिव, सहायक कार्यकारी अभियंता, खेल अधिकारी और उप कुल सचिव। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है, जिनमें विशेषज्ञता के आधार पर निर्धारित विभाग हैं एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। वेतन संरचना, आयु, योग्यता शर्तें, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, शोध प्रकाशन और अन्य शर्तों के बारे में विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.esic.gov.in। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 27 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
6: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
11: प्रसाद क्लिनिक,
12: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
11: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
12: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
13: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
14: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
13: तो देर मत कीजिए,
14: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
15: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
16: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
13: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
16: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
13: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
17: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न, सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉ मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख हबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
9: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
10: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
11: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
11: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
11: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
16: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
17: क्यों, क्या हुआ है?
16: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
17: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
16: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
18: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
19: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
20: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
21: ठक ठक
22: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
23: अच्छा मिला ही नहीं।
22: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
18: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
22: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
18: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, जिला पदाधिकारी ने कई योजनाओं का किया समीक्षा। विशंभरपुर चंवर से मिले अज्ञात शव की हुई पहचान। सड़क हादसे में एक मजदूर की हो गई मौत। डुमरिया घाट पुल को अत्याधुनिक बनाने की मिली स्वीकृति। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वर्षा कुमारी बनी उप विजेता। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने भी कई योजनाओं की समीक्षा की, कई जगहों पर जाकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम कुचायकोट अंचल कार्यालय का जिला पदाधिकारी ने निरीक्षण किया। वहां अंचल कार्यालय में संचालित विभिन्न कार्यों, राजस्व अभिलेखों एवं आम जनता से जुड़ी सेवाओं के प्रगति की उन्होंने समीक्षा की और इसके अंतर्गत बनतैल एवं खजूरी पंचायत में भी निरीक्षण किया। इस दौरान वहां शिविर में आम नागरिकों से प्राप्त आवेदनों की स्थिति, उनके निष्पादन की प्रक्रिया तथा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के निर्देश पर राजस्व महाअभियान के तहत 11 जून 2026 से 17 जून 2026 तक विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राप्त आवेदनों की स्कैनिंग, अपलोडिंग एवं निष्पादन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर में आने वाले सभी आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि आम लोगों को राजस्व संबंधित सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके। जिला पदाधिकारी ने छात्र एवं शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए FRS सिस्टम को भी 100% लागू करने का निर्देश दिया। इसके अलावा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने तथा लंबित MJC मामलों के भी त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय में शिक्षा विभाग की भी समीक्षा बैठक की, जिसमें संचालित शैक्षणिक योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रगति की विस्तृत समीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिले के 3 डिग्री कॉलेजों में निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी निर्माण कार्यों को 20 जून 2026 तक पूर्ण कराते हुए 25 जून तक संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य को हैंडओवर करना सुनिश्चित करें। साथ ही कॉलेज भवनों की रंगाई पुताई, छात्राओं के लिए शौचालय एवं पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने बैठक करते हुए कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही के पद पर चयन हेतु आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के कदाचार मुक्त एवं सफल संचालन को लेकर भी चल रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। DM ने कहा कि परीक्षा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, नोडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित तमाम संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। विशंभरपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में विजयपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बाइक सवार व्यक्ति की हत्या करने के बाद शव को गन्ने में फेंक दिया था और सर को साथ लेते गए थे। सिरकटी लाश देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। शुक्रवार को ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू किया। बताया जा रहा है कि आज मृतक की पहचान कर ली गई। वारदात की सूचना पर पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। 31 मई को भी इसी इलाके से एक लाश मिली थी। इसके बाद लगभग 15 दिनों के अंदर यह दूसरी घटना हो गई, जिससे इलाके के लोग खौफ ज्यादा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल फेंका हुआ मिला। लोग खेत की ओर गए तो गन्ने के खेत के पास मोटरसाइकिल देखकर खेत के अंदर झांकने का प्रयास किया तो अंदर शव दिखाई दिया। तिरकटी लाश देखकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची। एक एक बिंदुओं पर जांच पड़ताल किया गया। शव को कब्जे में लिया गया, जिसके बाद पहचान शुरू की गई। बताते चले कि 31 मई को इसी इलाके से श्याम मोहन यादव, जो मठिया नंदलाल के रहने वाले थे, उनका भी शव मिला था। वे घर से खरीदारी के लिए बोलकर निकले थे। इसी बीच पूर्व से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन्हें जबरन बाइक पर बिठा लिया। अगवा करने के बाद उनकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। हालांकि इस हत्याकांड का भी अब तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। इस हत्याकांड में मृतक के परिजनों ने गांव के ही संदीप यादव और रवि यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि घटना से पूर्व इन्हीं लोगों से विवाद चल रहा था। हालांकि इस हत्याकांड की अभी तहकीकात में पुलिस जुटी ही थी, तब तक इसी इलाके से दूसरी शव मिली, जिससे पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान पुलिस ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव के स्वर्गीय राजा मियां के 60 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्तफा के रूप में की। मुस्तफा के परिवार वालों ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक फोन आया था और उन्होंने किसी खास व्यक्ति से मिलने की बात कहते हुए घर से मोटरसाइकिल से निकल गए, और इसके बाद अब पुलिस ने लाश मिलने की बात कही। परिजन भूमि से संबंधित विवाद को लेकर हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस के द्वारा अब तक इसमें कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। पुलिस एक एक बिंदुओं पर आवश्यक अनुसंधान कर रही है। इधर नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी पंचायत भवन के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बैजनाथ यादव की मौत हो गई। बैजनाथ यादव थावे के वृंदावन गांव से मजदूरी कर साइकिल से अपने घर कोन्हवा मोड़ लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार ठोकर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैजनाथ यादव की एक नेत्रहीन पत्नी और 4 साल का बेटा है। घटना के बाद से इनके परिवार में कोहराम मच गया है। बैजनाथ यादव की पत्नी दोनों आंखों से दृष्टिहीन है, जबकि उनका 4 साल का बेटा है। पूरी जिम्मेदारी बैजनाथ के ही कंधों पर थी। घटना के बाद से उनके परिवार में मातम पसर गया। जो भी इस घटना को सुनता है, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है, और इसमें मोटरसाइकिल से ठोकर मारने वाले 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रभावी प्रयासों के सकारात्मक परिणाम के वजह से डुमरिया घाट पर काफी दिनों से लंबित पड़े निर्माणाधीन पुल के कार्यों में अब स्टील फ्रेम और स्टील गार्डर की स्वीकृति मिल गई है। लंबे समय से इस पुल के निर्माण को लेकर लोग परेशान चल रहे थे। सांसद ने कहा कि अब यहाँ स्टील गार्डर के साथ पुल का निर्माण होगा, जिसके वजह से यह पुल काफी मजबूत और टिकाऊ हो जाएगा। उन्होंने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से लगातार पत्राचार करते हुए इस पुल को पास कराया है। सांसद ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का भी इस पर आभार व्यक्त किया। इधर बाल श्रम के विरुद्ध लगातार सरकार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में बाल श्रम के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन राज्य स्तर पर किया गया था। इसमें गोपालगंज की प्रतिभाशाली छात्रा वर्षा कुमारी ने पूरे राज्य स्तर पर 2रा स्थान प्राप्त किया है, जिसके बाद वर्षा कुमारी के जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। वर्षा कुमारी की सफलता अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत है, और यह साबित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी मेहनत और लगन के बल पर राज्य स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। वर्षा गोपालगंज के SS बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा है। वर्षा की इस सफलता से पूरे विद्यालय प्रशासन के लोगों में भी खुशी का माहौल है। सभी लोगों ने वर्षा के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि उनकी उपलब्धि से अन्य छात्र छात्राओं को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी। कुचायकोट पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी जुगल शाह और दूसरा कन्हैया पासवान है। ये दोनों कुचायकोट के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से कुचायकोट के टोला सिपाया पंचायत भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित लोगों को पैनल अधिवक्ता हैदर अली और पीएलवी अमानुल्लाह की टीम ने नालसा वीर परिवार सहायता योजना राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी कानूनी सहायता योजना को लेकर जानकारी दी। उत्पाद पुलिस ने कई जगहों से शराब तस्करों पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि 301 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ पुलिस ने दिल्ली से आ रही एक कार को पकड़ा। इस कार में सवार एक आरोपी कृष्णा कुमार और दूसरे अजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं। कुचका गांव थाना क्षेत्र के असंदा टोला के रहने वाले अनूप कुमार को भी उत्पाद पुलिस ने 8 लीटर से अधिक शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की यह कार्रवाई कुचायकोट के करमैनी मोहब्बत गांव के पास की गई। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के 70 घाट पुल के पास भी उत्पाद विभाग की पुलिस ने छापेमारी की, जहां मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति से 93 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई। इस मामले में पकड़ा गया आरोपी राहुल कुमार, जो पूर्वी चंपारण के सुंदरापुर का निवासी है, उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं 305 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह बिहार के सुपौल जिले के लिए कार की डिग्गी में तहखाना बनाकर शराब ले जा रहा था। पकड़ा गया आरोपी सुपौल जिला का ही रहने वाला सूरज कुमार है। इसकी कार और शराब को भी जब्त किया गया है और इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कटिया थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त अकबर खान को गिरफ्तार कर लिया। यह तमकुही राज उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। इसे भी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के कांद गोपी पंचायत के बसतपुर गांव में देर रात फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने इस गांव के पप्पू खान के घर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अपराधी फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मीरगंज की पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से दो खोखा बरामद किया गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया है। फायरिंग के कारणों का फिलहाल कोई खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिला पदाधिकारी ने कई योजनाओं का किया समीक्षा। विशंभरपुर चंवर से मिले अज्ञात शव की हुई पहचान। सड़क हादसे में एक मजदूर की हो गई मौत। डुमरिया घाट पुल को अत्याधुनिक बनाने की मिली स्वीकृति। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में वर्षा कुमारी बनी उप विजेता। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
21: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
25: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097506575।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: रियाज रेट्रो।
7: डैमेज्ड हीरोज, वो किरदार जो एक ही साथ अच्छे और बुरे हों। मैन हु आर इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट, इमोशनली इनएडिक्वेट। ऐसे आदमी जिनकी नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह हो, जो फैसिनेट भी करें और रिपल्स भी, जो आकर्षित भी करें और भयभीत भी। द ग्रे स्केल, द नोयर, द मॉरल एम्बिग्विटी, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के हीरोज की तरह ऐसे पात्र जिनकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया, समाज या किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद से हो। टू बी और नॉट टू बी, जिनके जहन का एक हिस्सा हो। कहते हैं शाहरुख खान ने बाजीगर और डर जैसी फिल्मों के साथ पर्दे पर ऐसे किरदार निभाने की हिम्मत दिखाई, पर शाहरुख खान से कई कई कई साल पहले, 4 दशक पहले इनफैक्ट, एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने इसकी पहल की थी, जो हमारे पहले सुपरस्टार्स में गिने जा सकते हैं, जो 7 साल पहले हमें छोड़कर चले गए और जिनका जन्मदिन 26 सितंबर को पड़ता है। हम क्यों देवानंद को सिर्फ रोमांटिक हीरो कहते हैं?

इस दुनिया में। सोचो तो काफी सैड लाइंस हैं, पर धुन ये बात रियलाइज ही नहीं होने देती। इस साल देव साहब की सालगिरह पर मैं उनके निभाए गए किरदारों के बारे में सोच रही थी। द डैमेज्ड मैन ही पोर्ट्रेड। मिड 60s और अर्ली 70s तक हमारा हीरो काफी साफ सुथरा हो गया था। बीच की मांग, दही का टीका, कोई बुरी आदत नहीं। लायक बेटा, प्यारा भाई, नेक पति, दोस्त जो दारू नहीं पीता, बॉयफ्रेंड जो हाथ तक नहीं लगाता। इट वुड टेक श्रीमान बच्चन एंड सलीम जावेद टू क्रिएट द एंग्री यंग मैन आफ्टर दिस एंड शो अस द ग्रिटी फेस ऑफ द हीरो वंस अगेन। पर उसके दो दशक पहले ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर मॉरल ग्रे स्केल देवानंद हमें दिखा चुके थे। हिंदी सिनेमा तब हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा से काफी इन्फ्लुएंस था। फिल्म नोयर, हिचकॉक के हुडनिट्स, यूरोप में बनने वाली थ्रिलर्स, इंटरनेशनल फील भी काफी थी उस समय हिंदी सिनेमा में, क्योंकि हिंदुस्तान हाल ही में आजाद हुआ था और ब्रिटिश असर को जड़ से मिटाने की जिद हमने तब तक जोर शोर से नहीं पकड़ी थी। तो देवानंद अपने बैगी पैंट्स, बेरेज, फेडोरा हैट्स में दिखाई दिए हमें। डेविस्टेटिंगली हैंडसम, ब्रूडिंग आईज, हाथ में कभी सिगरेट तो कभी सिगार, बिना स्टैट्यूटरी वार्निंग्स के स्क्रीन पर, और दिल में तूफान। हमारा कन्फ्लिक्टेड फ्लॉड हीरो जो एक ही साथ अच्छा और बुरा है, इम्परफेक्ट है, अधूरा है। ऐसे लोग हमें रियल लाइफ में भी कितना आकर्षित करते हैं। डैमेज्ड but delicious.

क्या मास्टरपीस है ये किशोरदा की आवाज में फिल्म फंटूश। एसडी के साथ साहिर उस जमाने में किशोरदा वो नेजल टोन के साथ कभी कभी ट्राई करके गाते थे एंड आई थिंक दैट आल्सो सूटेड हिम सो मच। ये साहिर साहब जब आते हैं कुछ कोर सोल लेवल पर कह जाते हैं। दुखी मन मेरे से पहले हम बेखुदी में फिल्म काला पानी, रफी साहब जैसा मैंने कहा इसमें भी एसडी के साथ मजरू सुल्तानपुरी। हजार और सोशल मीडिया हैंडल्स की मेरी उम्र भी नहीं और काबिलियत भी नहीं, और फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट को मना करना अच्छा तो नहीं लगता, इसलिए फिर से बता देती हूँ मैं फेसबुक पर उन्हीं को भी फ्रेंड करती हूँ जिनसे मैं कम से कम एक बार आमने सामने मिल चुकी हूँ। ऑनलाइन फ्रॉड फेक आइडेंटिटीज वगैरह के जमाने में एक बार मिलकर तसल्ली हो जाती है, बस और कुछ नहीं। ड्यूबियस आइडेंटिटी वाले कैरेक्टर्स तो हमारे आज के बर्थडे स्टार ने भी बहुत प्ले किए। देवानंद साहब बॉर्न सितंबर 26, एवरग्रीन, रोमांटिक हीरो, इटर्नल यूथ, प्लेबॉय, ये सारे टैग्स तो उन पर आम हैं। और इस चक्कर में हम वो सारे डार्क, मॉरली एम्बिगुअस, शेड्स ऑफ ग्रे कैरेक्टर्स भूल जाते हैं जो उन्होंने स्क्रीन पर निभाए। इवन गाइड, लुक एट राजूज कैरेक्टर, क्या फैसिनेटिंग किरदार लिखा था आर्य नारायण ने और क्या उसको जिंदा किया पर्दे पर विजय आनंद ने। वन ऑफ देव साहब्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज, मोस्ट अंडरस्टेटेड, बिना उस साइडवेज स्वैगर और हेड नॉड किए। और क्या टॉर्चर्ड कैरेक्टर था राजू, कंफ्लिक्टेड, कुछ नेक कुछ शैतान, कभी भला तो कभी बुरा। और सबसे कमाल की बात इस फिल्म में कि सिर्फ हीरो एक ग्रे कैरेक्टर नहीं था, हीरोइन रोजी भी एक टॉर्मेंटेड सोल थी, एक आउटलायर, सोसाइटी के दायरों और नियमों के बाहर। दैट वॉज ट्रूली प्रोग्रेसिव। आर के नारायण और विजय आनंद के विजन ने हमें दो ऐसे पात्र दिए जो ठोस हाड़ मास, दिमाग, जज्बात से बने थे, रूल बुक से नहीं।

0: सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

क्या पेथोस है दोनों गीतों में और क्या गाया है रफ़ी साहब ने। साथी न कोई मंजिल, एसडी मजरू, फिल्म बम्बई का बाबू, उसमें भी फोर्ज्ड आइडेंटिटी की स्टोरी थी हम दोनों की तरह ही। और उससे पहले गाइड से एक और रफ़ी मास्टरपीस, दिन ढल जाए, एसडी शैलेंद्र। मेरे बरसात एपिसोड के बाद तो शायद आप में से किसी ने ट्विटर पर इसकी एक लाइन भी कोट की थी ना, ऐसी ही रिमझिम, ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात, खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ, फिर से वो सावन अब क्यों ना आए। और अब आप कहोगे, देवानंद का ये कौन सा चेहरा दिखा रही हूँ मैं आज, उनकी सालगिरह पर, वो भी जब उनके इतने अमेजिंग हैप्पी रोमांटिक ड्यूएट्स हैं, है ना। पॉइंट तो है, इम्परफेक्ट हीरो का सब्जेक्ट है तो बहुत फैसिनेटिंग, पर इसके चक्कर में देव साहब के बर्थडे का जश्न ना मने वो तो गलत होगा। पर मैं देवानंद के गाने वैसे ही इतने ज्यादा चलाती हूँ क्योंकि क्या म्यूजिकल जेम्स हैं पिक्चराइज्ड उन पर, तो इसीलिए अब सोच रही हूँ आज खास ऐसा क्या चलाऊं जो दर्जनों बार नहीं चलाया पहले वैसे भी। बट यस, एक फ्लॉड हीरो के भी तो फ्लॉलेस रोमांटिक मोमेंट्स हुए हैं सिल्वर स्क्रीन पर। उस एंग्स्टी डार्क कैरेक्टर के वो सॉफ्ट जेंटल टेंडर ऑथेंटिक मोमेंट्स जिससे डायरेक्टर और राइटर हमें ये बता सकते थे कि बंदा नेक है, दिल का सच्चा है। एक्चुअली सोचा जाए तो देवानंद की फिल्मों में रोमांस एक बहुत जरूरी व्हीकल था जिससे कैरेक्टर की अच्छाई और सच्चाई हम तक पहुंचती थी। टू दैट एक्सटेंट ये रोमांस का थ्रेड सिर्फ ब्रेनलेस सिंगिंग डांसिंग के लिए नहीं था, बहुत अहम भूमिका निभाता था ये फिल्म के प्लॉट लाइन में। वरना कैसे पता चले कि ये चोर, ये स्मगलर, ये गैम्बलर, ये झूठा मकार, फरेबी, ढोंगी, क्रिमिनल एक दिल भी रखता है और उसमें सैकड़ों हसीन जज्बात भी।

0: नॉट आमिर खान बट देवानंद। बर्थडे उनका 26 सितंबर, और हर सीजन लता जी का बर्थडे मनाने के चक्कर में इनकी सालगिरह रह जाती है। तो लता जी को शत शत नमन करके, दिल से उनके लिए दुआ करके, पांव छूकर, माफी मांगकर, कान पकड़कर, इस साल हम देव साहब का जश्न मना रहे हैं। फिल्म 9/2/11 से किशोरदा की आवाज, हम है राही प्यार के यस एसडी मजरू और इसी जोड़ी का ही बनाया हुआ द डिलाइटफुल छोड़ दो आंचल बिफोर दैट, आशा जी किशोरदा।
1: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
2: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
3: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
2: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
3: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
2: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
3: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
2: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
3: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
2: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
3: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
4: तो रामू काका, हाई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
0: एक्चुअली मैं कई बार सोचती हूँ, नूतन नरगिस जैसी एक्ट्रेसेस उस जमाने में स्टार्स कैसे बन गई यार? दे हैड सच इंटरनेशनल फेसेस, बिल्कुल टिपिकल इंडियन ब्यूटी टाइप लुक्स नहीं थे इनके, एक्चुअली मधुबाला के भी नहीं। एक बहुत ही कॉन्टिनेंटल अपील था उनका, जैसे कि देवानंद का भी था। बातों बातों में भटक गई मैं थोड़ा इधर उधर, पर ये हाइपर इंडियननेस जो सिर्फ लुक्स और पोशाक में ही नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स, स्टोरीज, प्लॉट लाइंस, इनफैक्ट हिंदी सिनेमा के पूरे मॉरल मेकअप में आ गया, ये 60s के बाद का फिनोमिनन ज्यादा है। फ्रॉम भरत भूषण टू भरत कुमार ऐसा लगता था जैसे 60s तक पहुंचते पहुंचते अंग्रेजों के असर को झाड़ कर फेंक देने की एक जिद सी पकड़ ली थी इस देश ने। सती सावित्री नारी, आज्ञाकारी बेटा, त्याग भावना वाली माँ, व वर्जिन बहन। ये सारे idioms काफी बढ़ गए थे 60s तक। Naturally, मैं जो भी कह रही हूँ broad generalizations हैं, exceptions of course मिलेंगे दोनों तरफ ही। I'm sure there were very very Indian value films 50s में और 60s 70s में westernized characters भी रहे, दूसरे टाइप के प्लॉट लाइंस भी रहे, पर मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कैसे हमारी फिल्में बदलने लगी। पर कमिंग बैक टू देवानंद, एक बहुत बड़ा फायदा उनके लिए ये भी रहा कि राज खोसला, विजय आनंद, गुरुदत्त जैसे फिल्म मेकर्स कोई मोरालिटी टेल कहने में दिलचस्पी रखते ही नहीं थे। उनके सिनेमा की वोकैबुलरी कुछ और ही थी। वो शायद पर्सनालिटीज के न्यूएंसेस, कैरेक्टर्स के ग्रे शेड्स में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, इमोशंस के ग्रे स्केल में, और इसलिए इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिला धर्मदेव पिशोरीमल आनंद को। दैट वाज हिज फुल नेम, जानते थे आप?
8: एक पहेली है तो नार नवेली है तो
9: कुछ कहा
8: जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए
9: सच

वो 70s के रंगीन गाने, लिटरली कलरफुल इन मोर वेज देन वन, एक दो तो चलाने थे ही ना, जब देवानंद विजिबली एज कर गए थे और अपने ही अंदाज और स्टाइल का खुद ही एग्जैजरेशन बन गए थे, और अपने से आधी उम्र के हीरोइंस को रोमांस कर करके देवानंद पर वो एवरग्रीन वाला टैग लग चुका था। पर फिल्म्स और उनकी स्टोरीज फिर भी इंटरेस्टिंग थी इस जमाने में भी। कहानियों में अभी भी ट्विस्ट्स, टर्न्स, इंट्रिग्स थे। मसलन आपने जो गाना सुना किशोरदा की आवाज में अभी, शरीफ बदमाश से तेरे 100 दीवाने, एन आर डी आनंद बख्शी क्रिएशन, उस फिल्म में तो कुछ गवर्नमेंट से ब्लूप्रिंट्स चुराने वाली बात थी। उससे पहले भी हीरा पन्ना में एक इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर टाइप प्लॉट था। अब पता नहीं क्यों रोमांटिक रोमांटिक रोमांटिक करते रहते हम देवानंद को। रोमांस तो बस एक थ्रेड हुआ करता था अक्सर इनकी मूवीज में। देखा जाए तो एक्चुअली वो हुडनेट जॉनर के मेगास्टार थे। इस मेगास्टार के बहुत सारे मेगा हिट्स नहीं चलाए आज। जो रियाज रेट्रो रेगुलरली सुनते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि तेरे घर के सामने, तीन देवियां, जूल थीफ, प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों के गीत क्यों नहीं चलाए, क्योंकि ये गीत तो मैं बहुत बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चलाती ही हूँ। 70s के भी कुछ और बहुत रेलेवेंट गीत हैं जो आज के डैमेज्ड हीरो थीम के साथ बहुत बहुत सही बैठते, बट विदाउट सेइंग टू मच बिकॉज आई कांट, वो गीत अगर मैं चलाती तो फिर ये एपिसोड भी इंडिया के बाहर आप नहीं सुन पाते, और अभी तक तो मुझे पिछले एपिसोड का भी प्रायश्चित करना है, तो एक और पाप कैसे कर देती मैं। पर हाँ, एक एल्बम है जो मैं बहुत सुनती हूँ, आपको बहुत सुनाती हूँ, जिसका एक एक गाना राशा हुआ नगीना है। जयदेव और साहिर लुधियानवी के बनाए हुए मास्टरपीसेस हैं। देवानंद के लिए मोहम्मद रफी की बेहतरीन गायकी है, और जिस फिल्म के गीत आज की थीम के साथ बहुत ज्यादा मिल खाते हैं, तो चाहे कितनी बार ही क्यों ना चलाया हो, आज तो जाते जाते ये चलाना बनता है। टू देवानंद टॉर्चर्ड टॉर्मेंटेड कैरेक्टर्स एंड टू ऑल ऑफ अस डैमेज्ड सोल्स, द ट्रेजिक हीरोज दैट लिव विद इन अस अमंगस्ट अस, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his six-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The five-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that BRICS nations represent nearly half the world's population and contribute around 42% of global agricultural output. He said, Indore Declaration is not just a document of agreement, but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force, IAF, has expressed grief at the loss of the lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five air warriors. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next chief of the army staff with effect from 30th of this month. He is presently serving as the vice chief of the army staff. The present chief of the army staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. As part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga IDY 2026, the Ministry of Ayush, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Hebbled, will organize a landmark global online yoga event tomorrow. The online yoga session will be held from 6:15 a.m. to 7:35 a.m. and is expected to witness participation from more than 130 countries. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कम्प्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात
2: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: कहो साली जी, कहाँ की तैयारी बाहो?
2: रहो न जीजा, मैंने तैयार ना होके।
1: ओहो,

0: बुझे जा बुझने।
1: अच्छा तो चला।
2: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में। नाम बता दे अपना।
2: साना कैश।
1: और कहाँ से हैं आप?
2: मालवा से।
1: अच्छा, क्या हाल है आपका?
2: ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है। तो मौसम कैसा है उधर का?
2: मौसम तो अच्छा है, धूप के साथ साथ हवा भी है।
1: अच्छा जी, चलिए तब बढ़िया है।

0: हो गया आपका?
1: जी लगता तो हो गया, 12 बजे लंच होगा।
0: अच्छा जी, चलिए ठीक है, फिर बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: ये सुना दीजिए, दुल्हन सी है, दुल्हन सी सजी है थी, खुदा हुआ अब लौट के। हाँ ये गाना सुना दीजिए। आप तो डिग्री करना चाहते हैं, आप सभी कृष्णा को कितना करना चाहते हैं?
0: ओके
1: मैम, आपका नाम क्या है?
0: मेरा नाम भारती है।
1: भारती
0: जी, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: क्या हाल चाल है जी?
1: बढ़िया, आप अपना बताइए।
2: बढ़िया, इंतापुर से बोल रहे हैं विकास
1: जी।

0: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो यही काम वाम हो रहा है गांव में। दिल्ली में रहते हैं, अभी घर पे आए हैं, यही घर पे काम वाम हो रहा है। सोचे कि आपका कॉल लगाए, थोड़ा बहुत दिन के बाद आपका कॉल लगा है,
0: अच्छा जी,
1: तो हमको सॉन्ग सुना दीजिएगा, वही सारे सिकुए भुला के को।
0: ओके। और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: आपके पूरे श्रोताओं को, बस रिमझिम सुनने वाले को पता।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: नमस्ते मैम।
7: नमस्ते,
6: हम घासीराम भिटौली कला से बोल रहे हैं।
7: जी जी, क्या हाल है आपका?
6: हाल चाल मैम बढ़िया है।
7: तो मौसम कैसा है उधर का?
6: इधर बहुत गर्मी हो रही, बहुत धूप खिली है। अभी खाना वाना नहीं खाया, अभी तुम्हें खाना खाएंगे, काम कर रहे थे।
7: अच्छा, तो नाश्ता हुआ है?
6: हाँ, नाश्ता सुबह में हुआ।
7: अच्छा, चलिए बढ़िया है। फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: वो गाना सुनवा दीजिए, मंदिर लगी रोशनी गाँव कैसे।
7: और ये
6: है ना भक्ति गाना।
7: जी, कौन सा सॉन्ग?
6: वो मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मेरा रूठ गया सावरा मनाऊं कैसे।
7: किसी फिल्म का सॉन्ग है?
6: नहीं, एक भक्ति गाना है, सॉन्ग है। मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मेरा रूठ गया सावरा मनाऊं कैसे।
7: ओके, चलिए बता दीजिए ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
6: ये हमारे राकेश भाई है और हमारे संजू भाई है, राजकुमार दादा है और जितने सुन रहे हैं, जितने श्रोता सुन रहे हैं और रेडियो रिमझिम की टीम को।
7: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: और मैम क्या हाल है?
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: अरे आज तो बहुत परेशान हूँ।
0: क्यों?
1: 11 बजे से करते करते 11:30 बजे।
0: अच्छा जी, कॉल नहीं लग रहा था।
1: आप लोगों से तो मिलने बात करने के लिए ना इतने आदमी लाइन में लगे रहते
0: जी, अब मन पसंद गाने सुनने के लिए।
1: आज तो परेशान है, पूरा आधा घंटा हो गया लगाते लगाते लगाते।
0: अच्छा जी,
1: और सब ठीक है?
0: जी सब ठीक है।
1: तबियत सही है ना?
0: हाँ मेरा सही है, आपका सही है ना?
1: बस हम भी काम पे हैं।
0: जी तो बताइए क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश यही है ना, आरा सिंह मजनू रखिए, पटना रेफर कर दिए।
0: अच्छा, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: आपको, सोनी जी को, भैया को, भाभी को, और पिछले सारे लिखना सुनने वाले हैं सबको।
0: ओके चलिए ठीक है, गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: गुड मॉर्निंग।
5: गुड मॉर्निंग,
6: क्या हाल है?
5: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
6: मेरा भी बढ़िया, और सब बताइए।
5: और सब बढ़िया है, आप बताइए।
6: खाना खा कर आए कि नहीं?
5: जी, खाना खा के आए हैं। और सब बताइए, सब कोई घर में कैसे हैं?
6: सब लोग बढ़िया है। मेरे बहन बोल रहे कि इसको आवाज बहुत बढ़िया लगता है।
5: थैंक यू, मेरी आवाज आपको पसंद आई?
6: बोल रहे की भारतीय जो आवाज बहुत अच्छा लग रहा है। हम उठाने अभी कर रहे थे तो बोल रहे थे कि सोनी दीदी थी, सोनी बोले भारतीय दीदी है तो बोल रहे थे इसलिए बहुत अच्छा है। सोनी दीदी के क्या हाल?
5: उनका भी बढ़िया है।
6: आपसे पूछ रहे हो, चावल वाला जो गाना नहीं आया है?
5: कौन सा काम?
6: चावल वाला गाना नहीं आया है?
5: पैसे न भरोसा करी एक बार
6: चावल पर चावल पर नहीं चढ़ रहे हो, गाना नहीं आया है?
5: पैसे न भरोसा करी कैसे? हाँ हाँ आया है।
6: मेरी सुन आया है।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: आपको दिव्या मैम को बच्चों को भी रहेगा
5: भारती मैम को,
6: और बोल रहे भारती मैम को भी रहेगा।
5: जी जी बिल्कुल।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हनुमान चॉइस में।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल मैम, कैसे हैं?
0: मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
1: आप अहमद अली वार्ड नंबर 1 से?
0: हाँ जी।
1: हाँ मैम, नाश्ता पानी हो गया?
0: हो गया है। आपका हो गया?
1: हाँ हाँ, मेरा तो हो गया है। आए थे आपके रिमझिम के बाजू में ही खड़े हैं, नंबर लगा रहे थे, सोचे लग जाएगा तो एक आदमी से मिलना था इधर।
0: अच्छा,
1: वही आया, लग गया नंबर।
0: चलिए ठीक है, बता दीजिए क्या फरमाइश है आपकी।
1: फरमाइश हमको सुना है, ये दीवाना मूवी से सुना दीजिए, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं।
0: अच्छा जी, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: सबसे पहले तो आपको और भारती मैम को, अक्षरी को, कमरान रशीद को, भाई को, रघु जी को, रानी को, पूनम को, और जो भी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं जहाँ से भी, सभी को।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें।
1: थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: 1 के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार
1: मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार कुशवाहा, ग्राम जी छपरा, जिला कुशनगर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: जी क्या हाल है आपका?
1: क्या मैम अपना बताएं।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: मुझे गाना सुनवा दीजिए, पर से जाना नहीं, कुमार सानू का आवाज में सुनाइएगा।
0: और ये सॉन्ग किसी डेडिकेटेड भी है
1: आपको और पूरे रिमझिम परिवार को, जितने भी रिमझिम के सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं को। एक एक इसमें है उदित नारायण की आवाज में, तो वो वाला मत सुनाइएगा, कुमार सानू वाला सुनाइएगा।
0: ओके
1: ठीक है, थैंक यू।
0: गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ।
1: कब तक आ जाएगा?
0: कल शाम को 5 बजे।
1: कल आएगा
0: जी?
1: ठीक है, थैंक यू।
0: रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: कैसे हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ।
0: अपना नाम बता दें एक बार।
1: मैम मेरा नाम है सुजीत कुयाल।
0: अच्छा जी, कैसे हैं? क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो बैठा रहा था, सोचा की तभी
0: हो गया है।
1: हाँ मैम हो गया।
0: चलिए फिर बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: मैम गाने है नीले नीले अंबर, वही वाला गाना सुनना है मैम।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: मैम ये सॉन्ग आपको डेडिकेटेड है, मेरे फ्रेंड्स लोगों को डेडिकेटेड है और मेरी एक्स थी उस।
0: चलिए
1: हाँ जी
0: ओके
1: ठीक है मैम।
0: चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
2: जी मैम नमस्ते।
3: नमस्ते,
2: मैं संगम पासवान ग्राम धनौती पोस्ट कटिया थाना कटिया जिला गोपालगंज बिहार से हूँ। अभी फिलहाल में मैं महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ। अभी जहाँ भी आप लोग का प्रोग्राम हम लोग लगातार सुनते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं फिर भी वहाँ भी सुनते हैं ऐप के माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है ये हमारा गाँव का जो भी हालचाल मिलता है, चाहे जो भी प्रोग्राम होता है एक से एक है।
3: बताइए क्या हाल है आपका।
2: मैम आप लोग की कृपा है, रेडियो रिमझिम परिवार का प्यार है, जो अच्छा है, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है।
3: मौसम कैसा उधर का।
2: मैम यहाँ मौसम तो अभी धूप है, एक दिन बारिश हुआ था आज ये लगभग एक सप्ताह पहले। अभी बारिश वारिश नहीं हो रहा है, नहीं तो यहाँ तो बारिश होती है तो लगातार होती ही रहता है ना। इधर से खुलता है फिर उधर से आता है, ऐसा होता है। हम लोग जॉब करने में भी दिक्कत होता है।
3: अच्छा जी,
2: आने जाने में चाहे कोई काम भी हो तो। वहाँ कैसा मौसम है मैम अभी।
3: इधर भी बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है।
2: अच्छा अच्छा, हम लोग सोचे कि इधर ही है, मतलब यहाँ तो ज्यादा मुंबई के तरफ तो ज्यादा गर्म मौसम है ना, पहाड़ी इलाका है इसीलिए। मैम आप बढ़िया है ना।
3: जी हम बढ़िया है, आप ठीक है ना।
2: जी मैम जी, सब बोल रहे नहीं, आपका आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है। हम लोग जहाँ भी रहेंगे तो रेडियो रिमझिम हम लोग का साथ नहीं छोड़ने वाला है, नहीं हम लोग रेडियो रिमझिम का साथ छोड़ेंगे, चाहे यहाँ रहे चाहे अदर देश में चले जाए।
3: जी
2: बहुत एक से, हम तो लगभग 2009 से रेडियो रिमझिम से जुड़ा हुआ हूँ।
3: अच्छा,
2: हाँ, और परमानेंट मैं कॉल करता ही रहता हूँ, जब भी मौका मिलता है तो कॉल करता हूँ। लेकिन और सारे सब श्रोता लोग हैं तो कभी कभी कॉल नहीं लगता है तो दुख भी होता है कि आप लोग से बात नहीं हुआ।
3: अच्छा, कभी कभी ज्यादा बिजी रह जाता है।
2: हाँ हाँ, क्या करें मैम, हम तो लग रहा है हमको तो बहुत, हम एक घंटे से ट्राई कर रहा हूँ।
3: अच्छा,
2: और नहीं लग रहा था तो फिर सोच रहे थे कि ये लग रहा है कि मेरा कॉल लगेगा ही नहीं,
3: तो आज बता दीजिए आपकी क्या फरमाइश है।
2: मैम अपने पसंद से कोई भी भोजपुरी सॉन्ग सुना दीजिए गम का।
3: जी दिन भर तो हम लोग अपने पसंद से बजाते हैं, कॉल किए हैं तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, अपनी पसंद का सुनना चाहिए।
2: भोजपुरी जो भी हो गम का, तो अंकुश राजा का एक गाना है ना,
3: बताइए कौन सा।
2: तो अपना बारे में पीवा कुछ ना बतावे, हमारा से जाने खातिर किया हुआ ऐसी करके ये गाना है भोजपुरी में, वही गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। मेरे सब दोस्त लोग हैं, उन लोगों को मनु मुकेश और बहुत सारे दोस्त है
3: जी,
2: और खास करके आपको और रेडियो रिमझिम पूरा परिवार को और हमारे जितना भी कटिया का हमारे सब दोस्त हैं उन लोगों को।
3: ओके, तब सब ठीक है ना।
2: हाँ मैम सब आपकी आशीर्वाद है, ठीक है, आप लोग बढ़िया है ना। खुशी ये मिलता है ना मैम कि जब हालचाल हम लोग जब सुनते हैं ना मैम, तो हम लोग का सब कुछ पता लग जाता है कि गांव में क्या हुआ क्या नहीं। ये कार्य ये जो आप लोग हालचाल वाला जो एपिसोड चला रहे हैं ना, बहुत हमको खास करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक चीज जो भी है हम लोग को जानकारी हो जाता है क्या होने वाला है अपने जिला में, कब क्या हुआ। रेडियो रिमझिम आने से हम लोग को बहुत फायदा है मैम, और हम तो चाहेंगे कि कृपा शंकर श्रीवास्तव जी को प्रणाम मैं कर रहा हूँ कि उनके जैसे और भी कुछ ऐसा हो कि उनके माध्यम से कि और रेडियो रिमझिम का नाम हो और ऊपर तक जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं।
3: जी चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ।
2: जी मैम नमस्ते।
3: नमस्ते, रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है मैम नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एमपी से।
6: नमस्कार, क्या हाल है आपका?
5: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे फोन लगाते हुए, बहुत मुश्किल से फोन तो आज लगा मैम। जी जी जी, बहुत ट्राई करना पड़ा मैम, जाके फिर अभी फोन शामिल हुआ।
6: अच्छा जी
5: जी जी जी मैम। अब मैम वहाँ के मौसम के क्या हाल चाल है मैम?
6: इधर का मौसम अभी बहुत गर्मी पड़ रही है।
5: जी जी जी जी मैम, हमारे यहाँ भी अभी बहुत गर्मी है मैम यहाँ एमपी में। अभी बारिश तो नहीं हुआ, पहले हुआ था एक हफ्ता पहले, बाकी बारिश अभी नहीं है मैम।
6: बारिश होगा जब मौसम गर्म हो रहा है तो बारिश तो होना ही चाहिए।
5: जी जी जी जी, बारिश तो होना चाहिए, बाकी अभी बारिश नहीं, अभी बहुत गर्मी है मैम, बहुत उमस भी है। जी जी जी मैम। और मैम आपका खाना पीना हो मैम, नाश्ता वास्ता?
6: हाँ मेरा हो गया, आपका हो गया?
5: जी जी, अभी तो बाकी है मैम, हम सोचे अभी फोन लगाते हैं फिर बाद में खाना वाना खाएंगे फुर्सत में मैम।
6: अच्छा जी, तो
5: जी जी
6: गाने की फरमाइश बता दीजिए।
5: जी आज हमको सुनवा दीजिएगा, गाने के बोल है कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
6: ओके चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने।
5: ओके धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: हेलो
0: जी बोलिए, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम आयशा है।
0: और कहाँ से हैं आप आयशा जी?
1: मैं मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ।
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: क्या करती हैं आप?
1: पढ़ाई।
0: कौन सी क्लास में हैं?
1: 5 क्लास में।
0: पढ़ाई कैसे चल रही है?
1: अच्छी चल रही है।
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: मेरी फरमाइश है कि मैं सारी रात गाना सुनूं। सारी रात सताए मुझको।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: जी मेरी आंटी सबको, सोनम आंटी, साबरी आंटी, नाजर आंटी, फलक आंटी, सभी को और रेडियो रिमझिम और मेरे भाई को।
0: ओके ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: मैम नमस्कार।
4: नमस्कार,
5: हम बोल रहा हूँ नीतीश कुमार। मैंने गाना सुना।
4: बताइए कौन सा गाना सुनना है?
5: लाइन है मैंने लाइन मत शायरी मत।
4: जी बिल्कुल।
5: मनने की दुनिया का माहौल बाने की दुनिया का माहौल बाजार ना पड़ो हम से तो
4: आपकी पसंद का कोई भी
5: सॉन्ग? अपने पसंद से कोई बजा दिए मैंने जो फाइव छोड़े छोड़े के जेबो दीवाना तो हर मर गई।
4: अच्छा जी, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
5: हाँ, आपको डेडिकेटेड है। और श्रुति को, रूपा को, कायम को, अनु को, निकी को, सब रिमझिम रेडियो को पूरा टीम को।
4: ओके, और सब बढ़िया है ना?
5: हाँ, मौसम कैसा?
4: इधर मौसम धूप निकला हुआ है और थोड़ा थोड़ा हवा चल रहा है। ओके, करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंगीन।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
7: जी नमस्कार मैडम।
6: नमस्कार
7: जी, कौन मैम बात कर रहे हैं मैडम?
6: भारती।
7: अच्छा अच्छा, भारती मैम। और बताइए कैसे हैं?
6: मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए।
7: हम दीपक कुमार बात कर रहे हैं।
6: जी
7: जी, गर्मी कैसा है मैम वहाँ का?
6: यहाँ गर्मी है बहुत ही ज्यादा।
7: अच्छा अच्छा, तो कूलर वगैरह नहीं चल रहा है क्या?
6: नहीं, यहाँ पे तो चल रहा है लेकिन बाहर जाने पे गर्मी तो लग रही है ना।
7: अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते रहिए, ठंडा पानी लेते रहिए।
6: जी ठंडा पानी पीते हैं लोग।
7: जी जी, और सोनी मैम, पूजा मैम ये सब नहीं रहते हैं क्या?
6: जी है, सोनी मैम है।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, सोनी मैम से भी बात करे हुए बहुत दिन हो गया। काफी समय हो गया, मान लीजिए कि शादी का समय, हमारे शादी का समय बात हुई थी। ठीक है, तो एक गाना सुनवा दीजिएगा।
6: बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
7: वो है कवाली है। मौत बड़ी तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कवाली सुना दीजिएगा।
6: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
7: हाँ, सोनी मैम सुनेंगे और पूजा मैम सुनेंगे, सोनी सर सुनेंगे, हम सुनेंगे, अनिल जी सुनेंगे, अनिल जी लाठी वाले।
6: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: नमस्कार मैडम।
5: नमस्कार
6: मैडम, मेरे को गाना सुनना है।
5: गाना सुनाएंगे, नाम बता दो।
6: राजकिशोर गुप्ता।
5: और कहाँ से?
6: हमें।
5: क्या हाल है आप?
6: हमें, मैं, हमारा दुकान है।
5: अच्छा, हाँ आपका दुकान है।
6: गाना सुनना था मैडम, महबूबा फिल्म का है, मैं तेरा दीवाना।
5: जी, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: हाँ, जितने भी रेडियो सुनने वाले हैं सभी।
5: ओके, तो कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है।
5: भोजन हो गया?
6: हाँ, सब कुछ हो गया।
5: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रह सकते हैं। रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
6: रिकॉर्डिंग कब तक आएगा मैडम?
5: ये वाले रिकॉर्डिंग कल आ जाएगा या परसों?
6: ठीक
5: जी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज इनके कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैम, कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए। तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी कुछ नहीं, कॉल लगा रहे हैं। एक सौ बीस लगाए,
0: ज्यादा कॉल लगाना पड़ा।
1: 11 बजे से आपका शो चल रहा है ना? गाने की रिक्वेस्ट करें
0: जी, बताइए।
1: गाना है पुराना, गाने का नाम है सबसे हम दूर हुए।
0: गाने का क्या नाम है?
1: सबसे हम दूर हुए।
0: हाँ,
1: समझ आवाज है।
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड है?
1: डेडिकेटेड तो बस आपको है, सभी सुनने वालों को। चलिए तो हम क्या सॉन्ग किया जाए।
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ।
1: धन्यवाद
0: रेडियो रेंज में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन। सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हाँ सोना।
2: हाँ कौन?
1: अवनतनी कोना।
2: अरे कौन बोल रहे हो?
1: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
2: अरे नहीं नहीं,
1: अवन डीजे बजाता बस तार आवाज सुनाते नहीं के।
2: बस 2 मिनट रुक जाना।
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हेलो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: क्या करवे, 20 गो अगुआ फेर देनी रे दादा।
1: बुलाती है मगर जाने का नहीं।
2: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
3: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिनांक 14 जून 2026 दिन रविवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:13 तथा सूर्यास्त 6:47 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ किया गया हर प्रयास सफलता की ओर एक कदम होता है। तो श्रोताओं, हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:00 तो एक नई आशा, नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आइए शुरू करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा इस मधुर और भक्तिमय गीत के साथ। आप सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो रिमझिम, आपकी अपनी आवाज जो कहता है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।